एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 15वीं तिथि तदनुसार 6 जुलाई सन 2026 दिन के 11:58 में हमारी पहली प्रसारण सभा आरंभ होती है।

यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12 बजे हैं, प्रस्तुत हैं फिल्म संगीत।

मेरे ढोलनास मेरे प्यारे

मेरे प्यारे की तुम मेरे ढोल नम्मा।

तेरी सरगमी है अब रात दिन।

अभी आप सुन रहे थे एमजी श्री कुमार और श्रेया घोषाल को, फिल्म का नाम था भूल भुलैया। अगला गीत सुनने से पहले आइए सुनते हैं जरूरी संदेश।

0: सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम, कुणाल गांजावाला और आकृति कक्कड़ को। फिल्म का नाम था चुप चुप के। अगला गीत आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और बाबू सुप्रियो की आवाजों में। फिल्म है ढाई अक्षर प्रेम की।

अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर को, फिल्म का नाम था दिल। इस गीत के साथ ही हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, FM बैंड 101.8 MHz पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सी आई ई टी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खडसे और विनोद खडसे जी ने। लिखते हैं,
2: वक्त का काम तो है गुजरना, बुरा है तो सब्र करो, अच्छा है तो शुक्र करो।
0: बहुत सुंदर विचार आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से क्लेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
0: और पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन और पराग डेलर।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल, श्रीवास, संतोष, श्रीवास, शिव कुमारी और राम दुलारी।
0: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
2: देश एवं विदेश में सुने जाने वाला एकमात्र कार्यक्रम उमंग ही है, जिसे सुनकर मनोरंजन होता है और बहुमूल्य जानकारी का खजाना छिपा होता है। हर आयु के लोगों के लिए इस कार्यक्रम में कुछ न कुछ जरूर होता है।
0: हम ये भी आशा करते हैं कि उमंग कार्यक्रम इसी तरह से आगे भी प्रसारित होगा। उमंग कार्यक्रम में कहानी चिड़िया की बच्ची सुनाई गई, बेहद पसंद आई, आपका आभार। और अगला संदेश हमें मिला है जिला तहसील ठियोग शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: संदेशों के लिए धन्यवाद। और अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर।
0: तो हमारा पहला प्रश्न था कि भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है।
2: इसका उत्तर है साथियों, भारत को इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष इत्यादि नामों से जाना जाता है, लेकिन इसे संवैधानिक रूप से भारत और इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है, भारत

0: अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा।
1: हमारा दूसरा प्रश्न था, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। कोयला पेड़ों और वनस्पतियों से बना है, पेड़ों और वनस्पतियों में जीवन होता है, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं।
1: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न, हमने आपसे पूछा था सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं?
0: इसका उत्तर है साथियों, सुपरनोवा या बड़े बड़े तारों के टकराने या फटने से जो धूल उत्पन्न हुई उससे सोना बना, इसलिए इसे स्टार डस्ट कहते हैं।
1: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था, हमारा प्रश्न था डायमंड सीड किसे कहते हैं?
0: डायमंड सीड छोटे से प्राकृतिक हीरे को कहते हैं जिसकी नकल करके कृत्रिम हीरे बनाए जाते हैं।
1: और हमारा अंतिम प्रश्न था सिलिका और सिलिकॉन में क्या अंतर है?
0: सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन निकालने पर जो तत्व प्राप्त होता है उसे सिलिकॉन कहते हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न, हमारा आज का प्रश्न है कंगारू के कितने पैर होते हैं?
0: 8800440559। और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी तरह से प्रश्नोत्तरी में प्रतिभाग किया। आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम का मासिक संस्करण श्रोता संवाद, विषय है मनोदर्पण। स्वागत है आप सभी श्रोता मित्रों का उमंग रेडियो कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि श्रोता संवाद में हम हर महीने चर्चा करते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और NCERT की संयुक्त पहलों के बारे में। तो इस क्रम में आज हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल। आपको बता दें कि प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल NCERT के शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा आधार विभाग में मनोदर्पण प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं। तो डॉक्टर साहब, अपने श्रोताओं की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं।
2: ये धन्यवाद, सभी को नमस्कार।
1: श्रोताओं, आज का हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे विशेषकर विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर, और साथ ही साथ हमारी चर्चा के केंद्र में रहेंगे शिक्षक और अभिभावक भी। तो डॉक्टर शनवाल, सबसे पहले मेरा अनुरोध है हमारे श्रोताओं को मनोदर्पण के बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
2: जी धन्यवाद। देखिए, मनोदर्पण एक भारत सरकार की आत्मनिर्भर पहल के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है
1: जी,
2: और इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित है
1: जी,
2: जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पहलें हम लोग करते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जो हमारी पहल है कि हम सुबह 8 बजे से लेकर के शाम की 8 बजे तक 12 घंटे का टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन हम अभिभावकों को, विद्यार्थियों को और शिक्षकों को उपलब्ध कराते हैं
1: जी।
2: हमारी जो टेली हेल्पलाइन है इसका नंबर है 8448440632। 12 घंटे के अंतराल में विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक कभी भी किसी भी समस्या को लेकर के हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे जो काउंसलर हैं वो 12 घंटे के लिए उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा हमारा जो दूसरा जो कार्यक्रम है वो होता है वेबिनार। वेबिनार में जैसे आपको मैंने बताया कि हमारी काउंसलिंग सर्विसेज है, काउंसलिंग सर्विसेज से जो हमें ट्रेंड्स मिलते हैं, जैसे हमारे शिक्षक साथी या अभिभावक या विद्यार्थियों की जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को लेकर के हम आगे के लिए एक सहयोग सत्र करते हैं। सहयोग सत्र हमारा प्रतिदिन आधे घंटे का होता है, जिसमें हम बाहर से कुछ काउंसलर्स को बुलाते हैं और हमारे विभाग के एक्सपर्ट भी उसमें होते हैं। उस समय उनके जो प्रश्न उत्तर होते हैं उनका भी हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो हमें ईमेल से भी उनके पत्र प्राप्त होते हैं उनका भी हम जवाब देते हैं। इसके अलावा आपको दो चीजें और बता दूं कि हमारा इसके अंतर्गत एक चीज और भी आती है, परिचर्चा। परिचर्चा हम 1.5 घंटे का एक सत्र करते हैं जो प्रत्येक शुक्रवार को करते हैं 2:30 से 4 बजे तक। इस 1.5 घंटे के परिचर्चा के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के हम डिस्कशन करते हैं, जिससे कि हमारे विद्यार्थियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो और जो भी उनके जो कंसर्न्स रहते हैं या जो चैलेंजेस रहते हैं उसका निदान उन्हें समय समय पर मिलता रहे
1: जी।
2: इसके अलावा जो कार्यक्रम रहता है हमारा, जैसे हमने आपको बताया टेली हेल्पलाइन हमारा एक कार्यक्रम है, दूसरा हमारा सहयोग रहता है, तीसरा हमारा परिचर्चा रहता है। इसके अलावा समय समय पर

0: विद्यार्थियों के लिए, अभिभावकों के लिए या हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के लिए तनाव प्रबंधन हेतु विभिन्न प्रकार की जो सहायक सामग्री है वो भी हम समय समय पर उपलब्ध कराते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी मनोदर्पण के बारे में। मेरा अगला प्रश्न है आपसे, अपने श्रोताओं की ओर से, कि आज के समय में विद्यार्थियों में तनाव और चिंता बढ़ने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं? और हम ये भी जानना चाहेंगे कि इनसे निपटने के सरल उपाय आप क्या क्या सुझाना चाहेंगे।
0: जी आपका बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। प्रमुख जो कारण है आज के समय में विद्यार्थियों में, एक तो प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है
1: जी,
0: जो अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है। दूसरा, विद्यार्थी परीक्षा को लेकर के और अपने भविष्य को, करियर संबंधी जो दबाव है उसको भी महसूस करते हैं। एक सोशल मीडिया का काफी प्रभाव इनके ऊपर देखा जाता है, खास करके जो डिजिटल उपकरण है इनका अत्यधिक उपयोग करना, और साथ साथ जिस प्रकार से तेजी से जो हमारा जो शैक्षणिक और सामाजिक जो परिवेश है ये परिवर्तित हो रहा है
1: जी,
0: उसको लेकर के इसमें कुछ प्रकार के मुख्य कारण है। जैसे मैंने आपको बताया कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, इसके अंदर क्या रहता है कि जो दूसरे विद्यार्थियों से कई बार अभिभावक भी तुलना करते हैं, या जैसे हमने कहा कैरियर से संबंधित कुछ भविष्य में प्रवेश परीक्षाएं हैं या भविष्य को लेकर के चिंता करना, या सोशल मीडिया का जो प्रभाव है उसमें इवन दो आपको बड़ी हैरानी हो गई ये सुनकर के, कुछ विद्यार्थियों में तनाव का कारण ये होता है कि मेरी जो लाइक्स हैं वो कम हो गए हैं, तो उनके जो लाइक्स हैं इस प्रकार की भी चिंता वो बच्चे करते हैं। जो डिजिटल उपकरण है इसके अंदर स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जा रहा है, जब ज्यादा डिजिटल उपकरण का इस्तेमाल करते हैं तो उसका इस्तेमाल करने के बाद बच्चों में एकाग्रता की कमी आती है, उनका दिनचर्या प्रभावित होती है, और इसको लेकर के उनका अगले दिन का भी जो कार्यक्रम है, जो कार्यकलाप है वो भी प्रभावित होते हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें रहती हैं, विभिन्न प्रकार की नई तकनीकी आ गई हैं, नई विकल्प आ गए हैं, उनको लेकर के भी कुछ चीजों को समझते हुए विद्यार्थी थोड़ा अधिक समय इस पर लगाते हैं
1: जी।
0: अब इसके बड़े सरल उपाय हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले विद्यार्थियों को ये समझना होगा और खास तौर के हमारे अभिभावकों को, विद्यार्थियों को समझाना पड़ेगा या अध्यापक साथियों को भी समझाना पड़ेगा कि तनाव और चिंता चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में होना स्वाभाविक है, इसमें कोई नई बात नहीं है और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है नियमित व्यायाम, योग, और बीच बीच में जिसको हम डीप ब्रीदिंग कहते हैं, गहरी श्वास लेकर के इसका भी अगर हम अभ्यास करते हैं, उसके उपरांत अगर हमारे विद्यार्थी पर्याप्त नींद लेते हैं
1: जी,
0: संतुलित आहार इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और नियमित दिनचर्या बनाए रखना
1: जी,
0: जैसे कई बार उनको कोई लेसन पढ़ना होता है या कोई काम करना होता है उसके बजाय वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चले गए या फिर चैटिंग करने लग गए, उसमें उनका अधिक समय चला गया, लेसन के लिए समय कम बच गया, तो उनका जो ध्यान भटकता है उसको भी उनको एक नियमित दिनचर्या रखनी पड़ेगी, और नियमित दिनचर्या में उनको अपना जो समय है उसको पढ़ाई में, खेल में, बीच बीच में विश्राम में, और सबसे महत्वपूर्ण बात है मनोरंजन के बीच में भी एक संतुलन बनाना पड़ेगा
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल,
0: अगर ये कर पाते हैं, इसके अलावा मित्रों से मिलना, परिवार के साथ मिलना, और खास करके जो सकारात्मक जो जुड़ाव है वो बढ़ाना पड़ेगा
1: जी।
0: कई बार क्या होता है कि अगर ये सारी चीजें नॉर्मल चलती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा नहीं चलता है तो किसी परामर्शदाता से या किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सहायता लेने में भी
1: जी,
0: विद्यार्थी को
1: संकोच
0: किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए
1: जी। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी उपयोगी जानकारी दी। अब आते हैं परीक्षा के मुद्दे पर। अक्सर देखा गया है कि परीक्षा के दिनों में हमारे विद्यार्थी बहुत अधिक तनाव में आ जाते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा अपने श्रोताओं की ओर से कि परीक्षा के दिनों में खासकर बच्चों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए अभिभावक और शिक्षक, उनकी भूमिका क्या हो सकती है?
0: देखिए, अभिभावक की और शिक्षक की तो भूमिका हमेशा ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं विद्यार्थियों की तो विद्यार्थियों के जीवन में अभिभावक का और शिक्षक का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात अभिभावक की क्या है, विद्यार्थी को ध्यान पूर्वक सुनना, जो बात वो कहना चाहते हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, उनकी जो शंकाएं हैं
1: जी,
0: उनको बड़े ध्यान से सुनना और धैर्य पूर्वक सुनना, ये सबसे पहली बात।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी।
0: कई बार ये होता है कि अगर हमारी बात को कोई अच्छे से सुन ले, समझ ले, तो फिर हमें काफी रिलैक्स फील करता है, राहत मिलती है। दूसरी जो चीज रहती है कि हमें बीच बीच में थोड़ा सा एक भावनात्मक समर्थन, या ये कहिएगा कि एक तरीके से मनोबल बढ़ाने के कुछ चीजें भी मिल जाती, जैसे

0: हमें ये बताना पड़ेगा कि विद्यार्थी ये समझे कि परिणाम के ऊपर फोकस नहीं करना है, केवल प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है। देखिए, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ कि हमें प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है, परिणाम की बात नहीं करनी है।
1: परिणाम से आपका मतलब रिजल्ट?
0: जी, रिजल्ट से
1: जी।
0: क्योंकि देखिए, अगर हम सीरियसली प्रयास कर रहे हैं और हम सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान दे रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। रिजल्ट कई बार मैटर नहीं करता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे 90% अंक लाएं, और अंकों की तो बात ही नहीं करनी चाहिए हमें। क्योंकि देखिए, किसी भी व्यक्ति के सफलता के लिए केवल उसके नंबर ही या उसके मार्क्स ही एक सिंगल पैरामीटर नहीं है। आज के समय में जो हम बात करते हैं, वो बात करते हैं कि किसी भी बालक के सर्वांगीण विकास की, होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट में केवल एक उसकी पढ़ाई ही शामिल नहीं है, समाज में उनका क्या रोल है, अपने बाकी मित्रों के साथ उसका किस तरह का काम है, या परिवार में क्या भूमिका है, देश के प्रति उनकी क्या चिंता है, तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। विद्यार्थियों को ये भी कहीं ना कहीं बताना आवश्यक है कि देखिए, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं,
1: बिल्कुल
0: हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, हमारे बहुत अच्छे रेसलर्स हैं, हमारे बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उन्होंने पढ़ाई के अलावा दूसरे फील्ड में काम किया और वो आज के समय में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों को समझना पड़ेगा कि एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत सारे फील्ड हमारे पास है। कोई म्यूजिक में अपनी हॉबी ले सकता है, कोई क्रिएटिव एक्टिविटीज में अपनी हॉबी क्रिएट कर सकता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। और ये पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि केवल और केवल एकेडमिक्स ही नहीं, एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है। दूसरी जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चों के ऊपर बहुत अधिक अपेक्षाओं का दबाव ना डालें, बच्चों से हम बहुत अधिक अपेक्षा ना करें, उनको पर्याप्त नींद का हम मौका दें, उनको पौष्टिक भोजन हम करवाएं, और उनको बीच बीच में, जैसे बहुत लंबे समय तक वो पढ़ते तो बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक उनको दे करके कि ठीक है, बहुत लंबा पढ़ लिए, अब थोड़ी देर खेल लीजिए, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। इसके अलावा तनाव प्रबंधन के कुछ सकारात्मक तरीके भी हैं, जैसे मान लीजिए सुबह उनको थोड़ा सा योग के बारे में बता दिया, या थोड़ा मेडिटेशन कराने की प्रैक्टिस उनको करा दी, या बीच में जहां वो तनाव में महसूस, उनको थोड़ा सा रिक्रिएटिव एक्टिविटीज लाइक कोई म्यूजिक आपने सुना दिया, कोई छोटे मोटे गेम उनको करा दिए। और आज के समय में तो बहुत सारे गेम, को जरूरी नहीं है कि ग्राउंड में खेलने वाले गेम हो, इन हाउस भी गेम बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन सिर्फ यही रहेगा कि वो गेम जितने भी हों या जो भी चीजें रहें, इलेक्ट्रॉनिक गेम ना होनी चाहिए। क्योंकि अगेन क्या होगा कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक गेम होगी तो फिर दोबारा फिर उसकी भी एक समस्या रहेगी।
1: जी हाँ जी।
0: तो गेम जो भी रहे, जैसे लूडो है, सांप सीढ़ी, कुछ भी अपने छोटे छोटे गेम जो हमारे अपने घरों में खेले जा सकते हैं, और बच्चों की भावनाओं को नकारने के बजाय उनकी बात को बड़े पॉजिटिव तरीके से हमको समझना चाहिए।
1: जी, जी।
0: ये कुछ तथ्य या कुछ बिंदु मैंने अभिभावकों की भूमिका के बारे में बताए हैं।
1: जी।
0: और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भावनात्मक प्रबंधन, जैसे कौशल विकसित करना, बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक्स या बहुत छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं जो अध्यापक उनको बता सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक विद्यार्थी है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम उनको कहेंगे अच्छा आपने पढ़ाई किया, अब ऐसा करो आप चित्रकला में थोड़ा काम करके देखो, कुछ अपनी बात को कहानी के माध्यम से कुछ रचनात्मक गतिविधि जिसको हम बोलते हैं कि आप ऐसा करिए कि आपको चित्रकला में कुछ काम करिए, कोई कहानी लेखन का काम कर लीजिए, या जिसको हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, समूह चर्चा, ऐसी गतिविधियों में आप आगे चलें। क्या होता है कि उससे थोड़ा सा उनका फोकस भी रहता है और अपना थोड़ा सा एक तरीके से समय भी उनको मिल जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसके अलावा देखिए, विद्यार्थियों में कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको विशेष आवश्यकता रहती है उनकी बातों को समझना और उनके साथ संवेदनशील होकर के उनकी जो समस्याएं हैं उनकी चिंता करना।
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसके अलावा विद्यार्थियों में छोटी छोटी उपलब्धि है उसकी भी सराहना करना, उनको बीच बीच में मोटिवेट करना, अच्छा आपने बहुत अच्छा काम किया। जैसे किसी विद्यार्थी को आपने कोई असाइनमेंट दिया, कोई होमवर्क दिया, उसने करके दिखाया, अरे बहुत अच्छा किया आपने, आप तो इससे भी अच्छा कर सकते हो। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे जो मोटिवेशंस हैं, छोटी छोटी जो चीजें रहती हैं, इससे उनको काफी एक तरीके से ये मानिए कि उनको बड़ा मोटिवेशन मिलता है, मनोबल बढ़ता है, और इस तरीके से वो और आगे इसके लिए कोशिश करते हैं। दूसरा, परामर्श की जो सेवाएं हैं उनकी जानकारी देना। हमारे पास जो काउंसलिंग सेवाएं हैं, अन्य जो संसाधन हैं, जो सहायता संसाधन हो सकते हैं, उनकी भी चीजें शेयर करना, ये चीजें यहाँ यहाँ उपलब्ध हैं, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। और ये एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें काम हो सकता है, अध्यापक का और पेरेंट्स यानी कि अभिभावक, अध्यापक और विद्यार्थी, इन तीनों के बीच में एक तारतम्य, एक बहुत अच्छा जो कनेक्शन रहे,
1: तालमेल रहे,
0: तालमेल जितना रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा।
1: तो डॉक्टर साहब, इतनी उपयोगी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विश्वास है कि हमारे श्रोता जरूर इससे बहुत लाभान्वित होंगे। अब एक विशेष प्रश्न पर मैं आता हूं, और वो प्रश्न ये है कि मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इनके संतुलित उपयोग के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। मूल प्रश्न है इनका संतुलित उपयोग।
0: जी, आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जो संभावित नकारात्मक प्रभाव इसके हो सकते हैं, सबसे बड़ा जो चिंता और तनाव, क्योंकि लगातार तुलना करते हैं, इसमें भी क्या होता है, उनके लाइक अधिक हो गए, हमारे लाइक कम हो गए, यहाँ भी हमने तुलना कर ली,
1: ऐसा होता
0: उसके
1: है।
0: बाद हम क्या करते हैं, ऑनलाइन किसी भी चीज के ऊपर या सोशल मीडिया में कोई चीज आती है, ऑनलाइन गेम आता है, इवन ऑनलाइन गेम के अंदर तो कई तरह की बहुत सारी खतरनाक चीजें भी होती हैं। अगर आपको जानकारी हो तो जैसे ये ब्लू वेल टाइप के जो गेम थे, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उन ऑनलाइन गेम के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को चीट करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी बचना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि लगातार स्क्रीन को देखने से नींद आने में बाधा उत्पन्न होती है, नींद की क्वालिटी प्रभावित होती है, और क्या होता है कि हमारे जो सामाजिक अलगाव भी बढ़ता है। जैसे एक दूसरे के आमने सामने बैठ करके हम संवाद करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग से या ऑनलाइन मोबाइल फोन के प्रयोग से या सोशल मीडिया से या ऑनलाइन बने रहने से विद्यार्थी एक दूसरे से आमने सामने बात करने से बचते हैं, और उनको वो समय नहीं मिल पाता, तो धीरे धीरे क्या होता है कि समाज से भी वो थोड़े से कट जाते हैं, अपने साथियों से अकेलापन आ जाएगा, अपने विद्यार्थियों से, साथियों से, भाई बहन से। और अक्सर आपने देखा होगा कि एक घर में अगर चार लोग हैं तो चार मोबाइल के साथ अलग अलग बैठे हैं, जबकि वो बैठे एक ही घर में हैं, तो उनको मोबाइल को किसी लिमिटेड समय के लिए रख देना चाहिए। और लिमिटेड समय का मतलब ये हुआ कि विद्यार्थियों के लिए स्क्रीन टाइम निर्धारित होना चाहिए। इसके लिए विद्यार्थी के अभिभावक और हमारे अध्यापक ये मिलकर के बातचीत कर सकते हैं कि किस कक्षा के लिए कितने घंटे का मोबाइल का बैन होना चाहिए। खास करके घर में भी बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे हम जब शाम को डिनर करते हैं, रात्रि भोजन जब करते हैं, उस समय भी हम कहते हैं अच्छा ठीक है मोबाइल बंद कर लीजिए, अच्छा अब आधा घंटा हम अपने घर की चर्चा करेंगे, अपने विषयों की चर्चा करेंगे, साथ में खाना खाएंगे, हम नाश्ता साथ में करेंगे। तो इस तरह की जो जो चीजें हैं उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन काम के समय और कितना उपयोग करना है इस पर भी नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को खेल में, संगीत में, कला में छोटी छोटी गतिविधि, जैसे मौसम के अनुसार सर्दी अधिक है तो धूप में कोई एक्टिविटी हो सकती है, गर्मी अधिक है तो घर के अंदर भी कोई एक्टिविटी हो सकती है, सुबह शाम हो सकती है, तो वो भी देख करके हम कर सकते हैं। और बच्चों को ये भी समझाएं कि जो डिजिटल लिटरेसी यानी कि डिजिटल साक्षरता है, ये सिखानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे जो मैसेज आते हैं, उन मैसेज को लेकर के भी इधर उधर चीजें होती हैं या चर्चाएं होती हैं, उनके बारे में भी बताना चाहिए। इसके अलावा सोने से कम एक घंटा पहले जो डिजिटल स्क्रीन है, स्क्रीन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि लंबे समय तक अगर वो डिजिटल स्क्रीन को देखेंगे तो उनको नींद आने में समस्या रहेगी और वो अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे। परिवार के साथ मिलकर के भी हम बहुत सारे नियम तय कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे जो परिवेश है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार है, तो बहुत सारी चीज हम एक दूसरे से सीखते हैं, हम समाज से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, तो इसके अंदर भी समाज और परिवार के बहुत सारी महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो कवर हो सकती हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी
1: जी। तो डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न मेरे मन में आता है श्रोताओं की ओर से कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बच्चों में हीन भावना या नकारात्मकता विकसित हो जाती है। होता यह है कि वे अपनी असफलता को स्वीकार ही नहीं कर पाते, तो हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चों में असफलता को स्वीकार करने की क्षमता और सकारात्मक सोच कैसे विकसित की जा सकती है।
0: देखिए, कुछ जो चीजें हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि सबसे पहले जो बात हम कर रहे हैं कि जो हमारा विद्यार्थी है उसको किसी भी चीज के सफलता या असफलता के कोई पैरामीटर होते ही नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: किसी प्रकार का कोई पैरामीटर नहीं होता है।
1: हाँ।
0: एक विद्यार्थी हो सकता है कि पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर हो, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है,
1: हो सकता है,
0: वही पेंटिंग में अच्छा हो सकता है, वो आर्ट में अच्छा हो सकता है, बाकी किसी अन्य विषय में अच्छा हो सकता है।
1: जी,
0: तो हमें ये समझना चाहिए कि उस विद्यार्थी का अच्छा स्किल क्या है, उसका बेटर टैलेंट क्या है, उस टैलेंट को हमें पकड़ना है और उस टैलेंट को पकड़ के उसको और आगे उभारना है।
1: जी,
0: पकड़ने से मतलब है कि उसको आइडेंटिफाई करना है।
1: बिल्कुल,
0: उसकी पहचान करनी, और पहचान करने के बाद उसी को आगे और निखारना है।
1: जी, उसी को
0: इसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे प्रयास हो सकते हैं कि केवल

0: परिणाम की बात ना करें, मेहनत और सीखने को महत्व दें। इसके अलावा छोटे छोटे लक्ष्य, बड़े जो कार्य होते हैं उनको छोटे छोटे लक्ष्यों में, छोटे छोटे कार्यों में चरणबद्ध तरीके से हम लेकर के चल सकते हैं।
1: जी।
0: जैसे जो बात आपने कही कि किसी को असफलता भी मान लीजिए होती है।
1: हाँ, होती है।
0: असफलता से एक चीज तो सिद्ध होती है कि हमने कोई प्रयास किया,
1: प्रयास
0: वो सफल
1: किया?
0: नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर जो अच्छाई है वो ये है कि हमें उस गलती से सीखने का एक अवसर मिला।
1: जी।
0: तो जब हमें सीखने का एक अवसर मिला तो उस असफलता का हमारे लिए कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं बचा, हमने कुछ सीखा। देखिए, गलती से भी कुछ सीखा ना।
1: हाँ, होता है।
0: तो इसका मतलब क्या हुआ?
1: जी।
0: वो भी एक हमारे तरह से एक तरीके से मोटिवेशन का काम वो करता है।
1: जी।
0: और मैं पुनः आपके माध्यम से सभी को ये कहना चाहूंगा, देखिए विद्यार्थी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी की हर छोटी चीज का ध्यान रखें, उनको एक वॉच करें, उनको ऑब्जर्व करें और उनकी गतिविधि को देखें, उनका समय समय पर मनोबल बढ़ाएं और उनके कुछ विशेष जो काम है या विशेष गतिविधि है उनको देखें। अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाह रहा है तो पेरेंट्स ऐसा ना करें कि उसको स्पोर्ट्स के बजाय किसी दूसरे फील्ड में धकेलने की कोशिश करें। देखिए, विद्यार्थी है, उसका जो रुचि है रुचि के अनुसार वो अपने विषय चयन करे, विषय के अनुसार वो अपने आगे के जो क्रियाकलाप है वो तय करे। हम किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती विद्यार्थी के साथ ना करें। अक्सर ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स भी जो चॉइस विद्यार्थियों के बजाय पेरेंट्स की जो चॉइस है जैसे थोप देते हैं, थोपने के बजाय उनको एक अपना इंडिपेंडेंट निर्णय लेने दें। दूसरा, जो वो निर्णय लें उस निर्णय में हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए। और जो छोटे छोटे जो काम हैं, जैसे किसी ने कोई काम किया तो उसको मनोबल बढ़ाने के लिए उसको शाबाशी देना,
1: प्रोत्साहित करें।
0: इसके अलावा उनको जो एक्टिविटीज हैं, खास करके अगर हम देखें तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, किसी भी विद्यार्थी का गेम्स का, स्पोर्ट्स का, बाकी चीजों के प्रति भी हमें ध्यान रखें। और हम ये कोशिश ना करें कि विद्यार्थी केवल एक नंबर लाने की मशीन है।
1: जी।
0: उसको भी एक ह्यूमन बीइंग समझें और उसके जो भी चीजें चलती हैं, खास करके जो उसकी रुचि के विषय हैं, उनमें भी समय दें। और एक जो चार्ट, ये जो हम कहें टाइम टेबल, नियमली हम बनाएं, टाइम टेबल हम एक बनाएं, उस टाइम टेबल में भी हम देखें कि कौन कौन से काम उसके हो सकते हैं, तो टाइम टेबल के अनुसार उसका हम काम करवाएं।
1: तो डॉक्टर साहब, अब मेरा अंतिम प्रश्न होगा आपसे, और वो ये है कि बच्चे या अभिभावक मनोदर्पण से कैसे जुड़ सकते हैं?
0: देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि मनोदर्पण से जुड़ने के लिए हमारी एक हेल्पलाइन है, उसका नंबर मैं पुनः आपको बता देता हूँ।
1: जी।
0: 8444-0632 ये हमारे मनोदर्पण का टेली हेल्पलाइन नंबर है, जिसमें अभी सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक 12 घंटे के लिए हमारे काउंसलर्स उपलब्ध होते हैं। कोई भी विद्यार्थी, कोई भी अभिभावक और कोई भी शिक्षक इनसे मदद ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे दूसरी जो एक टेली हेल्पलाइन है, जो टेली मानस की है, वो नंबर भी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, 14416। ये टेली हेल्पलाइन है टेली मानस की, इस पर भी वो अपनी मदद के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर स्कूल काउंसलर, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक उपलब्ध होते हैं। और अगर किसी प्रकार का कोई ऐसी बात दिखती है कि उनको कोई समस्या दिखती है, आप हमें ईमेल के माध्यम से भी manodarpansel@gmail.com पर भी ईमेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं, हमारे सहयोग सेशन को वो देख सकते हैं, परिचर्चा सेशन को वो सुन सकते हैं, और एनसीईआरटी के वेबसाइट पर यूट्यूब में भी हमारे सारे के सारे कार्यक्रम उपलब्ध हैं, तो विद्यार्थी इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं।
1: जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी देने के लिए और साथ ही साथ इतना अच्छा परामर्श देने के लिए। तो श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि इस प्रसारण को सुनने के बाद आप आज के श्रोता संवाद कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 8448440632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, इस पर हम आपसे प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा करेंगे, जरूर लिख भेजिएगा।
2: और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
4: अभी आप उमंग कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 1 बजे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। सहकारिता मंत्रालय का पांचवा स्थापना दिवस समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। सहकार से समृद्धि लक्ष्य के तहत ये समारोह रखा गया है। इस अवसर पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कई प्रमुख परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदाम का उद्घाटन, सहकार वन और टिश्यू कल्चर केंद्र का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस के तीसरे चरण की शुरुआत और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के दुग्ध आपूर्ति डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ शामिल है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में पारदर्शी और आधुनिक व्यवस्थाएं की गई है। सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 साल से सहकार से समृद्धि के मंत्र पर चलकर करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में इस क्षेत्र में नए आयाम स्थापित हुए हैं। देश को सहकार से समृद्धि का मंत्र मिला, जिसने गांवों, गरीबों, किसानों और मजदूरों को उन्नत बनाया।
1: सहकारिता से जुड़ी जानकारियों को राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध करवाया। आपने देश को सहकार से समृद्धि का एक ऐसा मंत्र दिया जिसने देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर की तकदीर बदलने का काम किया है। इसी वजह से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भारत में सहकारिता और डेयरी सेक्टर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई शक्ति दे रहा है।
0: गौरतलब है कि सहकारिता क्षेत्र में राजस्थान में हुए नवाचार और विकास कार्यों ने देश भर में विशेष पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। रवाना होने से पहले श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और इन देशों की व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी इंडोनेशिया पहुंचेंगे। श्री मोदी वहां के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। जकार्ता में प्रधानमंत्री भारतवंशियों को संबोधित भी करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 8 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न पहुंचेंगे और 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। संस्कृति मंत्रालय ने इस अवसर पर कोलकाता में कार्यक्रम आयोजित किया है। ये कार्यक्रम डॉ. मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय द्वारा पिछले वर्ष घोषित 2 वर्ष के आधे

0: आधिकारिक समारोह के तहत हो रहा है। गृहमंत्री अमित शाह और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। डॉक्टर मुखर्जी की जयंती के मौके पर राज्य में भी विभिन्न आयोजन रखे गए हैं। प्रदेश भाजपा की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम के साथ विचार गोष्ठियां और अन्य कार्यक्रम हो रहे हैं। देश में 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान है, जो व्यक्तियों को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। ये प्रणाली रोगियों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इसके माध्यम से रोगी अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन नेटवर्क का विस्तार करके देश के रोगियों और स्वास्थ्य सुविधाओं को शामिल करना है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूरी तरह से डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा एनईटी यूजी 2026 की फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की समय सीमा कल तक के लिए बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में एनटीए ने सूचित किया कि जिन उम्मीदवारों ने अपना बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गौरतलब है कि प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के बाद इस साल 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द होने के बाद एनटीए द्वारा रिफंड प्रक्रिया चलाई जा रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर दोपहर के 1:05 में है। अब आप सुनेंगे महिलाओं का मनपसंद कार्यक्रम मुमन।

नमस्कार सखियों, मैं हूँ सोनल और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मोमनी। सखियों, हम अधिकारों की अगर बात करें तो हम मनुष्यों के या मानव के अधिकारों के बारे में तो हम हमेशा बात करते हैं, लेकिन अगर हम पशुओं की बात करें तो उनके भी कोई अधिकार होते हैं और उनसे भी, उनके अधिकारों से जुड़े हुए भी कोई संगठन काम करते हैं जो पशुओं के बारे में काम करते हैं और उनके क्या क्या अधिकार हैं और किस तरीके से पशुओं के प्रति क्रूरता को रोका जाना चाहिए और उनके अधिकार किस तरीके से उनको मिलने चाहिए, उसमें कौन सा संगठन कार्य करता है, ये जानना सखियों बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही एक संगठन है पेटा। पेटा का पूरा नाम है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। हिंदी में इसका मतलब है सखियों पशुओं के साथ नैतिक व्यवहार के पक्षधर लोग। ये दुनिया का सबसे बड़ा पशु अधिकार संगठन है और इसकी स्थापना की बात करें सखियों तो इसकी स्थापना 1980 में अमेरिका में हुई थी और भारत में इसकी शाखा पेटा इंडिया 2000 मुंबई में शुरू हुई थी। इसके महत्व को अगर हम देखें तो पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने और उनको उनके अधिकार दिलाने में जो पेटा है उसकी बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये संगठन मांस उद्योग, फर के व्यापार, मनोरंजन जैसे सर्कस और जानवरों की रेस और प्रयोगशालाओं जिसमें दवा या कॉस्मेटिक परीक्षण जो होते हैं उसमें जानवरों पर होने वाले अत्याचारों का कड़ा विरोध करता है। पेटा लोगों को शाकाहारी जीवन शैली अपनाने और चमड़े और ऊन जैसे उत्पादों का इस्तेमाल छोड़ने के लिए जागरूक करता है, क्योंकि अगर हम देखें तो मांसाहारी जो लोग होते हैं वो उनमें पशुओं की इतनी क्रूरता से हत्या

0: की जाती है, और साथ ही साथ ये चमड़े को बनाते हैं या फिर ऊन का जितना भी काम होता है उसके लिए भी जो पशुओं का इस तरीके से किया जाना जो भी है वो बहुत ही एक क्रूरतापूर्ण है। तो इसको किस तरीके से रोका जा सकता है उसमें ये संगठन बहुत ही मदद करता है। और इस संस्था का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये स्थापित करना है कि जानवर इंसान के भोजन, कपड़े या मनोरंजन की वस्तु नहीं है, उनके अपने भी अधिकार हैं, वो भी एक जीवन, उनका भी एक जीवन है, उनके अंदर भी आत्मा है, सांस लेते हैं, वो भी चीज़ों को महसूस करते हैं। तो किसी के सिर्फ मनोरंजन के लिए या किसी के भोजन बनने के लिए उनका इस तरीके से क्रूरतापूर्ण मारा जाना ये बहुत ही दुविधापूर्वक है। और अगर बात करें कानूनी लड़ाई और बचाव की, तो पेटा अक्सर कानूनी माध्यमों, अभियानों और सेलिब्रिटीज की मदद से पशु संरक्षण, कानूनों को मजबूत करने और बेजुबान जानवरों को बचाने का काम करता है। तो जरूरी है कि इस और भी पशुओं के प्रति जो अधिकार हैं या पशुओं को किस तरीके से इतनी क्रूरता से बचाया जा सकता है उस और आगे आना बहुत ही जरूरी है। और हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी बेजुबान जानवर को सिर्फ एक उनको भोजन बनाने के लिए अपना या फिर उनको मनोरंजन के लिए इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हर किसी का एक जीवन है, प्रकृति ने सबको एक जीवन दिया है, बहुत खूबसूरत ये जीवन है, तो वो भी चीज़ें महसूस करते हैं पशु की। तो इस तरीके से उनको मारे जाना बहुत ही गलत है और इस और सबको आगे आना चाहिए। और ये जो संगठन काम करते हैं इस दिशा में उनको उनका साथ देना चाहिए, उनका सहयोग देना चाहिए। तो सखियों, बातें आपसे यूं ही जारी रहेंगी, चलो चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: पर हम खुलकर सिर्फ आज महिलाओं से जुड़े, उनकी सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य,
2: गुमसुम गुमसुम गुप चुप, हल चल हो गई तेरी, होती है तेरी चुप, हल बल हो गई तेरी।

सने खाई मेरे को मैं तेरी बैठ के तू बस प्यारी प्यारी चेहरे ने पर दे सारा दिल भरी आंखों में सबसे प्यारा तुझसे होनी ना सुन शर्मा।

सखियों, हम बातें आपसे यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक भेंट वार्ता। भेंट वार्ता का विषय है केंद्र सरकार के कर 12 वर्ष महिला सशक्तिकरण के सोपान, और वार्ताकार है सूर्या व्यास से प्रीति भाटिया की बातचीत।

प्यारी श्रोताओं, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण हुए हैं और पिछले 12 वर्षों में यदि हम आकलन करें कि हमारी केंद्र सरकार ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, विशेषकर बहनों के लिए, महिलाओं के लिए, माताओं के लिए, स्वास्थ्य के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से, आर्थिक सक्षमता के लिहाज से, और किन अधिकारों के द्वारा हमें हमारी केंद्र सरकार ने मजबूती दी है, इस मुद्दे पर आज हम बात करने जा रहे हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना, महिलाओं को समाज में एक इज्जत बख्शना, या कहा जाए कि महिला यह महसूस कर पाए कि वाकई में वह उस समाज में उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा रखती है जितने कि पुरुष रखते हैं, ऐसा महसूस कराना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि सामान्य तौर पर जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास कभी भी श्रोताओं किसी एक पहलू से नहीं आता है। विकास की दास्तान, विकास की कहानी जुड़ी होती है महिलाओं के साथ, जो हमारे देश की आधी आबादी है। और जरा सोचिए कि कितने लंबे समय से आधी आबादी संघर्ष कर रही थी अपनी बातों को, अपने शब्दों को, अपनी भावनाओं को बताने के लिए, एक हक मांगने के लिए और खुल करके जीने के लिए, एक अच्छे से स्वस्थ रूप में, कहा जाए कि एक ऐसे परिवेश में जहां पर

0: उनके लिए कोई सुन रहा है, कोई उनकी बात को, उनके दर्द को महसूस कर रहा है। और बहुत खुशी की बात है कि पिछले कुछ समय से अगर हम देखें तो आज हमारी जो बहनें हैं वो घरों से बाहर निकल रही है, अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम ले रही है। और सिर्फ शिक्षा की ही बात मैं क्यों करूं, बल्कि शिक्षित होने के बाद वह कुछ अर्न कर रही है, कुछ चार पैसे कमा रही है, अच्छी पद पर, ओहदों पर बैठ रही है और अपने राष्ट्र के विकास में अपनी आर्थिक भागीदारी भी सुनिश्चित कर रही है। यह सब एकाएक नहीं हुआ, अनायास नहीं हुआ, एकदम से नहीं हुआ, इसके लिए लंबे समय से प्रयास किए जा रहे थे। और बहुत अच्छा लगता है जब उन प्रयासों को, उन भागीरथी कोशिशों को हम साकार होते हुए देखते हैं। हम उन्हें एक कहते हैं ना कि जिस रूप में हमने सोचा है, हमने कल्पना की है, उसी रूप में उन्हें आकार लेते हुए, साकार होते हुए हम देखते हैं। तो हमारे आज के इस कार्यक्रम में मैं जिनसे बात करने जा रही हूँ वह इसी विभाग से संबंधित है और हमें बताया जाएगा उनके द्वारा कि किस तरह से कई कई योजनाएं चल रही हैं, किन महिलाओं को फायदा मिला है और हम भी अगर चाहते हैं कि हम कुछ कर पाए, हम कुछ अच्छा कर पाए, कुछ नया कर पाए, हम कई योजनाओं का फायदा ले पाए, हमारे इर्द गिर्द अगर कोई ऐसी महिला है, बहन है जो उस श्रेणी में आती है तो हम उसे भी जोड़ सकते हैं इन योजनाओं से। तो हमारे साथ है सूर्या व्यास, जो महिला अधिकारिता द्वारा संचालित पन्नाधाय सुरक्षा व सम्मान केंद्र की प्रबंधक है। साथ ही आप राष्ट्रीय महिला आयोग के निर्देशन में संचालित तेरे मेरे सपने यानी विवाह पूर्व संवाद उस केंद्र की भी प्रबंधक है। सूर्या जी, हमारे कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है।
1: धन्यवाद प्रीति, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे यहाँ एक ऐसा मंच दिया जहाँ मैं अपनी भावनाओं को और अपने विभाग की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनके बारे में लोगों को अवगत करा सकूं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे एक ऐसा अवसर मिला जहाँ पर हम खुलकर सिर्फ आज महिलाओं से जुड़े उनकी सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनकी आर्थिक सक्षमता और उनके अधिकारों के बारे में हम खुल के चर्चा करेंगे।
0: जी, और आपके द्वारा इस विषय में हमारी महिलाओं को, बहनों को जो जानकारी मिलेगी वो यकीनन उनके बहुत काम आएगी। तो सबसे पहले सूर्या जी, आप क्या सोचते हैं कि हमें महिलाओं के लिए विशेष प्रयास करने की वाकई में जरूरत है या समाज जिस रूप में चल रहा है या चल रहा था वही अपने आप में ठीक है?
1: देखो, बाहरी दौर में तो अगर देखा जाए और ये जो हमारे सरकार द्वारा जो योजनाएं और बनाई जा रही है उस पर मोटा मोटी रूप पर तो बहुत अच्छे से काम हो रहा है, पर इंटरनली आज भी कहीं ना कहीं ऐसी जगह है जहां हम हमारे केंद्र पर ऐसी पीड़ित महिलाओं को या किसी को देखते हैं तो हमें कहीं लगता है कि अभी भी इनके हित को लेकर एक लड़ाई जो अंदरूनी चलती जा रही है वो कायम है और उस लड़ाई के लिए अभी हमें बहुत जंग लड़नी बाकी है। पर फिर भी इन सबके रहते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान को लेकर और पूरे देश को लेकर जो आर्थिक सक्षमता के पहलू हैं हमारे, जैसे हर क्षेत्र में महिलाओं को आरक्षण की बात की जाए अगर तो महिलाओं के लिए रिजर्व सीट्स हैं। स्वास्थ्य को लेकर देखें तो हमारे राजस्थान को लेकर ही अगर मैं बताऊं आपको तो स्वास्थ्य और चिकित्सा को लेकर महिलाओं से संबंधित इतनी योजनाएं हमारे विभाग में भी हैं जिनके बारे में शायद मैं बताते बताते हमारे बीच का समय कम पड़ जाएगा, इतनी योजनाएं हमारे बीच में चल रही है। और आप सभी जानते भी हैं कि काफ़ी महिलाएं जो हैं इन सब चीज़ों से लाभान्वित भी हुई है। उसी के अंदर जैसे आपको पहला बताऊँ, उज्ज्वला योजना है ना, उज्ज्वला योजना है जिसमें 10 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त कनेक्शन हो चुके हैं।
0: बिल्कुल, ये कितनी अच्छी बात है ना कि रसोई तो वैसे भी मतलब एक ऐसा स्थान है जहां महिला की आधी जिंदगी या आधी से ज्यादा जिंदगी गुजर जाती है और ऐसे में जब धुआं उनकी आंखों को कष्ट पहुंचाता है, उस चूल्हे को जलाने के लिए इतना परिश्रम करना, एक एक फूंक से ऐसे लगता है जैसे जान बाहर आ रही हो, ऐसे में उज्ज्वला योजना के द्वारा 10 करोड़ से ज्यादा, जैसा कि आपने बताया, महिलाएं लाभान्वित हुई है और उन्हें मुफ्त LPG कनेक्शन मिले हैं। तो कहीं ना कहीं आप मानती हैं कि यह महिला के स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ा हुआ केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया एक बेहतरीन कदम है?
1: बेशक, इसमें कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं है और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे हमारी महिला और नारी शक्ति के बारे में सरकार द्वारा इतने अहम मुद्दों पर ही ज़्यादा विशेष तौर पर जोर देकर काम किया जा रहा है। और हम सभी में से हमारी ही बहनें हैं जिन तक आज ये LPG गैस कनेक्शन पहुँचे हैं तो उनका जीवन सुगम ही हुआ है।
0: और कहीं ना कहीं हम देखें तो समय की भी बचत हुई है, खाना बनाना ज़रा आसान भी हो गया है।
1: बिल्कुल,
0: और इसके अलावा आप हमें सरकार की एक और योजना है नारी शक्ति

0: वो कहते हैं ना कि जाके पाँव न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम तो अपने आप में लोकसभा व राज्यसभा, राज्य विधानसभा में महिलाओं की 33% सीट आरक्षण करने का जो प्रयास किया गया है वो बहुत अच्छा है, पर क्या वाकई में हमें राज्यसभा में सॉरी लोकसभा में और राज्य विधानसभा में आरक्षण की जरूरत थी?
1: बिल्कुल थी, क्योंकि हमें अब जब हम बात कर रहे हैं समानता, एकता और भारत के विकास की, तो भारत का विकास अकेले एक पुरुष या मेल शक्ति नहीं कर सकती, महिला शक्ति की उसके साथ साथ बिल्कुल भागीदारी जरूरी है। इसी पर मैं एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाना चाहती हूँ आपको कि हमारा ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था जिसमें लाइव प्रधानमंत्री जी हमारे साथ थे, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक बहुत ही चुटकुला सुनाया था। वो चुटकुला वैसे तंज कसा था उन्होंने, यही कि पहले जब दो पुरुष बात कर रहे होते थे बाप बेटा, तो वो अपनी माँ जब आती थी तो कहती थी जल्दी से चाय रखो और चली जाओ, हम कुछ जरूरी बात कर रहे हैं, और इसी को तंज कसते हुए उन्होंने आगे ये बात कही कि जब आज के जमाने में जब कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन या सामाजिक कोई भी पारिवारिक डिसीजन भी अगर लिया जाता है ना, तो बेटा माँ से कहता है कि माँ आओ तुम भी बैठो, है ना, तुम्हारी सलाह और तुम्हारी जो काबिलियत है उस पर कहीं पर भी हमें
0: शक नहीं
1: है, और हमें ये लगता है कि आप हमसे ज्यादा और बेहतर डिसीजन दे सकती हैं।
0: बिल्कुल, तो देखिए कितनी बात तो बहुत छोटी सी है, लेकिन अगर हम बिफोर और आफ्टर देखते हैं तो बहुत बड़े बड़े बदलाव आ गए हैं कि कहां आप सिर्फ वही हैं जिन्हें चूल्हा चौका संभालना है, जिनके निर्णय हमेशा कोई और लेगा और आपको बस निर्णय को मानना है, और कहां निर्णय लेने में आपकी भागीदारी आ रही है, बहुत बड़ा फर्क है।
1: बहुत फर्क है।
0: बिल्कुल, और इसके साथ आप हमें कोई और योजना भी बताना चाहती हैं जो महिला स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हो या फिर हम कहें तो आर्थिक रूप से हमें मजबूत कर रही हो?
1: जी हाँ, जैसा कि आपको अभी पूर्व में ही आपने सभी हमारे श्रोताओं को बताया भी है कि मैं जिस विभाग से कार्य करती हूँ, जिस विभाग में काम करती हूँ, वो विभाग महिलाओं और बालिकाओं के हित में ही काम करता है। तो हमारे विभाग की एक ऐसी योजना है जिसने नो डाउट बहुत सारी जो ऐसी महिलाएं थी जिनमें योग्यता थी, काबिलियत थी, पर उनका आर्थिक परिप्रेक्ष्य से वो थोड़ी कमजोर थी, तो गवर्नमेंट ने ऐसी एक योजना बनाई है, राजस्थान में लागू है वो योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना।
0: जी,
1: इसमें महिलाओं को जैसे कुछ कैटेगरीज हैं जैसे SC ST OBC, दिव्यांग, परित्यक्ता, और ये जो श्रेणी की महिलाएं हैं उनको 30% आरक्षण, सॉरी आरक्षण नहीं, 30% इनको सब्सिडी मिलती है, और जो सामान्य है उनको 25%। उदाहरण के तौर पर अगर 1,00,000 का लोन लिया तो जो विशेष कैटेगरी वाली महिलाएं हैं उनको 30,000 रुपये अंशदान गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा, और वहीं सामान्य महिलाओं को 25,000 रुपये।
0: मतलब आपके 1,00,000 रुपए में से आपको जब चुकाने हैं तो 75,000 या 70,000 चुकाने हैं, सही है?
1: बिल्कुल सही।
0: तो बहुत अच्छी बात है श्रोताओं, अगर आप
1: में विशेष तौर से 50,000 से लेकर 50,00,000 तक का लोन है।
0: वाह, बहुत बहुत बड़ा कदम है ये तो, क्योंकि अब मुझे लगता है कि कोई भी बहन, कोई भी माता अपना सपना आराम से पूरा कर सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आप में कोई हुनर है और आप अपने हुनर के जरिए मेहनत करके ना अपनी मेहनत की कमाई खाना चाहती हैं, आप हाथ में 4 पैसे चाहती हैं, या फिर आप चाहती हैं कि अपने परिवार के आर्थिक दायित्वों को पूरा करने में आप कहीं ना कहीं अपनी तरीके से कोई ना कोई मदद करें, तो सरकार ने तो ऐसा कर दिया है कि मानो हमें पंख दे दिए हैं और एक खुला आसमान
1: हमारे साथ है।
0: बिल्कुल, और क्योंकि आपने आर्थिक योजना की बात कही तो मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि PM जनधन योजना है वो भी रिकॉर्ड तोड़ रही है, 32 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट खोले जा चुके हैं महिलाओं के। तो सूर्या जी, आप जानती हैं कि महिला का बैंक अकाउंट होना, उसके पास अपना ATM कार्ड होना और उसके अपने पैसे होने, ये एक समय ऐसा भी था जब महिलाओं के लिए एक स्वप्न था।
1: बिल्कुल, आज उस स्वप्न को साकार होते हुए देखकर हमें सबको गर्व भी महसूस होता है, और इस योजना के लाभार्थी जो हैं उनमें जो एक आत्मविश्वास जगा है, एक अपने आप की आइडेंटिटी, और अपनी आज वो हक से कह सकती है कि नहीं ये मेरा पैसा है। पहले आश्रित थी, ये हम सभी जानते हैं, पर आज के समय में जो ये निशुल्क इन सभी के बैंक अकाउंट खुलाए गए हैं जिसमें 0 अमाउंट पर अकाउंट खोले जाते थे
0: जी।
1: तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज एक महिला का खुद का ATM, अपनी ATM पे चमकता हुआ खुद का नाम देखकर उसमें आधा गुरूर तो वैसे ही आ जाता है ना, तो वो अपने आप को बहुत ही सुरक्षित और अपने अधिकारों को ऐसे जो देखती है ना ऊंचा उठता हुआ, तो उसे ऐसे

0: है कि आज आज मुझे सही मायने में ऐसा लग रहा है कि मुझे एक अवसर मिल गया आगे बढ़ने का।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि एक आश्रित की पीड़ा और कोई नहीं समझ सकता, जब आपको हर चीज के लिए हाथ फैलाना पड़े। और जो सुरक्षा है ना, या सक्षमता है, वो सिर्फ ये नहीं होती कि आप शारीरिक रूप से सुरक्षित हैं, बल्कि आर्थिक सुरक्षा, मानसिक सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ हम बात सुरक्षा की कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि महिला के लिए एक समय बड़ा मुश्किल होता था, अगर वो नौकरी कर रही है या घर से बाहर काम कर रही है कहीं पर, तो गर्भावस्था का जो समय है, जिसमें महिला को विशेष देखभाल की जरूरत है, वो समय बड़ा मुश्किल से निकलता था। चलिए, वो भी निकल जाता था, लेकिन ऐसा माना जाता था कि अगर आपका बच्चा हो गया है तो आपका कैरियर वहाँ खत्म हो गया है, या फिर आपको कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी, तो उन महीनों में, उन दिनों में काम चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। लेकिन वर्तमान में इसमें एक बहुत अच्छा परिवर्तन आया है। मातृत्व अवकाश जो पहले 12 सप्ताह का था, वो अब बढ़ के कितना हुआ है सूर्या जी?
0: 26 26 माह,
1: मतलब
0: छब्बीस
1: 26 सप्ताह,
0: सप्ताह
1: अगर हम देखें 12 सप्ताह से 26 सप्ताह, यानी डबल से भी 2 हफ्ते ज्यादा।
0: 6 महीने।
1: तो इस मातृत्व अवकाश की समयावधि बढ़ा देने का क्या मोटा मोटी रूप से फर्क पड़ता है?
0: फर्क तो देखो ऐसा पड़ता है, एक शिशु को उसकी माँ की सबसे ज्यादा जरूरत होती
1: बिल्कुल,
0: है ना। तो वो जो समय होता है प्रसव के जस्ट बाद का, तो उस समय जो महिला खुद भी थोड़ा शारीरिक रूप से कमजोर तो हो ही जाती है, हम सभी जानते हैं, क्योंकि ये दूसरा जन्म कहलाता है ना।
1: बिल्कुल
0: एक जन्म को, एक बच्चे को जन्म देने के बाद उस माँ का भी वो दूसरा जन्म होता है, तो
1: बिल्कुल,
0: उसे अपनी स्वयं की देखभाल के लिए और अपने नवजात शिशु की देखभाल के लिए, वो उसके साथ जितना समय उस समय बिताएगी ना, वो उसके अतीत की बेहद खूबसूरत स्मृतियां होती है। तो
1: बिल्कुल
0: ये समय वो माँ को जब पहले कॉम्प्रोमाइज कर कर अपनी जॉब पर जाना पड़ता था, अपने बच्चे को छोड़कर, और अपने बच्चे को छोड़कर जाने की जो पीड़ा होती है वो मेरे हिसाब से कई हद तक कम हो जाएगी। और आर्थिक रूप से अगर हम इसे, ये तो हो गया एक इमोशनल जो पहलू है वो है, आर्थिक रूप से अगर हम देखें तो पहले जो ये था कि भई आपने भी बताया जैसे कि विदाउट पे रह के, मतलब उनको किसी तरह की तनख्वाह नहीं दी जाती थी,
1: आर्थिक रूप से
0: आर्थिक
1: नुकसान।
0: रूप से नुकसान जो हो रहा था उसकी भरपाई हो गई है ना। क्योंकि अब ये है कि इसमें भी पेमेंट मिलता है,
1: जी
0: तो आर्थिक रूप से भी सक्षम है, साथ में भावनात्मक रूप से अपने बच्चे के साथ पूर्ण रूप से जुड़ाव हो रहा है उसका, क्योंकि वही वो समय होता है जिसमें उसका और उसके बच्चे का आपस में
1: कनेक्शन
0: कनेक्शन
1: स्ट्रॉन्ग
0: बैठता
1: होता है।
0: है ना। तो
1: बिल्कुल
0: वही समय वो अपने बच्चे के साथ बहुत अच्छा निकाल पाए, इसके लिए ये जो अनूठी पहल है, ये भी हम धन्यवाद के काबिल है हमारी सरकार कि हमारी महिलाओं के हित में इतना कुछ सोचा है।
1: बिल्कुल, और मुझे लगता है कि जब एक महिला अपने बच्चे को, बच्ची को जन्म देती है, वो सिर्फ महिला का तो नहीं होता, वही तो आगे बढ़ के कहीं ना कहीं अपने देश के विकास में अपना अपना कोई भागीदारी अदा करता है। तो जब हम समझते हैं ना ह्यूमन रिसोर्सेस, तो वो बच्चा जैसे एक अच्छी पैदा होने के बाद में एक अच्छी परवरिश मिलेगी, वो समय जब उसकी शारीरिक मजबूती हो रही होती है, क्योंकि कई महिलाएं जब काम पे जाती थी तो उनके लिए बहुत बड़ा गिल्ट होता था कि अपने बच्चे को स्तनपान नहीं करा पा रही है, अपना दूध नहीं पिला पा रही है, तो एक माँ के लिए इससे बड़े दुख की कोई बात नहीं होती थी। लेकिन अब अगर हम देखें कि 12 सप्ताह की जगह 26 सप्ताह का जो अवकाश मिला है मातृत्व अवकाश, और सवैतनिक अवकाश होता है जब आप किसी डिपार्टमेंट में 2 वर्ष से शायद ज्यादा आपने निकाल दिए हो,
0: प्रोफेशन निकाल दिया।
1: हाँ, तो ऐसे में उस बच्चे की भी शारीरिक मजबूती में कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा कदम है। और एक माँ के जरिए से सोचे तो लाखों दुआएं निकलती हैं सरकार के इस कदम के लिए। इसी के साथ स्वच्छ भारत मिशन के बारे में भी हम बात करना चाहते हैं, जहाँ 12 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट बन गए हैं। तो टॉयलेट बनना तो सूर्या जी सबके लिए ही बेनिफिशियल है, हम तो शहरों में रहते हैं, कई ऐसे तबके हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे घरों में बहुत सामान्य है कि टॉयलेट नहीं है। ऐसे में मतलब क्या उन महिलाओं की पीड़ा रहती होंगी ना, जिनके घरों में टॉयलेट नहीं है और इस बहुत बेसिक सी रोजमर्रा की चीज के लिए उन्हें कहीं बाहर जाना पड़ता हो।
0: बिल्कुल, ये बहुत ही पीड़ादायक होता है। अगर हम अपने आप को इस जगह पर रखकर देखें तो शायद हमें पता चले कि हमारी तो जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो हम अब पूरी कर रहे हैं, पर हमारी सुरक्षा की दृष्टि से अगर वो देखा जाए तो वो कहीं भी सेफ नहीं है,
1: बिल्कुल
0: है ना। क्योंकि महिलाओं को खुले में जाना, आप सोचिए, उनके शरीर के अंगों का प्रदर्शन
1: बिल्कुल
0: इनडायरेक्ट डायरेक्ट हो ही रहा है ना,
1: बिल्कुल,
0: पर वो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत घातक है।
1: एक भय भी रहता है।
0: एक भय रहता है उन्हें उन्हें कि कोई उन्हें देख ना ले, इसलिए जल्दी सुबह जाएंगे तो भी ये होता है कि आसपास में अब वो तब का पूरा ही ऐसा ही होता है, तो वहां पर आसपास की कितने लोग घूमते फिरते विचरण करते हुए और

0: ग्रामीण क्षेत्र में तो उनकी दिनचर्या बहुत जल्दी शुरू हो जाती है,
1: बिल्कुल
0: तो उन महिलाओं के लिए सुरक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत वो होता है कि उन्हें लगता है कि हम कहीं पर भी लोगों की नजर में ना आ जाएं, है ना, उनके कोई उनके शरीर के अंगों को ना देख ले, या इस तरीके से ना हो कि कहीं उनकी सुरक्षा को लेकर कहीं पर कुछ कमी पेशी रह रही
1: बिल्कुल
0: है ना। तो वो जो प्रोस्पेक्टस है, अगर उसको देखकर हम सोचे तो ये एक बहुत ही जरूरी और अहम मुद्दा था जिस पर चर्चा करनी। और आज हमें इस ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि 32 करोड़ से भी ज्यादा,
1: बैंक अकाउंट खुल चुके हैं पीएम जनधन योजना में, और इसी के साथ 12 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट बन चुके हैं, 10 करोड़ से ज्यादा मुफ्त एलपीजी कनेक्शन मिल चुके हैं, 33% जो सीट है वो लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित है, और 12 सप्ताह से 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश। कितनी खुशी की, प्रसन्नता की बात है कि केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए सूर्या जी कितना कुछ किया है।
0: जी हाँ, 12 वर्ष के अंदर ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट कह सकते हैं हम कि
1: बिल्कुल
0: महिलाओं के हित में और हमारी जो देश की आधी आबादी है उसके बारे में इतना विशेष कठोर और अच्छा कदम उठाया गया।
1: लेकिन क्या आप मानती हैं कि इसका फायदा सिर्फ महिलाओं को मिलेगा?
0: नहीं, इसका पूरे देश को
1: समाज
0: फायदा है, पूरे समाज को मिलेगा, क्योंकि महिलाएं कहीं ना कहीं पुरुष से जुड़ी हुई है, पुरुष कहीं ना कहीं महिलाओं से जुड़े हुए हैं, तो जब ये सामंजस्य शुरू से ही बनता शुरू होता है और इस जगह पर आकर जहाँ ये जो एक वो इन दोनों समुदायों के बीच में जो संघर्ष था, कॉन्फ्लिक्ट चलता था,
1: जी
0: वो खत्म हो गया है।
1: बिल्कुल, क्योंकि मैं हमेशा से मानती हूं, मैंने कई विचारकों को पढ़ा भी है, उसमें भी ऐसा लिखा हुआ है कि आप ग्रोथ कैसे करेंगे ना, अगर हम इकोनॉमिक्स के एस्पेक्ट से देखें तो हम उस देश में रहते हैं जहां लगभग देश की आधी से ज्यादा आबादी उत्पादकता की दृष्टि से लगभग निष्क्रिय हो। अब जहां पे सिर्फ एक पुरुष की तनख्वाह पर, आय पर, या जो वो अर्जित करता है उस पर सभी परिवार के लोग पलते हो, उस परिवार की इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हम कैसे कर सकते थे? और जब इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव नहीं थी सूर्या जी, तभी तो ऐसा शुरू हुआ कि लोग चाहते थे कि उनका जो बच्चा हो वो पुरुष पैदा हो, लड़का पैदा हो, वही लड़का पुरुष बनेगा, बेटी ना पैदा हो। तो जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं तो शायद सरकार की जो एक और बहुत महत्वपूर्ण जी योजना है, बेटी बचाओ अभियान, हम उसको भी समझ पाते हैं।
0: जी हाँ, बेटी जन्मोत्सव को लेकर जो हमारे देश में अनूठी पहल की गई है और ये योजना जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहा है, इसमें बहुत सारे पहलू हैं, जैसे बेटी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, है ना,
1: जी
0: विभाग द्वारा इस जैसे बेटी का जन्म होता है तो उसको अभिशाप ना समझकर आप उसे उत्साह के रूप में कैसे मनाएंगे, इसके लिए जिलेवार कलेक्टर द्वारा और अन्य अधिकारियों के द्वारा सम्मान के रूप में बधाई संदेश दिया जाता है, केक कटवाकर उनकी, ये विभाग के योजना के हिसाब से बता रही हूँ मैं आपको, थाली बजाई जाती है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि ना, मतलब एक बेटी के जन्म को इतना उत्साह के रूप में और उत्सव के
1: अन्यथा
0: रूप में प्रसन्नता के साथ मनाया जा रहा है।
1: एक समय वो भी था कि अगर कोई सद्य प्रसवा के साथ क्या होता होगा जब उसने एक बेटी को जन्म दिया हो, तो हर कोई या तो ताना मारेगा या उसे बिचारी कहेगा। लेकिन जब एक बहुत बड़े स्तर पर ना इसके लिए कोशिशें करी जाती हैं, लोगों को ये समझाया जाता है कि देखिए बेटी भी आपकी संतान तो है ही, साथ ही साथ ये बेटी दो दो कुल को लेकर के चलेगी, हमने जो मानसिकता को बदलने के लिए जो प्रयास करे हैं, विशेषकर अगर मैं देखूँ तो पिछले 12 वर्ष में केंद्र सरकार ने हर एक स्तर पर, छोटी गाँव ढाणियों से लेकर के बड़े बड़े शहरों तक, लोगों की सोच को बदलने की कोशिश की है।
0: इसमें मुख्य रूप से लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, जिसमें 1.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है एक कन्या की माता को,
1: अच्छा
0: मतलब कन्या को दी जाती है, पर वो जो मतलब एक कन्या की माता के लिए बहुत हर्ष का समय होता है, क्योंकि उसे जन्म होते सबसे पहले इसे 7 अलग अलग किस्तों में बांटा गया है, जिसमें 2 किस्तें तो शुरुआती जो 4-5 किस्तें हैं वो तो मिलती है मेडिकल विभाग से, और बाकी की अन्य जो है वो मिलती है शिक्षा विभाग से, है ना। तो शुरुआत की जो 2 किस्तें हैं वो एक तो जन्म पर 2500 रुपये और 2500 रुपये टीकाकरण पर, 1 वर्ष की जब पूरी हो जाती है, और उसके बाद की जो है वो सारी शिक्षा विभाग से मिलती है, जिसमें 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर जब वो स्नातक कर लेती है अपनी, तो उसे एक मुश्त 1 लाख रुपए दिए जाते हैं।
1: वाह, बहुत अच्छी योजना है, मतलब लक्ष्मी लक्ष्मी लेकर के आती है। अगर हम इसको समझें कि बेटी को हम लक्ष्मी का ही रूप कहते हैं और वो लक्ष्मी लक्ष्मी लेकर के ही आती है, तो कहीं ना कहीं बहुत शुरुआत से ही सोच बदलनी शुरू हो जाती है कि भाई बेटियां भार नहीं है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के सार्थक परिणामों से हमारे देश का जो लिंगानुपात है वो सुधर गया है। मतलब अब अगर हम कहें तो 1,000 लड़कों पर 930 लड़कियां हैं, जो किसी जमाने में बहुत कम थी, 800 और कुछ थी, धीरे धीरे 900 के आसपास आई, तो बहुत अच्छी बात है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र सरकार का प्रयास है, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से भी बहुत बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सराहनीय है, महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर के, वो है कि मुस्लिम महिलाओं को भी अधिकार दिए गए हैं।
0: जी हाँ, जो ये ट्रिपल तलाक वाला था उसमें उसको लेकर विशेष तौर पर जो एक
1: महिलाओं को
0: जो सुरक्षा मिली है, कानूनी सम्मान और संरक्षण मिला है, ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है और बहुत ही सराहनीय है।
1: क्योंकि जब हम महिला की बात करते हैं तो हम किसी विशेष धर्म की, किसी विशेष तबके की बात नहीं करते हैं, हम गरीब और अमीर की बात नहीं करते हैं, हम शिक्षित और अशिक्षित महिला की भी बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ हमारे देश की एक सामान्य नागरिक की बात करते हैं। तो ऐसे में ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त कर मुस्लिम महिलाओं को कानूनी संरक्षण और आत्मसम्मान दिया जाना भी केंद्र सरकार का बहुत अच्छा कदम है। और आपने सुना है हमेशा एक लड़की को कहा जाता है कि अपने घर जाओ, है ना, तो जब लड़की की शादी नहीं होती और वो कुछ करना चाहती है तो उसे अक्सर माता पिता कहते हैं अरे अपने घर जाके करना, और जब वो अपनी घर मतलब सो कॉल्ड अगर वो अपनी ससुराल जाती है और कुछ कहती है, मानो पढ़ना है कुछ और करना है, तो सास ससुर अन्य रिश्तेदार या पति कहते हैं अपने घर से करके नहीं आई। तो ये हमेशा से मैं सोचती थी कि यार कौन सा घर अपना, आपका तो कोई घर होता ही नहीं है, न यहाँ का न वहाँ का। तो एक घर ऐसा जो आपकी मेहनत पर बना हो, एक घर ऐसा जो सचमुच आपका हो, जिसे आप कह सकते हैं कि मेरा घर है, चाहे आपका सहस्वामित्व हो या खुद का हो, ये कितनी अच्छी सी बात है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी सूर्या जी बांटे गए जो घर हैं उसमें लगभग 73% घर या तो महिलाओं के नाम पर है या सहस्वामित्व है।
0: बहुत ही सराहनीय प्रयास है ये, और बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग आज कह सकते हैं कि हमारी खुद की छत है।
1: बिल्कुल,
0: मेरा घर है,
1: मेरा घर है। महिलाओं के लिए कहना कि मेरा घर है, ये मतलब बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब भी वो मेरा घर कहती है ना तो उसमें पीछे किसी न किसी पुरुष का साया दिख जाता है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो इसी के साथ बहुत अच्छा लगता है कि केंद्र सरकार ने पिछले 12 सालों में हमारे बारे में इतना कुछ सोचा, मतलब आर्थिक रूप से सशक्त करने के प्रयास, वित्तीय स्वतंत्रता, धुएं से मुक्ति और हमारे स्वास्थ्य की बेहतरी के प्रयास, आवास में स्वामित्व के प्रयास, मातृत्व अवकाश का प्रयास, मुस्लिम महिलाओं को भी अधिकार देना, और एक और जगह है वो है सशस्त्र बलों में भागीदारी। क्योंकि आप जानते हैं ना, पहले ऐसे था कि महिला अगर किसी कार्य क्षेत्र में काम कर रही है और पुरुष भी काम कर रहा है तो दोनों को वेतन समान
0: नहीं मिलता था,
1: और वर्तमान में जो प्रयास करे गए हैं उसमें समान काम के लिए समान वेतन दिया जाता है। विशेषकर अगर हम बात करें सशस्त्र बलों की, तो आप सशस्त्र बलों में महिलाओं की रोल को लेकर के क्या कहेंगी?
0: सशस्त्र बलों में भागीदारी को लेकर मैं यह कहूंगी कि जैसे सेना में महिलाओं की भर्ती, उनका विस्तार, सैनिक स्कूलों को लड़कियों के लिए भी खोलना,
1: जो पहले नहीं था,
0: पहले से सैनिक स्कूल सिर्फ पुरुषों के लिए हुआ, पुरुषों के लिए या लड़कों के लिए हुआ करते थे, तो वो आज बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए खुलना बहुत बड़ी बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। और ये
1: फाइटर पायलट वाला,
0: जी हाँ, कि लड़ाकू पायलट के रूप में जो महिला की नियुक्ति होती है, ये इससे बड़ा तो मेरे हिसाब से हम सोच ही नहीं सकते थे, तो ये हमारी सोच से भी परे था और बहुत अच्छा एक सराहनीय कदम रहा।
1: क्योंकि हमेशा ऐसा होता है ना कि अगर आपको बता दिया जाता है कि अगर आप लड़की हैं और ये आपकी लिमिटेशंस हैं, मतलब आप इतना ही कर पाएंगी, इसके आगे नहीं कर पाएंगी, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मतलब लड़की होना क्या मेरे लिए श्रापित होने जैसा है।
0: जी हाँ, पहले यही लगता था कि श्रापित होने जैसा है, पर आज जो हम आकाश में उड़ते हुए, चाहे वो पायलट हो या रोड पे चलती हुई दौड़ती हुई रेलगाड़ियां हो, जहां पर हम देखते हैं कि पायलट के रूप में, सेना के रूप में लड़ने के लिए तैयार सूरवीरों के साथ वीरांगनाएं जो देखते हैं, उसको देखने के बाद हमें ये लगता है कि नहीं, हम आज उस देश में हैं जहां महिलाओं की भरपूर प्रगति हो रही है और उनकी प्रगति पर बहुत बल देकर काम किया जा रहा है।
1: तो भारत में महिला सशक्तिकरण की कई योजनाएं भी इसलिए चलाई गई है, जैसे मुद्रा ऋण, महिला उद्यम निधि योजना, आपने भी बताया हमें, महिला उद्यमिता को मंच दिया जाता है, स्टैंड अप इंडिया, उद्योगिनी, महिला शक्ति केंद्र, कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं, और इन सभी योजनाओं को लेकर के केंद्र सरकार शायद एक ही आशा रखती है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक इन योजनाओं को

0: को पहुंचाया जाए। और मुझे लगता है सूर्या जी कि काफी हद तक हम अपने इस स्वप्न को साकार कर पा रहे हैं।
1: बिल्कुल, ये जो हमारे जैसा कि आपने पहला पूर्व में परिचय मेरा यही दिया था कि मैं महिला अधिकारिता से हूँ और पन्नाधाय सुरक्षा सम्मान केंद्र से हूँ। तो ये जो केंद्र चलते हैं, ये सरकार द्वारा जो संचालित केंद्र हैं, इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारी मुख्य धारा से जोड़ना और मुख्य योजनाएं जो हैं ये महिलाओं तक पहुंचाना है ना। तो हम सबसे ज्यादा इसी पर ही काम करते हैं और हमारी जो टीम है वो मुख्य रूप से अवेयरनेस के प्रोग्राम करवा करवा कर लोगों को जागरूक करती है। और हमने जो उद्यम प्रोत्साहन योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना है, इसका अपने क्षेत्र का 100% दिया है।
0: बहुत अच्छी बात है, हमारा जैसलमेर इतना आगे बढ़ रहा है, हर महिला मुस्कुरा रही है, आगे बढ़ रही है। तो श्रोताओं, हम यही चाहते हैं कि ऐसे ही हम विकास जो है उसको महिलाओं के साथ हम विकसित ही बनेंगे और इस विकास की यात्रा में महिलाएं भी बढ़ चढ़ के आगे आए, अपनी भागीदारी दें। चाहे हम किसी भी क्षेत्र से हो, कहीं ना कहीं हम अपने सपनों को लेकर के आशान्वित रहें कि उन्हें पूरा किया जाएगा, खुले आसमान में पंख लेकर के उड़ें। इसी के साथ हम आशा रखते हैं कि इसी तरह केंद्र सरकार हमारे बारे में सोचती रहेगी। सूर्या जी, आपके साथ बहुत अच्छा लगा, आपने हमें, हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, इतनी योजनाओं का परिचय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी प्रीति, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप सभी के साथ बात करकर। और मुख्य रूप से हमारी जो ये सरकार द्वारा हमारे हित में जो किया गया है उसके ऊपर विशेष चर्चा करकर और इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनकर मुझे बहुत अच्छा लगा।
0: बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहें, जब भी हमें लगा कि हम आपके विभाग के बारे में या आपसे कोई सेवा लेना चाहेंगे, आप ऐसे ही अपना अमूल्य समय निकाल।
2: तो सखियों, अभी आप सुन रहे थे महिला सशक्तिकरण पे वार्ता। वार्ताकार थे प्रीति भाटिया और सूर्या व्यास। सखियों, अगर हम बात करें पानी की, तो पानी का जो बचाव है वो किस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि पानी जो एक चीज़ है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। और ऐसे में पानी का संरक्षण हम सभी को करना चाहिए, हम सभी को इस ओर विचार करना चाहिए कि हम अपने प्रयासों से किस तरीके से पानी को बचा सकते हैं, चाहे वो छोटी छोटी कोशिशें ही क्यों ना हो घर की, लेकिन पानी का बचाव बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में ही बात करें अगर बारिश के जल की, तो बारिश के जल के का जो संरक्षण है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बारिश के पानी को रहकर बर्बाद होने से बचाने के लिए छतों पे, अहातों पे या विशेष गड्ढों में इनको इकट्ठा किया जाता है और इसे भंडारण टैंकों में जमा किया जा सकता है, या भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए जमीन के अंदर रिचार्ज करके हम पानी को बचा सकते हैं। और इसके जो तरीके हैं कि हम किस तरीके से वर्षा के जल को, बारिश के जल को संरक्षित कर सकते हैं, तो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके, जैसे इसमें घरों की छतों पर गिरने वाले पानी को पाइप के जरिए नीचे बने स्टोरेज टैंक में इकट्ठा किया जाता है। तो एक ही अच्छा प्रोसेस है पानी के जल को एकत्रित करने का, जिससे हम पानी का बचाव कर सकें। और बारिश का पानी जो है वो काफ़ी चीज़ों में यूजफुल भी होता है। और भूजल पुनर्भरण करके, जैसे कि छत से आने वाले पानी को सीधे ज़मीन में बने सूखता गड्ढों या सूखे कुओं में भेजा जाता है, जिसमें घटता भूजल जो है वो सुधरता है, घटते हुए भूजल का जो स्तर है वो इसके पानी से, वर्षा के पानी से उसको सुधारा जा सकता है। खुले क्षेत्रों में या खेतों के ढलान पर छोटे बांध, जोहड़ या तालाब बनाकर बारिश के पानी को रोका जाता है, जो स्थानीय कृषि और पशुओं के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। जो हम छोटे लेवल की जो कृषि खेती जो होती है उसके लिए ये काम आता है पानी, और पशुओं के लिए, पशुओं के पीने के लिए भी बहुत ज़्यादा ये पानी उपयोगी होता है। और अगर हम इनके लाभ की बात करें कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो ये पानी की कमी को दूर करता है, भूमि कटाव को रोकता है और बिजली पानी के बिलों में भारी बचत करता है। राजस्थान जैसे जो शुष्क एरिया है, क्षेत्र है, उनमें पारंपरिक जल संरक्षण प्रणालियाँ जैसे टांके हैं, नाड़ियाँ हैं, सदियों से जल संकट का सबसे बेहतरीन समाधान रही है। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं हम ऐसे ड्राई एरिया में रहते हैं जहाँ पानी की शुरू से ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। अगर पहले के ज़माने की बात करें तो पहले के ज़माने के लोग तो पानी को बहुत ही उनका मूल्य समझते थे और उसको इकट्ठा करके रखते थे। इसीलिए जो हम देखते हैं कि जनरली जो पुराने घर होते हैं उनमें बड़े बड़े पानी के टंके बनाए जाते हैं जो कि सीमेंट के बने हुए होते हैं, और उसमें ही फिर पानी को स्टोर किया जाता है। जिससे कि अगर आपके घरों में

पानी काफ़ी दिन अगर नहीं भी आए तो उसको आप यूज़ में ले सकते हैं। तो पानी के महत्व को समझना बहुत ज़रूरी है, और हमें जो दैनिक चीज़ें हैं, हमारा जो जीवन रोज चलता है, उसमें भी पानी को बचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार घरेलू जो काम होते हैं, जो सखियां काम करती हैं, जैसे किचन का काम कर रही हैं या कपड़े धोने का काम कर रही हैं, तो अनावश्यक रूप से हम पानी की बहुत ज़्यादा वेस्टेज करते हैं। तो उसको किस तरीके से रोका जा सकता है, तो ये रोकना आपके हाथ में ही है। जैसे आप बर्तन धो रहे हैं, कई बहुत देर तक पानी का जो सिंक का नल है वो खुला रहता है और पानी यूँ ही वेस्ट होता रहता है। तो कोशिश करें कि बर्तन धोते समय पानी की वेस्टेज जो है वो थोड़ी सी कम हो। कपड़े धोते समय भी बहुत ज़्यादा पानी कई बार हम वेस्ट करते हैं, तो उसमें भी आप बचत कर सकते हैं। थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के, या फिर आप जो भी है कपड़े धो रहे हैं उसमें पानी की जो किल्लत को समझते हुए कि किस तरीके से पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, तो उसको हमें उसकी कमी को समझना चाहिए। और थोड़े से पानी में भी आप चीज़ें कर सकते हैं। और साफ़ सफाई है, जनरली साफ़ सफाई जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारा पानी हम यूं ही धोने में घर को वेस्ट कर देते हैं। तो घरों को रोज़ धोने की बजाय आप उसमें आप कम मात्रा में पानी लेके सिर्फ पोंछे से भी आप काम चला सकते हैं। तो ऐसे करके आप पानी की बचत छोटे स्तर पे अपने आप से ही शुरू कर सकते हैं। तो ये सोचना कि कोई और करेगा, कोई और नहीं तो कोई और करेगा, ये चीज़ें गलत होती हैं। वो चाहे कोई भी चीज़ों में हो, जब हम ये सोचते हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे कोई और कर लेगा, तो ये सोचना गलत होता है। स्टार्टिंग आपको खुद को करनी होती है, और इन चीज़ों में तो आप अपना सहयोग दे ही सकते हैं। कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है ये चीज़ें करना। तो सखियों, बातें आपसे फिर से यूँ ही जारी रहेंगी। चलिए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

सखियों, अगर हम बात करें अभी की गर्मी के मौसम की, तो गर्मियों ने अपने तेवर जो है बहुत ब्रॉड रूप से दिखाने शुरू कर दिए हैं, और ऐसे में खुद का बचाव सखियों बहुत ज़रूरी है। गर्मियों में अगर आप बाहर जा रहे हैं तो अपना खूब सारा ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना सखियों बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए जब भी आप गर्मी में बाहर जाएँ तो कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। जैसे तो अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो दिन में जो धूप जिस समय बहुत ही तेज़ होती है, ऐसे में बाहर जाने

से बचें, और अगर आपको फिर भी बाहर जाना होता है तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखें हमेशा अपने साथ में। जब भी बाहर जाएं तो पानी की बॉटल एक कैरी करें, और थोड़ी थोड़ी देर में आप पानी पीते रहें या कुछ लिक्विड लेते रहें, जिससे कि आपकी जो बॉडी है वो डिहाइड्रेट होने से बचेगी, क्योंकि पानी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और उसकी कमी से जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हमको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है, हेल्थ के इश्यूज़ आते हैं, वो डिहाइड्रेशन की वजह से आते हैं। तो ऐसी गर्मी में जब भी आप बाहर जाते हैं तो अपने साथ पानी रखना बहुत ज़रूरी है, और बाहर भी कोई जूस या फिर कुछ भी लिक्विड जो है आप वो लेते रहें, सीधे गर्मी के कॉन्टेक्ट में नहीं आए, उसके लिए कुछ छाता लेके जाएं या फिर अपने आप को अच्छे से कवर करके जाना बहुत ज़रूरी है। अपनी स्किन का ख्याल रखें, अपने बालों का ख्याल रखें, क्योंकि ऐसे में गर्मी से जो इतनी गर्मी से आपकी स्किन में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पिगमेंटेशन हो सकता है। तो सनस्क्रीन का भी यूज़ आप ज़रूर करें, और बाल भी ऐसे में बहुत ज़्यादा रूखे सूखे हो जाते हैं, पसीने की वजह से बाल झड़ने भी लगते हैं। तो बालों का भी विशेष ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सप्ताह में आप 3 बार अपने बालों को ज़रूर अच्छे किसी माइल्ड शैम्पू से वॉश करें। तो सखियों, बातें आपसे देर करनी थी, लेकिन घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कार्यक्रम समाप्ति की ओर। तो हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। अपनी रेडियो सखी सोनल को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग कम करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 वर्षों से सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के मंत्र का पालन कर रहा है, जिससे मंत्रालय द्वारा लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।
1: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, इस सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, इस सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। एक रिपोर्ट।
2: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने बताया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अधिसूचना कल जारी की जाएगी, जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी, मतदान 24 जुलाई को और मतगणना भी उस दिन होगी। पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सभी विभागों को वार्षिक उत्सव के लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
3: जगन्नाथ तकानेन।
4: दुनिया भर में मशहूर पुरी की रथ यात्रा जल्द ही होने वाली है। इसे देखते हुए उड़ीसा सरकार ने पुरी में इस भव्य उत्सव के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक प्रशासनिक इंतजाम किए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे विभागों के बीच बेहतरीन तालमेल और हर इंतजाम को बहुत सावधानी से लागू करके रथ यात्रा का बिना किसी गड़बड़ी सुरक्षित और घटना मुक्त बनाए। आज सुबह पुरी में रथ यात्रा समन्वय समिति की आखिरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मांझी ने इस सालाना रथ उत्सव को उड़ीसा के समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक स्थायी प्रतीक बताया, जो दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को

0: अधिक स्पेशल ट्रेन चलाएंगे और आने वाले समय में केरलम में ओणम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
1: महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सड़क रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF में स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुंबई बृहन नगर पालिका की महापौर ऋतु तावड़े ने बताया है कि मोबाइल मैसेज के माध्यम से सरकार समय समय पर अलर्ट जारी कर रही है।
2: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा का वेग जो है और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है। आधे आधे घंटे में हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन मुंबई करके लोगों के मैसेज में भेजने का काम कर रहे हैं। 1916 की नंबर जो है उसको कार्यान्वित किए।
1: उधर गुजरात में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा हुई है, जिससे सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण अधिकारियों ने 6 प्रमुख बांधों को हाई अलर्ट पर रखा है। बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मछुआरों को 9 जुलाई तक अरब सागर में न जाने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों में से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोग मारे गए और 46 घायल हुए हैं। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। पोडोल्स्की जिले में एक आवासीय भवन ढह गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई की अंतिम यात्रा राजधानी तेहरान में 2 दिवसीय सार्वजनिक अंतिम दर्शन के बाद शुरू हुई, जिसमें भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। खामनेई और युद्ध में मारे गए उनके परिवार के अन्य सदस्यों के ताबूतों को एक ट्रक में ले जाया जा रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफ्योलिन को हराकर पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ जोकोविच ने ऑल इंग्लैंड क्लब में अपना 106वां सिंगल्स खिताब जीता है। क्वार्टर फाइनल में जोकोविच का सामना फेलिक्स आगर एलियासिमी या एलेजांड्रो डेविडोविच कोकीना से होगा। महिला सिंगल्स में करीना मुखोवा ने अपने करियर में 3री बार विंबलडन क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। एक अन्य मुकाबले में नाओमी ओसाका ने आरेना सबालेंका को हराकर ऑल इंग्लैंड क्लब में अपने पहले क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम

0: से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप, इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर की 2:30 हुए हैं। अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।

किशोर कुमार की आवाज में फंटूश फिल्म का गीत आपने सुना, साहिल ध्यानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर सुन रहे हैं।

0: टैक्सी ड्राइवर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे तलत महमूद की आवाज में, साहिल ध्यानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का,
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें।
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नकमे।

गुलजार के बोल आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। बंदनी फिल्म के इस गीत में संगीत सचिन देव बर्मन का। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

पारस मणि फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, फारूक कैसर के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं हाफ टिकट फिल्म से ये गीत, किशोर कुमार की आवाज, शैलेंद्र के बोल, सलिल चौधरी का संगीत।

0: लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, ओए आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, ओए ओए वो तेरी तिरछी नजरिया
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया, ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया, ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।

0: छेड़ छेड़ जाते हो क्यों दिल के तार हो तैया बतैया बतैया पढ़ू तोरे पैया मेरी गली आते हो क्यों बार बार छेड़ छेड़ जाते हो क्यों दिल के तार
1: क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार सुन तुझे देखूं न आए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बड़के बुधन तीर भी टकर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार सुन तुझे देखूं न आए करार
0: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय हाय नटखट रंगीले आवरिया आके भी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया हाय हाय
1: ले गई मेरा दिल तेरी तिरछी नजरिया ओ गुजरिया।

0: होगी वो कौवी, पीछे पीछे आते हो क्या दिल के चोर, मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर।
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़। हो गोरी वो नटखट वो खटपट वो बनखट वो झटपट, पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़।
0: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय, मुझको बना दे बावरिया, आके सीधी लगी दिल में दोसे कतरिया। ओ सवरिया हाय हाय ओ तेरी तिरछी नजरिया,
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया। ओ गुजरिया होय होय ओ जाने सारी नगरिया,
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया। ओ सवरिया
1: ओ गुजरिया
0: ओ सवरिया
1: ओ गुजरिया
0: ओ सवरिया।
2: विविध भारती पर आ रही हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

दिल में आने लगे, ये तो कहो कौन हो तुम, कौन हो तुम। मीठी नजरों से बिजली गिराने लगे, मीठी नजरों से।

रंग बरसाए उमंग मतवाली, प्यार भरी आंखों ने जाल है बिछाए, कैसे कोई दिल की करेगा रखवाली, कैसे कोई दिल की करेगा रखवाली। ये तो कहो कौन हो तुम, कौन हो तुम, मीठी नजरों से बिजली गिराने लगे, मीठी नजरों से बिजली गिराने लगे। ये तो कहो।

मस्तियों के मेले ये खोई खोई रातें, आंख करे आंखों से रस भरी बातें, भोले भाले हैं।

0: आके छुप गए अपनी झलक दिखला के। तुम ही तो नहीं हो, मैं ढूंढा किया जिनको, फिर भी तुम ना आए, मैं थक गया बुला के। फिर भी तुम ना आए, मैं थक गया बुला के। ये तो कहो कौन हो तुम, कौन हो तुम,
1: मुझसे पूछे बिना दिल में आने लगे,
2: मुझसे पूछे बिना दिल में आने लगे।
1: ये तो कहो।

आशिक फिल्म से गीत आप सुन रहे थे, मुकेश और साथियों की आवाजें, चैलेंज के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नकमे में अब आपको अंतिम गीत सुनवाते हैं, शमशाद बेगम और उषा मंगेशकर की आवाजें। ब्लफ मास्टर फिल्म का ये गीत सुनिए, जिसे लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। और इस गीत के साथ निहि शर्मा को दीजिए इजाजत, विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सखी सहेली का। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: सखी सहेली सखी सहेली कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाली हमारी सभी सखियों सहेलियों श्रोता भाइयों को और मंजरी आपको भी दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: तो दीपा तुमको और हमारे सुनने वाले सभी सखियों और साथियों को भीगा भीगा सा नमस्कार। जहां पर गर्मी पड़ रही है वहां पर हम कहेंगे कि मेरी आवाज से दीपा की आवाज से और हमारे जो सखी सहेली में गाने बजेंगे उसको मिला करके एक भीना भीना सा प्यारा प्यारा सा नमस्कार।
0: बिल्कुल, और यहाँ तो इतनी ज्यादा बारिश हो रही है साथियों कि ऐसा लग रहा है कुछ हिस्सा इस बरसात का वहां चला जाए जहाँ अब तक बरखा रानी बरसी नहीं।
1: बिल्कुल है ना, जरूरी है सब जगह बैलेंस होता रहे, बरसात तो ज्यादा ठीक है
0: जी
1: यहाँ। और लग रहा है बस अब रुक जाओ थोड़ी दिन, सांस ले लें दो हमको, थोड़ा धूप हमें दे दो,
0: ऐसी कुछ ऐसा ही हाल है। और इस बदलते मौसम में हम आशा करते हैं आप सब अपना बहुत अच्छा ध्यान रख रहे होंगे, तो आप अपने परिवार का और अपना सभी का स्वास्थ्य का खूब अच्छा ध्यान रखिए।
1: बिल्कुल, और चलो दीपा हम बता देते हैं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रादेशिक व्यंजन। सबसे पहले तो खान पान की बात, क्योंकि दीपा आ गई मंजरी आ गई
0: तो कुछ ना कुछ तो नहीं हो कि बातें भोजन पान की होगी।
1: बिल्कुल, क्योंकि पंजाबी छोले आजकल हम लोग बताने वाले हैं और भटूरे साथ में, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है इसका। तो मेरे ख्याल से सबके लग रहा है सबको स्वाद आ रहा होगा छोले भटूरों का, है ना,
0: शायद आ रहा होगा। और ये देखिए ना, इस मौसम में ऐसी कुछ चीजें चटपटी और कुछ तली भुनी चीजों का को हम उसका आनंद ले सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो बिल्कुल लेना भी चाहिए।
1: और अब हम बात उसके लिए बात करेंगे, अगला विषय मेरा है वन महोत्सव, तो जो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक चल रहा है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और आज है कथा सुधा
0: जी,
1: एक कहानी का दिन है, तो आज दीपा कौन सी कहानी हम लेकर आए हैं?
0: आज हम मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी दो बहनें, इस कहानी का हम सुनेंगे भाग एक
1: जी।
0: और फिर देखो महीने की शुरुआत है, शुरुआत के महीने में तो ऐसा होता है ना, जब सैलरी आती है या व्यापार में अगर आप हैं तो जो भी एक नियत आप पैसे जो घर पे लेके आते हैं, तो शुरुआत में तो जिसको सैलरी आपको देनी है दे देते हैं, घर में जो आपके काम करते हैं जो मदद करते हैं उनको दे देते हैं, स्कूल की फीस वगैरह चली जाती है। उसके बाद 15 तारीख से ही फिर ऐसा लगता है खिंचातानी से कुछ शुरू
1: बढ़ जाती है कि भैया बजट बनाए,
0: खर्चा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
1: अब कोई कुछ कहता है तो नहीं भैया अभी रुक जाओ, अभी नहीं,
0: सही बात।
1: बचत करने के बारे में हम सभी सोचते हैं और महिलाएं खासकर सोचती है, हालांकि थोड़ा वो खर्चा भी थोड़ा करती है मनमर्जी की, लेकिन बचत के प्रति वो जागरूक भी रहती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन देखो मौसम को हम लोग थोड़ा सब जगह भेज देते हैं के द्वारा, तो सभी सखियों और सखाओं को सुनाते हैं ये गीत।

धरती गगन के मिलन की आरती हमने उतारी। अब मैं न मानूंगा इस दिल के दर्पण में तुमको सजा दूंगा।

गोरी सी मत नहीं डर से, अपना बना लूंगा दिल में बसा लूंगा सीने से लगा लूंगा।

0: साथियों, अभी तो सावन आया नहीं है, लेकिन हम उसे पुकार रहे हैं कि आए। लेकिन फिलहाल आषाढ़ के महीने में ये जो बरसात है हर जगह पहुंचे, हमारी तो यही शुभकामना है।
1: क्योंकि हरियाली छा जाती है, तो हरियाली छाते बस सावन याद आने लग जाता है। सावन का मतलब होता है कि बस अब हाथों में मेहंदी लगाएंगे, श्रृंगार करेंगे, हरी हरी चूड़ियां पहनेंगे,
0: सब होगा, सब होगा मंजरी। लेकिन पहले चलो सुन लेते हैं कहानी
1: कथा सुधा।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। हिंदी कथा साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की कहानी है दो बहनें। शीर्षक के अनुरूप कहानी दो बहनों के पारस्परिक संबंधों पर केंद्रित है। प्रेमचंद ने कहानी के मुख्य पात्र, दोनों बहनों के बाह्य आकार और रूप रंग का वर्णन करने के साथ ही उनके मन का भी सूक्ष्म विवेचन और विश्लेषण किया है। कहानी में प्रवाह है, धन की संपन्नता और विपन्नता के अनुरूप पात्रों का चरित्र चित्रण और पात्रों के चरित्र का विकास बहुत स्वाभाविक रूप में किया गया है। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में आदर्श और यथार्थ का अद्भुत समन्वय है। दोनों बहनें और उनके पति जिस मानसिक अवस्था और शैक्षिक स्तर के हैं, उसी के अनुसार शब्दों के प्रयोग, नाटकीयता के गुण और संवाद योजना के कारण कहानी जीवंत होती है। वे यथार्थ का चित्रण करते हुए सदा आदर्श पर दृष्टि रखते हैं, यही इस कहानी में भी परिलक्षित होता है। मुंशी प्रेमचंद की स्पष्ट धारणा है कि साहित्यकार को मानवीय स्वभाव की उज्ज्वलताओं को दिखाने वाला होना चाहिए, यही इस कहानी का मर्म भी है। भाव और पात्र के अनुकूल भाषा का सफल प्रयोग इस कहानी की विशेषता है। अत्यंत मार्मिक और हृदय को छू लेने वाली कहानी है दो बहनें। इसमें प्रेरणा देने की शक्ति के साथ साथ पाठक को चिंतन में लीन करने की भी अद्भुत क्षमता है। तो आइए सुनते हैं कथा सुधा में मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहनें। आज इस कहानी की पहली कड़ी।
3: दो बहनें दो साल बाद एक तीसरे अजीज के घर मिली और खूब रो धोकर खामोश हुई तो बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सर से पांव तक गहनों से लदी हुई है। कुछ उसका रंग खिल गया, मिजाज में कुछ तमकनत आ गई और बातचीत करने में कुछ ज्यादा मुश्ताक हो गई है। बेशकीमत साड़ी और बेलदार उन्नाबी मखमल के जम्पर ने उसके हुस्न को और भी चमका दिया है। वही राम दुलारी जो लड़कपन में सर के बाल खोले फूहड़ सी इधर उधर खेला करती थी, आखिरी बार रूप कुमारी ने उसे उसकी शादी में देखा था। दो साल कबल तक भी उसकी शक्ल और सूरत में कुछ ज्यादा तगय्युर ना हुआ था। लंबी तो हो गई थी मगर उतनी ही दुबली, उतनी ही जर्दरू और उतनी ही बदतमीज, जरा जरा सी बात पर रूठने वाली। मगर आज तो कुछ हालत ही और थी, जैसे कली खिल गई हो और हुस्न उसने कहां छुपा रखा था।
4: नहीं नहीं, नजरों को धोखा हो रहा है, ये हुस्न नहीं, महज दीदा जेबी है। रेशम मखमल और सोने की बदौलत नक्शा थोड़े ही बदल जाएगा, फिर भी वो आंखों में समाई जाती है। 50 औरतें जमा हैं, मगर ये कशिश और किसी में नहीं।
3: कहीं आईना मिलता तो वो जरा अपनी सूरत भी देखती। घर से चलते वक्त उसने अपनी सूरत देखी थी, उसे चमकाने के लिए जितना साइकिल कर सकती थी वो किया था, लेकिन अब वो सूरत जैसे याददाश्त से मिट गई है। उसकी महज एक धुंधली सी परछाई जहन में है। उसे फिर से देखने के लिए वो बेकरार हो रही है। यूं तो उसके साथ मेकअप के लवाजमात के साथ आईना भी है, लेकिन उस मजमे में वो आईना देखने या बनाव सिंगार करने की आदिल नहीं है। ये औरतें दिल में खुदा जाने क्या समझे, यहां कोई आईना तो होगा ही, ड्राइंग रूम में तो जरूर होगा। वो उठकर ड्राइंग रूम में गई और कदे आदम शीशा में अपनी सूरत देखी। उसके खद व खाल बेऐब हैं, मगर वो ताजगी में, वो शगुफ्तगी, वो नजर फरेबी नहीं है। रामदुलारी आज खुली है और उससे खुले जमाना हो गया, लेकिन इस ख्याल से उसे तस्कीन नहीं हुई। वो रामदुलारी से हेटी बनकर नहीं रह सकती।
4: ये मर्द भी कितने अहमक होते हैं, किसी में असली हुस्न की परख नहीं। उन्हें तो जवानी, शोखी और नफासत चाहिए बस। आंखें रख कर भी अंधे बनते हैं। मेरे कपड़ों में राम दुलारी को खड़ा कर दो, फिर देखो ये सारा जादू कहां उड़ गया है। चुड़ैल सी नजर आए, अब इन अहमकों को कौन समझाए। राम दुलारी के घर वाले तो इतने खुशहाल न थे। वो शादी में जो जोड़े और जेवर आए थे वो भी बहुत दिल शिकन थे। उसके ससुर एक रियासत के मुख्तार आम थे और शौहर कॉलेज में पढ़ता था। इस 2 साल में कैसे हुन बरस गया, कौन जाने। जेवर किसी से मांग कर लाई हो, कपड़े भी 2-4 दिन के लिए मांग लिए हो। उसे ये स्वांग मुबारक रहे, मैं जैसी हूं वैसी ही अच्छी हूं। अब अपनी हैसियत को बढ़ाकर दिखाने का मर्ज कितना बढ़ता जाता है। घर में रोटियों का ठिकाना नहीं है, लेकिन इस तरह बन ठन कर निकलेंगी गोया कहीं की राजकुमारी है। बिसातियों के, दर्जियों के और बजाज के तकाजे सहेंगे, शहर की घुड़कियां खाएंगे, रोएंगे, रूठेंगे, मगर माइश के जुनून को नहीं रोक सके। घर वाले भी सोचते होंगे कितनी छिछोरी तबीयत है इसकी, मगर यहां तो बेहयाई पर कमर बांध ली है। कोई कितना ही हंसे, बेहया की बला दूर। इसको तो बस यही धुन सवार है कि जिधर से निकल जाए उधर उसकी खूब तारीफें की जाए। राम दुलारी ने जरूर जरूर किसी से जेवर और कपड़े मांग लिए हैं। मैं जानती हूं ये बेशर्म जो है।
3: उसके चेहरे पर गुरूर की सुर्खी झलक पड़ी। ना सही उसके पास जेवर और कपड़े, किसी के सामने शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ता। 1-1 लाख के तो उसके 2 लड़के हैं, भगवान उन्हें जिंदा सलामत रखे। वो इसी में खुश है, खुद अच्छा पहन लेने और अच्छा खा लेने से ही तो जिंदगी का मकसद पूरा नहीं हो जाता। उसके घर वाले गरीब हैं पर इज्जत तो है, किसी का गला तो नहीं दबाते, किसी की बद्दुआ तो नहीं लेते। इस तरह अपना दिल मजबूत करके वो फिर बरामदे में आई तो रामदुलारी ने जैसे रहम की आंखों से देख कर कहा,
2: जीजा जी की कुछ तरक्की बरक्की हुई कि नहीं बहन, या अभी तक वही 75 पर कलम घिस रहे हैं।
3: रूप कुमारी के बदन में आग सी लग गई। उफ़ोरे दिमाग, गोया उसका शौहर लाठ ही तो है। अकड़ कर बोली,
4: हाँ तरक्की क्यों नहीं हुई, अब 100 के ग्रेड में है। आजकल ये भी गनीमत है, मैं तो अच्छे अच्छे MA पासों को देखती हूँ कि कोई टके को नहीं पूछता। और तेरा शौहर अब BA में होगा?
2: नहीं, उन्होंने तो पढ़ना छोड़ दिया है बहन, पढ़कर औकात खराब करना था और क्या। एक कंपनी के एजेंट हो गए हैं, अब 250 रुपया माहवार कमाते हैं, कमीशन ऊपर से। ₹500 रोज सफर खर्च के भी मिलते हैं। अब ये समझ लो 500 का औसत पड़ जाता है। 150 रुपया माहवार तो उनका जाती खर्च है। बहन ऊंचे होते पर है तो अच्छी हैसियत भी बनाए रखनी लाजिमी है ना।
4: वो तो है भाई।
2: 350 रुपया बेदाग घर दे देते हैं और उसमें 100 रुपए मुझे मिल जाते हैं। 250 में घर का खर्च खुशफेरी से चल जाता है। अब एमए पास करके भला क्या करते।
3: रूप कुमारी उसे शेख चिल्ली की दास्तान से ज्यादा वक्त नहीं देना चाहती थी, मगर राम दुलारी के लहजे में इतनी सदाकत है कि चेहरे पर शिकस्त की बदमजगी साफ झलक रही है। मगर उसे अपने होशो हवास को कायम रखना है तो इस असर को दिल से मिटा देना पड़ेगा। उसे जिरहों से अपने दिल को यकीन करा देना पड़ेगा कि इसमें एक चौथाई से ज्यादा हकीकत नहीं है। वहां तक तो वो बर्दाश्त करेगी, इससे ज्यादा कैसे बर्दाश्त कर सकती है। इसके साथ ही उसके दिल में धड़कन भी है। अगर ये रुदात सच निकली तो वो कैसे राम दुलारी को मुंह दिखा सकेगी। उसे अंदेशा है कि कहीं उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने तमस्खुर के अंदाज से पूछा,
4: जब एजेंटी में इतनी तनख्वाह और भत्ते मिलते हैं तो ये तमाम कॉलेज बंद क्यों नहीं हो जाते। भला बताओ जरा, हजारों लड़के क्यों अपनी जिंदगी खराब करते हैं।
3: राम दुलारी बहन की खिफत का मजा उठाते हुए बोली,
2: बहन तुम यहाँ गलती कर रही हो। एमए तो सभी पास हो सकते हैं।
4: अच्छा,
2: मगर एजेंटी करना किसको आता है भला। ये तो बहुत हुनर का काम है। कोई जिंदगी भर पढ़ता रहे मगर जरूरी नहीं कि वो अच्छा एजेंट हो जाए। रुपया पैदा करना दूसरी चीज है, इल्मी फजीलत हासिल करना दूसरी चीज है, अपने माल की खूबी का यकीन पैदा कर देना या जहन नशीन करा देना कि इससे तो बेहतर और देरपा चीज बाजार में मिल ही नहीं सकती, आसान काम नहीं है।
4: वो तो है भाई।
2: एक से एक ग्राहकों से उनका साबिका पड़ता है। बड़े बड़े राजाओं और रईसों की ताली कल्ब भी करनी पड़ती है। औरों की तो उन राजाओं और नवाबों के सामने जाने की हिम्मत भी न पड़े, और किसी तरह पहुंच जाए तो सवाल न निकले। शुरू शुरू में उन्हें भी झिझक हुई थी बहन, मगर अब तो इस दरिया के मगर है मगर। अगले साल तरक्की भी होने वाली है।
4: सही कहती हूँ।
3: रूप कुमारी की रगों में जैसे खून की हरकत बंद हुई जा रही है।
4: जालिम आसमान क्यों नहीं गिर पड़ता, बेरहम जमीन क्यों नहीं फट जाती। ये कहाँ का इंसाफ है कि मैं जो हसीन हूँ, तमीजदार हूँ, किफायत शियार हूँ, अपने शौहर पर जान देती हूँ, बच्चों को जान से अजीज समझती हूँ, इस खस्ता हाली में बसर हो रही है मेरे, और ये बदतमीज तन परवर चंचल छोकरी रानी बन गई है। लेकिन कुछ तो उम्मीद है बाकी, शायद मेरी तस्कीन कल्ब का कोई तो रास्ता निकल आए।
3: उसी तमस्खुर के अंदाज से बोली,
4: तब तो शायद 1000 मिलने लगे होंगे।
2: 1000 तो नहीं मगर 600 में शुभा नहीं।
4: हाँ, ऐसे ही कोई आंख का अंधा मालिक बन गया होगा।
2: बहन व्यापारी आंख के अंधे नहीं होते। हाँ, जब तुम उन्हें 6000 कमा कर दो ना, तब कहीं 600 मिले। जो सारी दुनिया को चराए उसे कोई क्या बेवकूफ बनाएगा भला।
3: तमस्खुर से काम न चलते देख रूप कुमारी ने तहकीर शुरू की।
4: हाँ, वैसे मैं उसको बहुत मुअज्जज पेशा नहीं समझती। सारे दिन झूठ के तोमार बांधो, क्या ये ठीक विद्या है।
2: अरे इस तरह तो जितने वकील बैरिस्टर हैं सभी गलत करते हैं। अपने मुवक्किल के फायदे के लिए उन्हें झूठी शहादतें तक बनानी पड़ती हैं। मगर उन्हीं वकीलों को हम अपना लीडर कहते हैं, उन्हें अपने कौमी सभाओं का सदर बनाते हैं, उनकी गाड़ियां खींचते हैं, उन पर फूल बरसाते हैं। आजकल दुनिया पैसा देखती है, पैसा। पैसे कैसे आए ये कोई नहीं देखता। जिसके पास पैसा हो उसकी पूजा होती है। जो बदनसीब हैं, नाकाबिल हैं, पस्त हिम्मत हैं, वो जमीर और अखलाक की दुहाई देकर अपने आंसू पोंछ लेते हैं। वरना जमीर और अखलाक को भला कौन पूछता है।
3: रूप कुमारी खामोश हो गई। अब यह हकीकत उसकी सारी तलखियों के साथ तस्लीम करनी पड़ेगी कि राम दुलारी उससे ज्यादा खुशनसीब है, इससे मुजीर नहीं। तमस्खुर या तहकीर से वो अपनी तंगदिली के इजहार के सिवा किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती। उसे बहाने से राम दुलारी के घर जाकर असलियत की छानबीन करनी पड़ेगी। अगर राम दुलारी वाकई लक्ष्मी का वरदान पा गई है तो वो अपनी किस्मत को ठोक कर बैठ रहेगी। समझ ले कि दुनिया में कहीं इंसाफ नहीं है, कहीं ईमानदारी की कदर नहीं है।

0: भागती दौड़ती जिंदगी में अपनी सेहत से हर कोई जूझ रहा है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या के बारे में लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीओडी, जानिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर से।
1: जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लेप्रोस्कोपी आईवीएफ या आईयूआई एडवाइज हम लोग नहीं कर सकते, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है जिसे पुराने जमाने में हम क्रोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोज देते हैं, लेट्रोजॉल और मल्टीविटामिन, विटामिन डी थ्री, ओमेगा थ्री, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस डिफिशिएंसी है, बी12 हो, ये सब देकर।
0: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और अब ले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: तो दीपा, अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं और बात करते हैं बचत के ऊपर।
1: बहुत
0: तो
1: जरूरी है
0: दीपा, बचत करने से पहले हम एक उसी का ही कमेंट है वो उठा लेते हैं। हम साथ ही लिखते हैं कि बचत हम दोनों ने अपनी बेटियों और बेटों को अजमेर शहर के बहुत अच्छे से स्कूल में पढ़ाया, बहुत ही महंगी शिक्षा थी, तो हमें और बच्चों को भी शुरुआत से ही हाथ टाइट करके बचत करना अनिवार्य हो गया था। कभी बेटों को जब मैं स्वयं ही स्कूल की छुट्टी के बाद लाता और ये कहता कि कचौड़ी खा लो, तो बेटे कहते पापा जी खर्चा नहीं करना है, वैसे ही घर पहुंचकर भोजन करेंगे। ये सुनकर खुशी के मतलब उनकी आंखें जो है वो नम हो जाया करती थी और कहते मेरा मन सोचता था कि मेरी मेहनत सफल हुई। अगर बच्चे समझने लग जाएं कि हमें कहाँ पे खर्चा करना है कहाँ पर नहीं करना है, तो समझ लो कि माता पिता की आधी समस्या तो वैसे ही हल हो जाती है।
1: बिल्कुल सही कहा। देखो ना, कई बार ऐसा होता है कि बिना सोचे समझे हम जब खर्च करते चले जाते हैं तो फाइनेंशियल यानी कि जो वित्तीय अनुशासन है वो अगर हम नहीं रख पाते हैं तो हमें कभी ना कभी एक आर्थिक तनाव वो आ जाता है, थोड़ा सा एंजाइटी टेंशन ये सब चीजें आई जाती है। और फिर सहेलियों के मन में ये सवाल आता ही है कि आखिर पैसे इतनी जल्दी खत्म हो क्यों जाते हैं, होता है ना ऐसा?
0: बिल्कुल ऐसा होता है। और यही होता ना कि अक्सर हम जो है बिना योजनाएं बनाए खर्च करते रहते हैं और छोटे छोटे जो खर्च होते हैं वो सुविधाओं के नाम पर होने वाला व्यय, अचानक की गई खरीदारी होती है और बचत को टालने की आदत यानी धीरे धीरे पूरे बजट को जो है वो बिगाड़ ही देती है।
1: अरे अरे मंजरी, इतना परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। और देखिए हम आपसे भी कहते हैं इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम अगर थोड़ा सा आपस में अभी जो विचार विमर्श कर रहे हैं और जो बहुत सारे संदेश आए हैं तो हम कुछ जानेंगे आसान बदलाव के बारे में कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं, आपको क्या सही लगता है क्या गलत वो जरूर बताते चलिएगा।
0: बिल्कुल। और अक्सर लोग ये तय नहीं कर पाते हैं दीपा कि उनकी आय का कितना हिस्सा कहाँ खर्च होना चाहिए। और अब देखिए ना, कुछ खर्चे तो बिल्कुल निश्चित होते हैं कि जैसे मकान का किराया, राशन की खरीदारी करनी है, पेट्रोल भराना है, बिजली पानी वगैरह वगैरह, जैसे कि बहुत सारे खर्चे होते हैं, घर में दूध का बिल लेना है तो बच्चों की फीस जमा करनी है, इन सब खर्चों के लिए पहले से ही राशि तय कर लेने से क्या होता है कि फिजूल खर्च

0: से हम बच सकते हैं, यानी कि जब आप सैलरी लेकर आए तो एक एक छोटे छोटे बॉक्स बना लें, उसमें सबके हिस्से के पैसे डाल दें,
1: इस तरह से भी कर सकते हैं। बिल्कुल, और कई बार ये भी देखने में आता है मंजरी कि बहुत सारे लोग महीने की शुरुआत में खुलकर खर्च कर देते हैं, फिर जनाब नतीजा तो तय ही होता है ना कि आखिरी दिनों में आर्थिक जो एक टेंशन सी आ जाती है वो बढ़ने लग जाती है। इसलिए जरूरी खर्चों के बाद बची रकम को पूरे महीने के हिसाब से अलग अलग हिस्से में बांटकर देखना चाहिए, जैसे अभी आप बता रही थी, तो वैसे भी कर सकते हैं। और ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 से 10 तारीख का खर्च अलग रख दो, 11 से 20 का अलग रख दीजिए, और फिर 21 से 30 का खर्च आप अलग अलग एक सेगमेंट बनाकर के अलग अलग रख
0: भी सकते,
1: ये भी करके हम देख सकते हैं।
0: बिल्कुल, और अक्सर दीपा हम लोग यही सोचते हैं कि महीने के अंत में जो बचेगा उसे बचत में डाल देंगे, लेकिन क्या होता है ऐसा होता नहीं है, और पता ही नहीं चलता है कि मतलब सैलरी मिलते ही 20-30% राशि बचत के लिए जो हमने रखी है या नहीं रख पाए हैं वो कहाँ चली गई, खर्च होते ही चले जा रहे हैं। तो हमें बचत के लिए भी सोचना पड़ता है, और सच में यही बचत आने वाले दिनों में आर्थिक सुरक्षा का आधार बनाती, जो हम कटौती करते हैं। और दीपा एक और रास्ता है कि आप एक कॉपी में लिखना शुरू कर दीजिए खर्चे को।
1: बिल्कुल,
0: तो आप अगले महीने उसको सोचिए कि हमने कहाँ पे खर्चा ज्यादा किया है, उस चीज को फिर अगले महीने आप बजट से हटा सकते
1: हैं,
0: ये हमारे लिए आवश्यक नहीं है।
1: बिल्कुल, और इसी तरह से एक इमरजेंसी फंड भी हम जरूर रखना चाहिए हमें, जैसे बीमारी हो गई या नौकरी में बदलाव हो गया, इस तरह की कोई परिस्थिति अगर बन जाती है तो बिना तैयारी के जो ये आर्थिक दबाव आता है, ऐसे में 3 से 6 महीने का खर्च के बराबर का एक इमरजेंसी फंड अगर हम रखें ना अलग से, बहुत मुश्किल है। देखिए, बोलना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा बचा करके हम कुछ ऐसा करने की 3-1 महीने की सैलरी जितना पैसा अगर हमारा अलग से रखा हुआ है, तो कभी भी अचानक कुछ अगर इमरजेंसी आ गई है तो हमारे पास ऐसा नहीं होगा कि अरे क्या करें क्या नहीं करें, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किससे मदद मांगे, किसको बोले कि हमें थोड़ा सा पैसे की जरूरत है, तो आप प्लीज हमें कुछ हेल्प करेंगे क्या। तो इस तरह की स्थिति हमारे सामने आने से हम बच जाएंगे।
0: और दीपा देखो, पहले के समय में ऐसा होता था, महिलाएं जो है दादी नानी का के लोग, इनको देखो तुम अलमारी के पेपर के नीचे पैसे रख देती थी, अपनी साड़ी के फलाने साड़ी के पल्लू में बांध के रख दिए, या अलमारी के अंदर उन्होंने एक छोटी सी डिब्बा रख दी, तो वो हर जगह थोड़े थोड़े पैसे रखती थी, और मुसीबत के समय वही पैसे उनके काम आते थे। तो सिर्फ बचत करने से काम नहीं चलता है दोस्तों, थोड़ा सा निवेश भी होता रहना चाहिए, इसलिए धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा निवेश करने की आदत जरूर बनाएं, फिर वो चाहे महीने के 1000 या 2000 रुपए की शुरुआत क्यों ना हो, शुरू किया जाए। और आप गुल्लक भी बना सकते हैं, अपनी गुल्लक भी बनाइए, बच्चों की भी, हस्बैंड की भी, और सबसे बोलिए इसमें सब लोग पैसे बचाइए, तो आप इस तरह से भी पैसे बचा सकते हैं।
1: बिल्कुल, और हम अपने लिए कुछ ऐसे दिन भी चुन सकते हैं जहां हम सिर्फ जरूरी चीजों की खरीदारी करेंगे और फिजूल खर्च बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर ऐसा करेंगे, महीने के 3-4 दिन भी अगर ऐसे आ गए, तो आप देखिएगा थोड़ा सा पैसा तो हमारे पास बच जाएगा। एक और तरीका भी हो सकता है कि 24 घंटे का नियम बना लें, यानी कि कभी भी ऑनलाइन कोई लग्जरी आइटम या ऐसी कोई चीज जो कि आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं हमें लेना है, वो ऑनलाइन पे दिख गई, अब हमें लगता है खर्चना तो है या हमें ये खरीदना तो है, तो आप 24 घंटे का इंतजार करिए, उसके बाद ही उसे खरीदने की सोचें। देखिए, आवेग में आकर के बहुत चीज हम ऐसे खरीद लेते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा रुक जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है नहीं ये फिजूल लग रहा है, अगले महीने ले लेंगे।
0: आदत होती दीपा खर्चा करने की, हाथ में खुजली होती तो नहीं लगता है, मतलब पैसे वाली की अब कुछ तो कर ले, तो उन्हें ऑनलाइन सबसे अच्छा माध्यम लगता है।
1: तो उन्हीं लोगों के लिए है कि आप रुकिएगा, बिल्कुल तुरंत ही वो चीज जो है ऑनलाइन शॉपिंग ना करिएगा,
0: बिल्कुल
1: थोड़ा सा रुक जाइए। हम कह रहे हैं 24 घंटा, आप 24 घंटा भी नहीं, आप 12 घंटे रुकिएगा, 12 घंटे के बाद आपके मन में वो जो उतावलापन है ना, वो हम बिल्कुल
0: शांत हो जाएगा। और जब खरीदने का मन नहीं करे, तो आप अपने आप से ये कहिए कि ये मैं खरीदूं या नहीं खरीदूं, इसकी कितनी जरूरत है या नहीं जरूरत है।
1: बिल्कुल,
0: तो इस तरह की जब बातों पर विचार करेंगे तो भी आप अपने को रोक सकते हैं। और दीपक, हम खुद को एक वित्तीय चुनौती देकर भी देख सकते हैं, जैसे कि 15 दिन से हम कोई एक तय हुई राशि में ही काम चलाएंगे, उसे चलाएंगे, ऐसा करके देख सकते हैं कि सोची हुई राशि से हम अपने 15 दिन निकाल सकते हैं या नहीं। अक्सर लोग केवल किराया, राशन, बिल जैसे तय खर्चों को ही बजट में शामिल करते हैं, लेकिन रोजमर्रा के कई छोटे छोटे अनियोजित व्यय धीरे धीरे पूरे वित्तीय संतुलन को बिगाड़ देते हैं।
1: ये बात तो बिल्कुल सही कही। और अब देखिए, कुछ ऐसे भी खर्च होते हैं जो अचानक से आ सकते हैं, जैसे उपहार खरीदना है, या कभी कभी ऐसा होता है ना, फल सब्जियों की अचानक कीमतें बढ़ जाती हैं, या बाहर कभी खाना खाने जाना पड़ सकता है, कोई या अचानक से कोई ट्रैवल यानी यात्रा पे निकलना पड़ सकता है, कोई मेडिकल खर्च भी आ सकता है, या दफ्तर में कोई छोटे छोटे योगदान होते हैं ना, हमें कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, इस तरह के भी खर्च आ जाते हैं, तो इस ये सब भी आपका, इन सब का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बजट में शामिल करके रखना जरूरी है।
0: बिल्कुल। और देखो मैंने साथी भी लिखते हैं कि महीने की शुरुआत और बचत का सीधा संबंध है, शुरुआत अच्छी तो महीना अच्छा, सैलरी मिलते ही शुरुआती दिन में सबसे जरूरी वही खर्च करें जिनकी तारीखें फिक्स होती हैं, मसलन घर का किराया, बिजली का बिल, गैस पेमेंट, ईएमआई, बच्चों की फीस वगैरह, फिर आता है राशन, और घर में कोई पेशेंट है तो दवाइयां, इसके बाद कुछ पैसा घर में इस तरह से रख लो कि लगभग ऐसा लगे कि जैसे है ही नहीं, जो आड़े वक्त काम आ सके, किसी से मांगना ना पड़े। फिर इसके बाद आते हैं शौक वाले खर्च, जो तो वो अपनी आय और बचत के अनुसार करना चाहिए, ना कि किसी दूसरे को देख कर। अगर आय के अनुसार बजट बनाकर खर्च किया जाए तो महीना बहुत आराम से निकल जाता है।
1: और एक संदेश ये भी आ रहा है कि एक गीत सुना दीजिए।

कर बैठा प्यार अजब मुश्किल है, दिल कर बैठा प्यार अजब मुश्किल है, हर दर्द मोहब्बत का बड़ा काबिल है, मजबूर

0: बताइए आपके दिल में क्या है?
1: मेरे दिल में तो बहुत सारे कमेंट्स हैं, हम तो संदेश ही बढ़ेंगे फिलहाल तो अपने विषय पर। हाँ। तो हमारे साथी लिखती है कि आजकल बचत के बहुत सारे तरीके आ गए हैं, पर अपनी माँ के जमाने में हम देखते थे कि माँ एक अलग से अपना गुल्लक टिन या पाउडर वाले डिब्बे या किसी तरह के डिब्बे रखती थी। वे ज्यादातर रसोई घर में छुपा के रखा जाता था और कुछ महीने के अंत में कभी जरूरत पड़ा तो

0: उसमें उसे निकाला जाता था, उसमें से निकाला जाता था पैसा। हम बच्चों को डरवाया जाता था, उस डब्बे में कोई नहीं छूगा, उसमें भगवान का पैसा रहता है, पाप लगेगा। अब कभी माँ निकाल कर कुछ खर्च करके बाजार से मंगवाती थी तो हम कहते थे कि ये तो भगवान का पैसा। माँ बोलती थी कि अन्नपूर्णा भी देवी माँ ही है, उन्हीं के नाम पर आ रहा है। क्या बात है,
1: क्या बात
0: माँ तो
1: है।
0: माँ ही होती है आखिर, है ना।
1: सही कहा। और एक संदेश में हमारे श्रोता भाई ने लिख भेजा है कि मेरे बड़े भैया अक्सर कहा करते थे कि जीवन में तीन मित्र जरूरी हैं, इससे बचत के स्रोत कहिए या मित्र। वो ऐसे मित्र हैं जो विपरीत परिस्थितियों में हमारे संकट मोचक साबित हो सकते हैं। पहला आपकी बचत, दूसरा है सोना या गहने का, और तीसरा है आप खुद का, आपके खुद का मकान। मैंने उनकी बातों का अनुसरण करते हुए छोटी छोटी बचत के द्वारा शुरुआत की, जैसे पोस्ट या बैंक में 5 साल की अवधि के लिए रिकरिंग अकाउंट खुलवा लिए। इन अकाउंट की अवधि पूरी होने पर उसी रकम को फिक्स डिपॉजिट में तब्दील करता गया। 15 साल के बाद खुद का मकान बनाने में मुझे बड़े भाई जैसा साथ मिला हो ऐसा महसूस हुआ, वो भी बगैर लोन लिए। उसके बाद बेटे बेटी की शादी के लिए अग्रिम तैयारी स्वरूप समय समय पर गहने बनवाता गया। क्या बात है। और आज सेवानिवृत्त होने के बाद भी ये सब कुछ बातें ठीक ठाक चल रही हैं। तो भाई इस तरह के अगर परिवार का साथ हो तो फिर तो देखिए बचत में और आपको दुगनी सहायता ही मिलेगी।
0: बिल्कुल। और एक माई साथी लिखती कि जब पहली तारीख को तनख्वाह आती तो इतना सारा पैसा एक साथ देकर मन ही मन बहुत से प्लान शुरू हो जाते थे, उस समय हाथ रुक भी नहीं पाता था। पर जब एक एक करके पैसे देने यानी फीस, राशन पानी, दवा, डॉक्टर आदि में निपटाने लगते थे तो कैसे फुर से उड़ जाता था, पैसा पता ही नहीं चलता था। और महीने के शुरू से ही कुछ एक चौथाई पैसा अलग दबा कर रख देते और भूल जाए, और फिर पूरे महीने का राशन, दवा और डॉक्टर के पैसे, बच्चों की फीस, घर में काम करने वाली महिलाएं आदि को दे दे, बीच बीच में 50-100 रुपए एक अलग गुल्लक में डाल दे। अगर हाथ में पूरा पैसा होगा तो अधिक तेजी से खर्च होता है, दबाए हुए पैसे आड़े वक्त में काम आते हैं। बहुत अच्छी से सबने बात लिख के
1: जी बिल्कुल
0: रखी है।
1: और हमारे सभी साथी बचत के मामले में इतने सतर्क हैं और हमेशा करते हैं और अलग अलग सुझाव दे रहे हैं, उसके लिए हम आप सभी का धन्यवाद देते हैं। मंजरी हमसे एक सवाल पूछ रही थी, क्या सवाल था मंजरी?
0: ये सवाल हम ये पूछ रहे थे कि ये बताओ कि वन तुमने देखा है, है ना, हरियाली वहां की बहुत मन को मोहती है, तो क्या कभी तुमने उस पर ध्यान दिया कि वन में कौन कौन से वृक्ष लगे होते हैं?
1: बहुत सारे लगे होते हैं, कई बार जाते हैं ना तो लगातार कभी बरगद के पेड़ दिखने लग जाते हैं, नीम होते हैं, पीपल होते हैं, और भी कई कई तरह के कहीं कहीं पे आम के बगीचे लगातार दिखते हैं यात्रा में जाते हैं ना।
0: और देखो वनों में जब हम जाते हैं तो ये तो तुमने सही बताया, लेकिन इसके साथ साथ महुआ है, पलाश है, तेंदू है, सेमल है, आंवला है, जामुन है, खैर, बबूल, चंदन, शीशम, चीड़, देवदार, साल, सागौन, ये सारे पेड़ भी वहां पर दिखते हैं। तो जब कभी वन की तरफ रुख करना तो इन पत्तों को, इन पेड़ों को बहुत ध्यान से देखना,
1: बिल्कुल
0: तो मजा आएगा,
1: बहुत मजा आता है। उनके अलग अलग आकार, किसी कोई पत्ता चौड़ा होता है, कोई लंबा होता है, किसी की धारियां बहुत साफ सफाई से दिखती,
0: कोई बड़े खुरदुरे भी होते हैं कि उंगली लगाओ तो तुम्हारे उंगली में भी छिलने जैसा एहसास हो गया, ऐसा भी होता है।
1: बिल्कुल।
0: तो भाई देखो कहते हैं ना कि वन महोत्सव जो है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जा रहा है, तो एक पेड़ लगाए 100 खुशियां पाए, हरियाली बढ़ाए, धरती को स्वर्ग बनाए। इस वर्ष की थीम है हरित पहलों के माध्यम से पृथ्वी का संरक्षण है। इसके अलावा ये मुहिम चलाई जा रही है कि एक पेड़ माँ के नाम, पेड़ धरती लगाओ बचाओ जैसे नारे जागरूकता बढ़ाने के लिए दिए जा रहे हैं। लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि हमने जो पौधा रोपण किया है दीपा, उसकी देखभाल एवं उसके बढ़ने, फलने, फूलने तक का ध्यान रखा जाए। पानी समय पर देना है उसको, कोई और क्षति तो नहीं पहुंचा रहा है, इस बात का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए।
1: बिल्कुल। और इसकी शुरुआत 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री डॉक्टर KM मुंशी इनके द्वारा हुई थी, तभी से इसे पेड़ लगाने का त्यौहार भी कहा जाता है। हर साल एक, जैसा कि अभी आपने बताया, हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पूरे हमारे देश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। पेड़ों से हमें प्राण वायु, ऑक्सीजन मिलती है, वर्षा चक्र संतुलन में रहता है, तापमान नियंत्रित करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, इनमें अनेक जीव जंतु, पशु पक्षी निवास करते हैं, उन्हें भोजन मिलता है और हम सभी को अनेक आवश्यकताएं इन्हीं से पूर्ण होती है।
0: बिल्कुल, और इनको बचाना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि कटाई इसकी रोकनी होती है, वरना आगे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या बचेगा। जो वनों को बहुत काटते जाते तो उसको भी में ध्यान रखना पड़ता है, और इसको अगर थामा नहीं तो प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़ और गर्मी की दिक्कतें हमें झेलनी पड़ जाती है। तो कहना चाहिए प्रति व्यक्ति को वृक्ष लगाना चाहिए और उसकी देखभाल के प्रति भी सजग रहना चाहिए।
1: बिल्कुल, और इसी तरह के बहुत सारे संदेश भी हमारे श्रोताओं ने लिख भेजे, लेकिन सुनते हैं क्या एक गीत।

0: चलो भचोरी भचुआ रे ताली पलक पिया मुड़ी ना।
1: ऐसे ही ये जो काली काली घटाएं है ना, हर जगह हर तरफ बस ये बरखा रानी इसी तरह से बाहर बरसा दे, यही हम चाहते हैं।
2: बिल्कुल, हमारे साथी लिखते हैं दीपा, वन महोत्सव के सप्ताह के दौरान स्कूल कॉलेज सरकारी संस्थान वृक्षारोपण अभियान वहां पर चलाया जाते हैं और लोगों को पौधे वितरित करते हैं। पर्यावरण को हरा भरा बनाने के लिए एक पेड़ माँ के नाम और आम बहार आपके द्वार जैसे विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें देशी और फलदार वृक्ष जैसे आम जामुन अमरूद नीम के रोपण पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। और दीपा, जो हमारे जो पेड़ है उनसे हमें क्या क्या मिलता है? वृक्ष जब लगे होते तो देखो लकड़ी की और लकड़ी और इमारती सामान मिलता है, जलावन की लकड़ी मिलती है, औषधि जड़ी बूटियां, शहद, फल जामुन आंवला बेल आदि, मेवे मशरूम बांस और बेत भी मिलते हैं, गोंद लाख राल ये सब चीजें, इन सब में घास और चारा मिलता है पशुओं के लिए, और वन्य जीव पक्षी जो है वो वहां पर जीव जंतु है, पशु पक्षी वो सब वहां पर निवास करते हैं। तो कहना चाहिए कि हमें वृक्ष लगाने चाहिए और वनों को कटने से उसको जो रोकने से बचाना चाहिए और तभी हमारा जो जीवन है वो सफल हो पाएगा।
1: बिल्कुल, सफलता सफल जीवन के लिए देखिए अच्छा वातावरण तो बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, स्वास्थ्य अच्छे के लिए अच्छा सा स्वादिष्ट भोजन करना बहुत जरूरी है। तो देखिए बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने लिख भी भेजा है, बहुत सारे रेसिपीज आज अलग अलग तरह से आई है, पंजाबी छोले और भटूरे की। तो मंजरी आप पढ़ रहे हैं या हम पढ़े?
2: कोई भी पढ़ सकता है,
1: पढ़िए आप पढ़िए।
2: चलिए, तो हमारे एक साथी लिखते हैं छोले भटूरे की रेसिपी। 2 कप काबुली चने रात भर भिगे हुए, 2 प्याज बारीक कटे हुए, 2 टमाटर पिसे हुए, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2-3 हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरा, इतना ही आप हल्दी ले और आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 या 2 छोटे चम्मच ले सकते हैं, और लाल मिर्च अपने स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच छोटा छोले मसाला पाउडर लेना है, आधा चम्मच छोला मसाला लेना है इन्होंने लिखा है, नमक स्वाद के अनुसार, 2 बड़े चम्मच तेल, थोड़ा सा हरा धनिया, भीगे हुए चनों को नमक प्रेशर कुकर के साथ में और पानी डालकर 5-6 सीटी के साथ इसको उबाल लें। 1 कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें प्याज सुनहरा होने तक भूने, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, टमाटर और सारे मसाले डालकर तब तक पकाएं जब तक तेल अलग ना हो जाए। अब छोले और थोड़ा सा गर्म पानी डालकर 10 से 15 मिनट धीमी आंच पर पकाएं, अंत में हरा धनिया डालकर गैस बंद कर दें। भटूरे के लिए सामग्री, दीपा इसकी सामग्री है 2 कप मैदा, 2 बड़े चम्मच सूजी, 2 बड़े चम्मच दही, आधा छोटा चम्मच चीनी, आधा छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, 1 बड़ा चम्मच तेल, गुनगुना पानी, तलने के लिए तेल लेना है आपको, मैदा सूजी नमक चीनी और बेकिंग सोडा मिलाएं, दही और तेल डालकर गुनगुने पानी से मुलायम आटा गूंथ लें, आटे को ढककर 2-3 घंटे के लिए रख दें, छोटी छोटी लोइयां बनाएं जब आपको बनाना हो, और गरम तेल में मध्यम तेज आंच पर गरम तेल करें और मध्यम तेज आंच होनी चाहिए, और दोनों तरफ भटूरों को आप उसमें सुनहरा तल लें, और बस भटूरे तलने पर बहुत ही अच्छे बनते हैं, और आप इसको परोसना है तो आप कटा प्याज, हरी मिर्च, नींबू और आम के अचार के साथ छोले के संग में परोसें।
1: ये भोजन का आप स्वाद का आनंद लीजिए और साथ में लीजिए इस गीत का आनंद।
3: अरे अरे ए,

0: हवा के साथ साथ,
1: अरे रे रे,
0: घटा के संग संग,
1: संभालना,
0: हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, ओ साथी चल,
1: मुझे लेके साथ चल, यूं ही दिन रात चल, संभल मेरे साथ चल, ले हाथों में हाथ चल, ओ साथी चल,
0: मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, तो साथी चल। एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, ला ला ला ला ला
1: ला,
0: एक तो ये मौसम है बड़ा

0: साथियों, आज तो देखिए समय कह रहा है कि हमारे भी चलने का वक्त हो गया है,
1: लेकिन चलने से पहले एक बात बताते, हमारी सखी ने लिखा है जंगल की, जो हम लोग बात कर रहे थे वनों की, तो उन्होंने कहा है कि कभी कभी वो ऐसे वन भोज में शामिल हुई जहाँ पर उन्हीं पत्तों पर वहाँ की सब्जियां साग परोसे जाते थे और झाड़ बेरियां और जंगली पत्तों पर बैठ कर प्रेम से भोजन करते थे, इन्होंने लिखा है। तो भाई वन तो ऐसे है कि हम उनको छू कर महसूस कर सकते हैं, वहाँ जाके देख सकते हैं, वहाँ पर पूरी आत्मिक शांति मिलती है।
0: बिल्कुल, तो हम तो आशा करते हैं आज का कार्यक्रम में आपने खूब आनंद लिया होगा। आप अपना, अपने परिवार का खूब अच्छे से ध्यान रखिएगा और अब लेते हैं विदा कार्यक्रम से। तो सभी को मंजरी वर्मा और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: सेहत नामा कार्यक्रम में आज हमने आमंत्रित किया है स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशा लता देवलीकर को। इनसे बातचीत कर रही है ममता सिंह।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह और ये है कार्यक्रम सेहत नामा। दोस्तों स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और जब बात महिलाओं के स्वास्थ्य की हो तो जागरूकता और सही जानकारी बेहद जरूरी हो जाती है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर महिला के जीवन से जुड़ा है। महिलाओं का स्वास्थ्य, हार्मोनल बदलाव, पीसीओडी, प्रजनन स्वास्थ्य और आधुनिक जीवन शैली का प्रभाव, तो इन महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर जो नासिक से आई हैं। डॉक्टर आशा लता देवलीकर जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार। थैंक यू।
1: कैसा लग रहा है आपको?
2: बहुत अच्छा।
1: स्टूडियो में आकर
2: बहुत ही अच्छा लगा
1: जी। आज एक बड़ी समस्या हो गई है जिसके बारे में बहुत कम जानकारी लोगों को है, जिस पर सजगता बहुत जरूरी है, वो है पीसीओडी। ये पीसीओडी क्या है और क्या ये हार्मोनल बदलाव के कारण होता है, इसके बारे में जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
2: यस, अभी पीसीओडी यानी बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। और पीसीओडी क्या है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इसका फुल फॉर्म है पॉली यानी ज्यादा और सिस्ट यानी सिस्ट। पीसीओडी के दो है, पीसीओडी और पीसीओएस। पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। जो पीसीओडी है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है और पीसीओडी में क्लियरली होता है सिस्टिक ओवरीज। और जो पीसीओएस है जो उसमें मल्टीपल डिसऑर्डर होता है, सिंड्रोम्स होते हैं, ज्यादा लक्षण होते हैं, इसमें फर्टिलिटी पर इफेक्ट करता है। ये आजकल यही है पीसीओएस।
1: इसके लक्षण क्या है, मतलब क्या है इसमें खतरा क्या है?
2: पीसीओडी है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और ये जो है ये फर्टिलिटी पे इफेक्ट

0: करता है।
1: फर्टिलिटी पे तो इफेक्ट करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ में शुगर, बीपी हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, और आगे बहुत आगे चल के एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो सकता है। ये जितना सिंपल है उतना खतरनाक भी है ये बीमारी।
2: तो पीसीओडी असल में क्या है, ये क्या हार्मोनल इम्बैलेंस?
1: पीसीओडी एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। क्या होता है, अभी जो ओपीडी में बच्ची आती है हमारे पास, 10 बच्चियों में से 6 बच्चियों में ये साइन दिखता है पीसीओडी, तो इसका बहुत ज्यादा ही प्रमाण हो गया है। रिप्रोडक्टिव एज जो होता है बच्चियों का 14 से 35 तक ये इफेक्ट करता है, और ज्यादातर 20 से 30 तक उम्र के बच्चों में ये ज्यादा दिखता है
2: जी।
1: ये जो डिसीज है, लाइफस्टाइल चेंज डिसीज है, लाइफस्टाइल चेंजिंग, डाइट और स्ट्रेस, ये 3 फैक्टर इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, और ये 3 फैक्टर के वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है
2: जी।
1: और इंसुलिन रजिस्टर हो जाने के वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, और जब हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है तो इंसुलिन रजिस्टेंस के वजह से मेल हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन जिसको बोलते हैं और एंड्रोजन बढ़ने लगता है, और ये बढ़ने की वजह से ओवुलेशन जो है वो ब्लॉक हो जाता है, तो इसकी वजह से नॉर्मल ओवुलेशन नहीं आता है, पीरियड रेगुलर नहीं आता है, ओरी सिस्टिक हो जाती है और इरेगुलर सब हो जाता है
2: जी। तो इसके जैसे कि आप लक्षण बता रहे हैं, पीरियड्स नहीं आते हैं रेगुलर, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है ना लड़कियों की, महिलाओं की, उनको स्ट्रेस और बढ़ेगा, अगर स्ट्रेस और बढ़ेगा तो ये समस्या और बढ़ेगी, तो इसका क्या इलाज है?
1: हाँ, तो इसके लक्षण ही बताती हूँ मैं। पहला इसमें फर्स्ट लक्षण दिखता है पीरियड का इरेगुलर हो जाना, और पीरियड का फ्लो कम हो जाना, स्केंटी पीरियड्स बोलते हैं, कभी कभी ज्यादा भी हो जाना, कभी 2 महीने के अंदर पीरियड आते हैं, 3-3 महीने आते हैं, ये 6-6 मंथ भी नहीं आते हैं, और कभी कभी मेडिसिन लेके ही पीरियड्स आ जाते हैं, वजन बहुत ज्यादा बढ़ता है, चिड़चिड़ापन रहता है, एक्ने आते हैं, पिंपल्स आते हैं, रफ फेस दिखता है
2: जी,
1: और मूड स्विंग्स होते हैं, आलस आता है, बाल झड़ते हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हेयर ग्रोथ, अनवांटेड हेयर, चिन पे हेयर आते हैं, अपर लिप्स पे हेयर आते हैं, बॉडी पे अनवांटेड हेयर आने लगते हैं, और इनफर्टिलिटी में ये बहुत इफेक्ट करता है, आगे चल के शुगर, थायराइड वो सब होता है
2: जी। तो इसका इलाज किस तरह से संभव है?
1: हाँ, इसका इलाज संभव है, इसका इलाज है कि नेचुरल वे से संभव है, जैसे वेट लॉस, पीसीओडी के पेशेंट में देखो तो 80% पेशेंट में ओवर वेट रहते हैं, पेशेंट वेट ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसका इलाज है वेट लॉस और एक्सरसाइज, एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, यानी
2: मेडिटेशन,
1: हाँ वो थोड़ा, तो एक्सरसाइज, योगा, सूर्य नमस्कार, पावर योगा, वॉकिंग, एरोबिक्स, कार्डियो, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्कीपिंग कर सकते हैं, ये सब एक्सरसाइज में कर सकते हैं, 30 मिनट सुबह 30 मिनट शाम एक्सरसाइज इतना किया तो भी 35% तक पीसीओडी रिवर्स हो जाता है, और डाइट।
2: तो अब आगे बढ़ने से पहले एक गाना सुन लेते हैं, आपकी पसंद का कौन सा गाना?
1: अच्छा, एक प्यार का नगमा,
2: एक प्यार का नगमा है मौजू की रवानी, सुनते हैं ये गाना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है इसमें।

0: इस गाने के बाद डॉक्टर आशालता, आपने जिक्र किया था कि पीसीओडी यानी कि ये एक तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है, असंतुलन है, और इसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी होता है। तो इनफर्टिलिटी के लिए जब पता चले कि हाँ बच्चा नहीं हो रहा है किसी कपल को, तो क्या है जांच पद्धति और क्या है उसका ट्रीटमेंट, बताइए। हाँ, पहले जांच पद्धति बताइए। हाँ, किस तरह
1: तो
0: से
1: जब इनफर्टिलिटी के पेशेंट ओपीडी में आते हैं तो 1 ईयर कुछ प्रिकॉशन यूज करते हुए भी उनको प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो रही है, तो फर्स्ट थिंग हम करते हैं लेडीज में, फीमेल में, ओवुलेशन स्टडी। कि ओवुलेशन स्टडी एक सोनोग्राफी होती है
0: जी,
1: और उसमें पता चलता है कि उसका यूटेरस सही है, यूटेरस की मेजरमेंट क्या है, ओरी सही है, गर्भनलिका जो है वो सही है, एंडोमेट्रियम थिकनेस जिसको हम बोलते हैं अंदर का अस्तर वो सही है, ये सब पता चलता है। और फिर उसके कोई हार्मोनल टेस्ट रहती है, उसमें रहता है ब्लड टेस्ट रहते हैं, वो पीरियड के सेकेंड डे से करना पड़ता है और वो खाली पेट करते हैं, उसमें FSH रहता है, फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन बोलते हैं, LH रहता है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, लिपिड प्रोफाइल रहता है, और सबसे बड़ी चीज ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं, ग्लूकोज का पूरा टेस्ट करते हैं, फास्टिंग, पीपी, और उसमें कुछ आ गया 120 के आसपास तो HbA1c ये टेस्ट रहता है। और फर्टिलिटी के लिए AMH लेवल, एंटी मिलेरियन हार्मोन की लेवल रहती है, वो करना पड़ती है, इतना ब्लड टेस्ट रहता है और UHG सोनोग्राफी, ये दो टेस्ट बहुत जरूरी है। और मेल पार्टनर में हम सीमेन काउंट, सीमेन एनालिसिस करते हैं।
0: और अभी तो तकनीक काफी एडवांस हो गई है, तो इनफर्टिलिटी की जांच के लिए और भी कुछ जांच की पद्धति आ गई है, तो तुरंत पता चल जाता है कि हाँ इन्हें बच्चा ना होने का क्या कारण है, उसके बारे में भी जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को। जैसे लेप्रोस्कोपी है तो क्या?
1: हाँ, वो थोड़ा जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लेप्रोस्कोपी, IVF या IUI एडवाइस हम लोग नहीं कर सकते, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे, और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है जिसे पुराने जमाने में हम क्रोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोस देते हैं, लेट्रोजॉल, और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस डिफेंसी है, बिटवेल हो, ये सब देकर, और शिफ्ट नहीं हो रहा है तो टेस्ट रहते हैं आगे चल के उनका ट्यूबल ब्लॉक है कि नहीं, वो एक ही चीज टेस्ट रहता है
0: जी।
1: तो वो सब ठीक है, अभी नहीं हो रहा है नॉर्मल, कुछ ज्यादा दिन ब दिन ज्यादा बढ़ रहा है, तो आगे चल के उनको लेप्रोस्कोपी सजेस्ट करते हैं।
0: तो

0: ये भी इनफर्टिलिटी भी एक ऐसा कारण है जो स्ट्रेस को बढ़ावा देता है। आज हम बात करना चाह रहे हैं पीसीओडी और महिलाओं के अन्य तमाम समस्याओं पर। और आपने कहा डॉक्टर साहिबा कि जब पीसीओडी का इम्बैलेंस होता है तो बहुत सारी समस्याएं होती, लक्षण है जैसे कि पीरियड्स का इररेगुलर हो जाना। तो पीरियड्स का इरेगुलर होता है, कई बार कई महिलाओं को, कई लड़कियों को हैवी ब्लीडिंग होती है, भयानक पेन होता है, तो दर्द से निजात पाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? और ये भी सुना है कि फिर फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं क्या हैवी ब्लीडिंग की वजह से, इसके बारे में जानकारी दीजिए कि क्या है फाइब्रॉइड्स और
1: यूटेराइन फाइब्रॉइड और सीस्टी जो है। तो मेडिसिन लेकर देखते हैं पेशेंट को, अगर उसका साइज ज्यादा हुआ, फाइब्रॉइड बहुत ज्यादा बढ़ गया तो वो सर्जरी करना पड़ता है इसका।
0: कैसे पता चलता है कि फाइब्रॉइड्स है या नहीं?
1: यूएचजी में, सोनोग्राफी में उसका परफेक्ट मेजरमेंट आता है,
0: जी
1: सोनोग्राफी एक ही माध्यम है उसको।
0: जी तो क्या फाइब्रॉइड्स का ऑपरेशन करना जरूरी होता है या ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है?
1: शुरू शुरू में तो ट्रीटमेंट नहीं देना जरूरी है, और ट्रीटमेंट से नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है मेजरमेंट उसका, तो सर्जरी करना पड़ती है
0: जी।
1: उसकी।
0: तो एक गाना और सुने, आपकी पसंद का कौन सा?
1: अजीब दास्ता,
0: अजीब दास्ता है जी, सुनते हैं। बेहतरीन गाना चुना है, लता मंगेशकर की आवाज है।

0: आपने कुछ लक्षण बताए हार्मोनल असंतुलन होता है, तो और क्या क्या लक्षण होते हैं जब हार्मोनल असंतुलन होता है, और इनको क्या नजरअंदाज करती हैं कई बार महिलाएं, तो क्या कुछ मुश्किलें आती हैं जब इन्हें नजरअंदाज करती हाँ। छोड़ देती हैं?
1: ये तो जब फिजिकली होता है तो हमको समझ में आता है कि नहीं उसको ये हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है इसमें, उसको नजरअंदाज कर दिया जा सकता है। तो मेंटल स्ट्रेस के लिए मेडिटेशन है जिसे, और काउंसिलिंग पार्ट इसमें बहुत ज्यादा।
0: तो काउंसिलिंग किस तरह की होनी चाहिए?
1: काउंसिलिंग जब डॉक्टर के पास जाते हैं पेशेंट, तो डॉक्टर भी अच्छे जब काउंसलर डॉक्टर हो गए तो पेशेंट का रेपो अच्छा हो जाता है उनसे, फ्रेंड भी जब वो अच्छे से समझाते हैं तो आधा काम इधर ही हो जाता है
0: जी,
1: ऐसा मुझे लगता है
0: जी।
1: और डीप ब्रीदिंग जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट एक थिंग है, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत बड़ी अभी जो चाहिए इस समय में, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में डीप ब्रीदिंग है, मेडिटेशन है, और उसका स्लीपिंग जो पार्ट है प्रॉपर स्लीप वो होना चाहिए, और समझाना चाहिए सब। और एक है पॉजिटिव विजुलाइजेशन, जो तुम मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, पॉजिटिव प्रोसेस, पॉजिटिव थिंक प्रोसेस और पॉजिटिव विजुलाइजेशन, ये बहुत बड़ी बात है
0: जी। डॉक्टर आशालता, पीसीओडी एक बड़ी समस्या है, हार्मोन्स का असंतुलन, तो इसमें डाइट्स का कितना बड़ा योगदान है? क्या डाइट्स के जरिए ठीक किया जा सकता है, खान पान के जरिए?
1: डाइट
0: किस तरह से ठीक किया जा सकता है?
1: डाइट के जरिए 35 तक ठीक कर सकते हैं पीसीओडी, 35% तक ठीक कर सकते,
0: 35%
1: हाँ। तो डाइट में, डाइट ही बहुत जरूरी है पीसीओडी यानी वुमन हेल्थ में, एक्सरसाइज, डाइट और स्ट्रेस, ये तीन फैक्टर बहुत जरूरी है। और डाइट में हम देखे तो अभी फास्ट फूड खाते हैं बच्चिया, बस फास्ट फूड ही खाती है, बर्गर खाएगी, पिज्जा खाएगी, बाहर का सब खाएगी, तो ये सबसे बुरी बात है। कार्ब्स कम करना है इसमें, और फाइबर इंटेक करना है, जैसे सैलड हो, कच्चे स्प्राउट्स हो, कैलोरीज पर ध्यान देना है। हाँ, जो हमको डेली में लगता है 1800-2000 तक कैलोरीज
0: जी,
1: और बच्चियां लड़कियां खाती है 4000-5000 कैलोरी, तो कहाँ पर कम करना है, और कैलोरी अगर खा लिया तो बर्न कैसे करना है, तो उसको बर्न करना है एक्सरसाइज से। तो डाइट हम लोग जैसे बोलेंगे तो टाइम पे सोना है, उठना है पीसीओडी में, पानी पीना है 3-4 लीटर, स्ट्रेस ना लेना है, और शुरू में उठते बराबर सुबह सुबह थोड़ा गर्म पानी पीना है, और अगर मेथी, थोड़ा जीरा, थोड़ा दालचीनी का टुकड़ा ये भी डाले तो ये टी हो सकता है, हर्बल टी, उससे भी थोड़ा सा पीसीओडी कम होने में मदद कर सकते हैं। नाश्ते में फाया आलमंड, व्हाइट एग ये ले सकते हैं, स्प्राउट्स ये ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट में मूंग दाल वगैरह ये चीले ले सकते हैं, सैलड ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन उपमा, पोहा, शिरा ये कार्ब्स से, उससे वजन बढ़ता है और अफेक्ट करता है। और हरी सब्जियां बहुत जरूरी है, जैसे सभी मेथी, पालक ये सब, और हरी सब्जियां से भी 25% तक पीसीओडी या वुमन हेल्थ कम कर सकता है। और शुगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, शुगर, शुगर एकदम बंद, पीसीओडी के पेशेंट में हम शुगर बंद कर देते हैं, शुगर, मैदा, व्हाइट जो चीजें, राइस जैसे
0: जी।
1: हाँ, और हाई प्रोटीन डाइट हम बोलते हैं पेशेंट को कि थोड़ा प्रोटीन लो, तो प्रोटीन किसमें होता है, जैसे मिल्क है, टोफू है, पनीर है, गुड प्रोटीन होता है ड्राई फ्रूट्स में, वो भी हम बोलते हैं। और सप्लीमेंट्स भी लेना जरूरी है, हम उनको बोलते हैं जैसे ओमेगा फैटी हो गया, विटामिन डी 3 हो गया, विटामिन डी

0: और विटामिन डी, धूप से
1: सनलाइट,
0: और आजकल धूप की बहुत कमी
1: है।
0: लोग एयर कंडीशन कमरों में बैठते हैं, घर में भी एसी, ऑफिस में भी एसी तो मिलता नहीं, तो धूप सीखना बहुत जरूरी है। धूप का ही एक गाना है, एक टुकड़ा धूप का, फिल्म थप्पड़ से, आप कहें तो वो गाना सुनवा दें, आप कहें तो कोई और गाना।
1: नहीं नहीं जरूर, बहुत अच्छा गाना है।
0: तो ठीक है, ये गाना सुनते हैं जिसमें धूप है।

0: डाइट का कितना योगदान है?
1: डाइट का बहुत सारा योगदान है।
0: तो और क्या क्या डाइट्स ले सकते हैं?
1: अभी डाइट में कोल्ड ड्रिंक्स नहीं ले सकते हैं, जैसे कोक हो गया और जो कोल्ड ड्रिंक्स हो गया। हाँ, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स रहता है उसमें, वो बिल्कुल नहीं, चॉकलेट्स भी नहीं। और इससे बहुत ज्यादा शुगर लेवल बढ़ता है और शुगर लेवल इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और ओवुलेशन को ब्लॉक कर देता है। बाहर की चीजें जैसे रिसाइकलिंग ऑयल में हम जैसे बोलते हैं समोसा, जो
0: नहीं खाना चाहिए।
1: हाँ, नहीं खाना चाहिए। ट्रांसफैट, हाँ ये ट्रांसफैटी एसिड बढ़ता है और वो भी ओवुलेशन को ब्लॉक कर देता है। और पैकेज फूड जो होता है, पैकेट बंद पैकेट का फूड, वो भी नहीं चाहिए। प्रोसेसिंग फूड, नमकीन, भुजिया, जो सॉल्टी फूड्स है, वो भी नहीं।
0: तो और आपने कहा कि शक्कर एक बंद कर देना चाहिए एकदम, तो कई बार एकदम से शक्कर बंद हो जाए तो लोगों को चक्कर आना, इस तरह की समस्या, वीकनेस, कमजोरी महसूस होती है, तो उसके लिए फिर
1: वो फ्रूट्स से नेचुरल शुगर मिल जाती है जी। हाँ, तो फ्रूट्स इंटेक कीजिए
0: जब अगर शक्कर छोड़े तो फल जरूर।
1: हाँ, फल जरूर खाएं। और ऐसा नहीं है कि शक्कर छोड़े गुड़ खाओ, अभी वैसा ही करती है महिलाएं कि हमको शक्कर छोड़ने बोला है और बोला है कि गुड़ खाओ, बिल्कुल गलत है। शक्कर की सब्स्टिट्यूट गुड़ नहीं है, शक्कर नहीं तो कोई नहीं, शुगर कोई नहीं है,
0: मीठा वो भी
1: मीठा। हाँ, हमारे रोज के खाने में भी हमको शुगर जाती है। और फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, खजूर वगैरह है, नेचुरल शुगर मिल जाती है,
0: वो खा सकते हैं।
1: खा सकते हैं।
0: और पीसीओडी जो हार्मोनल असंतुलन होता है, तो क्रॉनिक स्ट्रेस होता है।
1: हाँ, क्रॉनिक,
0: तो उसके लक्षण क्या है और कैसे इलाज हो सकता है?
1: क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, बहुत सारी चिड़चिड़ पीसीओडी के पेशेंट, चिड़चिड़ बहुत ज्यादा होती है पीसीओडी के पेशेंट की। अभी जब भी पेशेंट हमारे पास आती है तो बोलती है कि चिड़चिड़ी बहुत होती है, कुछ भी हो, थोड़ा सा भी कुछ हो तो बहुत बड़ा इशू हो जाता है। तो ये क्रॉनिक ये रहता है स्ट्रेस, और इससे कॉर्टिसोल बढ़ा देता है ये, और वजन बढ़ता है और ओवुलेशन ब्लॉक हो जाता है, सिस्टिक ओवरी हो जाती है, अनफर्टिलिटी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है।
0: और क्या क्या कर सकते हैं इस स्ट्रेस से निजात पाने के लिए?
1: स्ट्रेस से

0: कुछ तुम हॉबी हो या करियर पे ध्यान दो, या थोड़ा मेडिटेशन करो, या थोड़े अच्छे संगीत सुनो, और फिर थोड़ा सा मौन व्रत धारण करो।
1: चलिए हम मौन व्रत धारण करते हैं, एक गाना सुनते हैं। बताइए कौन सा गाना
0: दिल
1: सुनवाए।
0: मिल सितारों के।
1: आंगन होगा, सुनते हैं यही गाना।

गलियां ना मिले ना सही, कांटों से सजाएंगे बगिया से सुंदर वो बन होगा, रिमझिम बरसता।

0: डॉक्टर साहब, आप पीसीओडी की बात करें और महिलाओं की और भी बीमारियां होती हैं जो महिलाएं जिनसे बचती भी हैं, जिन्हें छुपाती भी हैं, संकोच करती हैं। जैसे कि एक समस्या और है कि एक खास समय पर टीनेज पर 12 से 13 साल की उम्र में पीरियड्स शुरू होते हैं मासिक धर्म, लेकिन बहुत सारी लड़कियों को ये बताया नहीं जाता, अवेयर नहीं किया जाता है, माँ बाप उन्हें इस बात की शिक्षा नहीं देते हैं। तो आप क्या कहेंगे, किस तरह से उनको जागरूक बनाया जाए, उनको जानकारी कैसे दी जाए इसके बारे में कुछ?
1: अभी जो है टीनेज में आने का, जो मेनार्क बोलते हैं हम लोग, पीरियड स्टार्ट होने का, वो एज बहुत अर्लियर हो गया है,
0: जल्दी

0: हाँ जल्दी आ गया है। हम लोगों में जब 14 to 16 था, 12th से आता था, 12 ईयर से, अभी वो 8.5-9 साल की लड़कियों में भी दिख जाता है कि इसको
1: हाँ
0: मेनाक स्टार्ट हो गया, इसको पीरियड स्टार्ट हो गए। और ये बहुत ज्यादा डरने की चीज है, डरने की चीज।
1: तो
0: तो
1: क्या वजह है
0: क्यों,
1: इसके?
0: इसकी वजह है जब बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाती है, 2-3 साल की, खाने लगती है, तो बस उसको फास्ट फूड देते हैं। हाँ, कोक ये वो सब। मोटी होती है बच्ची, ध्यान नहीं देते, खाती है खाती है। और जब जितना अर्लियर मेनार्क स्टार्ट हो गया, जितना अर्लियर तुमको पीरियड स्टार्ट हो गया, उतना पीसीओडी का खतरा बढ़ता है। और अभी पीरियड्स कैसे स्टार्ट होते हैं, क्या होते हैं, यूटेरस क्या चीज है, उसका फंक्शन कैसा है, ये सब स्कूल में इसके सब शोज होते हैं, बातें करती है डॉक्टर, और अवेयरनेस बहुत ज्यादा है।
1: और आपने ये गर्भाशय में सिस्ट बन जाता
0: हाँ,
1: है इधर,
0: गर्भाशय में
1: हाँ,
0: सिस्ट
1: तो
0: बन जाता है,
1: ये क्या
0: तो
1: समस्या है और इसका इलाज कैसे होता
0: गर्भाशय के साइड में 2 गर्भनलिकाएं रहती है, और गर्भनलिका के नीचे ओरिस रहती है।
1: है?
0: और जनरली देखा जाए तो 30 डेज की साइकिल रहती है, थर्टी
1: जी
0: ट्वेंटी एट थर्टी। तो फर्स्ट 10 डेज, बीच के 10 डेज और लास्ट 10 डेज, इसे 30 डेज। तो फर्स्ट 10 डेज में ओवुलेशन नहीं होता है, लास्ट 10 डेज में ओवुलेशन हो जाता है, और बीच के 10 डेज जो होते हैं उसमें ओवुलेशन होता है, यानी ओरी से एक फॉलिकल निकलता है, अंडा निकलता है, वो रिलीज होता है, बाहर आता है, और जब स्पर्म उससे मिलता है तो प्रेगनेंसी कंसीव होती है, और नहीं मिलता है तो पीरियड्स आ जाता है। ये नेचुरल नॉर्मल लेडी में होता है, बीच के 10 डेज ओवुलेशन पीरियड। और पीसीओडी के पेशेंट में ये होता है कि उनका वो जो एग है वो रिलीज नहीं होता है, वो बाहर नहीं आता है, वो बाहर न आने जाने की वजह से मोतियों जैसी, मालाएं जैसी ओरी में सिस्ट दिखती है, छोटी छोटी सिस्ट होती है, और बाहर न आने की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती है।
1: जी, तो उस सिस्ट का इलाज कैसे किया जाता है? क्या ऑपरेशन होता है या दवा
0: वो
1: से
0: सिस्ट
1: होता
0: तो
1: है?
0: नेचुरल सिस्ट, मैंने जैसे बार बार बोला है कि वो अच्छे से डाइट एक्सरसाइज पहले नेचुरल वे से कंट्रोल करते हैं, नेचुरल वे से नहीं कंट्रोल हुआ तो मेडिसिन से कंट्रोल करते हैं, नहीं हुआ तो सीज का ड्रिल होता है, ड्रिलिंग लैप्रोस्कोपी से, सर्जिकल प्रोसेस है,
1: जी,
0: होता है।
1: तो उसका कोई खतरा नहीं?
0: नहीं, उसका कोई खतरा नहीं, सर्जिकल होता है और मेडिकली वो होता है ठीक ठाक।
1: जी, अब बताइए कौन सा गाना सुनवाए?
0: सुरमई अखियो
1: सुरमई अखियों में
0: नन्ना
1: मुन्ना मुन्ना
0: मुन्ना
1: एक
0: स्नेह
1: सपना दे
0: सपना।
1: जा रहा है। सुंदर गाना, सदमा फिल्म का गाना सुनते हैं।

0: ये गाना हमने अपने श्रोताओं को सुनवाया और डॉक्टर आशा लता विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर हमें बताइए कि आपने इनफर्टिलिटी का जिक्र किया था कि पीसीओडी के कारण इनफर्टिलिटी होती है, तो उसके तो बहुत सारे इलाज आजकल संभव है। अखबारों में विज्ञापन आता है कि इतने हजार में आप आईवीएफ तकनीक से बच्चा पैदा कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आईवीएफ तकनीक के बारे में बताइए किस तरह से वो बच्चे का जन्म होता है, और हमारे बहुत सारे श्रोता जो गांव में भी हैं जिन्हें नहीं पता उनके लिए भी बताइए, और कितना टाइम लगता है, कितना रिस्की होता है।
1: तो पेशेंट जैसे इनफर्टिलिटी उनको डिटेक्ट हुआ चलो, तो डायरेक्टली आईवीएफ नहीं करना चाहिए और करते भी नहीं है, उनको प्रॉपर नेचुरल वे से ट्राई करते हैं और फिर जो इनफर्टिलिटी जर्नी किसी को नहीं होना चाहिए, इतनी सफर होती है पेशेंट उसमें बहुत सारे, तो नेचुरल ट्राई करते हैं, नेचुरल ट्राई नहीं हुआ तो डॉक्टर मेडिसिन देख के ट्राई करते हैं, नहीं हो रहा है और फिर आईयूआई का सेटिंग करते हैं। आईयूआई भी नहीं हुआ तो
0: आईयूआई क्या है?
1: आईयूआई है इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन बोलते हैं इसको, डायरेक्टली यूटेरस में सीमेन डाल देते हैं। आईयूआई जब करते हैं कि जैसे स्पर्म काउंट कम हो, उसकी मोर्टेलिटी कम हो और स्पर्म काउंट जीरो भी हो, अजोस्पर्मिया उसको जो बोलते हैं, तो डोनर से बोल लेते हैं, लैब में ये सब किया जाता है
0: और लैब से भी डोनेट,
1: हाँ डोनर का
0: देते
1: हैं, और डोनर को पता नहीं रहता है पेशेंट को, नहीं पेशेंट को पता नहीं रहता, ये सब बहुत ही लीगली होता है, बहुत ज्यादा लीगली होता है। और आईयूआई के जैसे परसेंटेज सक्सेस रेट बहुत कम है, 5-7% इतना ही सक्सेस रेट है, बहुत ज्यादा सक्सेस रेट कम है, और फिर नहीं आईयूआई हुआ तो वो फॉर आईवीएफ। आईवीएफ के तरफ जब जाते हैं तो आईवीएफ क्या होता है, तो आईवीएफ में ओवम पिकअप करते हैं फीमेल का,
0: जो प्रेक्टली
1: हाँ उसमें सब मेडिसिन पहला देकर उसको मैच्योर करते हैं और वो पिकअप करते हैं, और स्पर्म तो लैब में उसको एम्ब्रियो बनाते हैं, उसका एम्ब्रियो बन जाने के बाद में यूटेरस में।
0: तो इस पूरी प्रक्रिया में पीरियड्स के किस दिन से शुरू होता है ये प्रोसीजर?
1: हाँ पीरियड्स के सेकेंड थर्ड से स्टार्ट हो जाता है प्रोसीजर, फर्स्ट तो इंजेक्शन मेडिसिन और फिर बाद में ओम पिकअप करते जब मैच्योर हो जाता है श्री बीज अंडा, और फिर बाद में।
0: तो कई बार कपल जो पति पत्नी होते हैं जाते हैं डॉक्टर के पास, उनको घबराहट भी होती कि क्या प्रक्रिया है, तो इस प्रक्रिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि कैसे होता है, क्या जैसे महिलाओं के गर्भाशय से जब अंडे रप्चर होते हैं वो निकालने की प्रक्रिया क्या होती है, उस समय कैसे फिर उनको कोई तकलीफ

0: तकलीफ तो नहीं होती है?
1: वो थोड़ा पेनफुल प्रोसीजर रहता है, हाँ। तकलीफ तो होती है उनको,
0: एनेस्थीसिया वगैरह देना?
1: एनेस्थीसिया नहीं, एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं रहती है, और स्पर्म तो ऐसे ही लैब में कलेक्ट हो जाते हैं और उसका एम्ब्रियो बनाते हैं लैब में।
0: तो फिर इसमें किसी तरह का खतरा, कोई रिस्क नहीं होता है?
1: नहीं, अभी तो सब लैब टेस्टिंग होता है, पूरा सब लीगली प्रोसीजर्स होता है, खतरा कोई नहीं होता है।
0: कितने साइकिल में ये संभव हो पाता है? डॉक्टर के पास कितनी बार जाना पड़ता है?
1: वो बोल नहीं सकते, कभी वन साइकिल में हो जाता है, कभी सेकंड साइकिल में, कभी थर्ड साइकिल में भी हो जाता है, वो बोल नहीं सकते, कभी फेल भी हो जाता है। लेकिन आईवीएफ जो फेल हो गया वो लास्ट है
0: जी,
1: लास्ट टप्पा है। आईवीएफ फेल हो जाने के बाद में तुम नेचुरल वे में नहीं आ सकते।
0: जी जी, तो पीसीओडी के कारण क्या ये भी होता है कि मेनोपॉज जल्दी हो जाए या फिर बहुत देर से हो, ये समस्या भी होती है?
1: हाँ, होती है। पीसीओडी में पीरियड से रेगुलर रहते हैं और ट्रीटमेंट नहीं किया तो मेनोपॉज ही हो जाता है। कभी कभी दवाई लेके ही पीरियड आता है
0: जी,
1: ये भी होता है
0: जी। तो इसकी क्या वजह है कि नींद की कमी?
1: हाँ, नींद की कमी, डाइट और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस।
0: कई बार हमने देखा है कि महिलाओं में ब्लीडिंग ज्यादा होती है और कई महिलाओं में बहुत कम
1: हो जाती है,
0: और कुछ महिलाओं को दर्द बहुत ज्यादा होता है, तो इसकी क्या वजह होती है?
1: वो जेनेटिक फैक्टर भी रहता है, कभी कभी दर्द होता है, एनर्जिया बोलते हैं उसको, और डाइट का भी इफेक्ट करता है वो, और एक्सरसाइज भी नहीं होती है तो होता है। जो महिलाएं एक्सरसाइज करती है, योगा करती है, काम करती है, उनको नहीं इतना कुछ होता है।
0: तो
1: जो महिलाएं बहुत सुखवस्तु है, कुछ भी नहीं करती, योगा भी नहीं करती है, तो उनको ये सब पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज पेनफुल होता है।
0: तो ये गंभीर रूप कब ले लेता है?
1: इस पे ध्यान नहीं दिया तो गंभीर ही रूप लेता है।
0: क्या कुछ खतरा होता है?
1: हाँ, यूटेराइन कैंसर भी होता है, एंडोमेट्रियम कैंसर, ओवरीज का कैंसर हो सकता है बाजने, और ये सब इफेक्ट करता है बहुत ज्यादा।
0: तो क्या इसके लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध है कि इससे?
1: वैक्सीन उपलब्ध है लेकिन उसका सक्सेस रेट कितना ये पता नहीं है।
0: और कई बार महिलाओं के गर्भाशय में छोटी मोटी गांठ होती है, कई बार फाइब्रॉइड्स को भी लोग गांठ समझ लेते हैं और कैंसर का डर पैदा होता है, तो ऐसा कहाँ तक सच्चाई है इसमें?
1: सभी गांठें कैंसर की होती है ऐसा नहीं है
0: जी,
1: कभी कभी ये पीसीओडी की तो पानी जैसे होता है उसका
0: जी,
1: हाँ, कभी कभी हेमोरेजिक होती है, खून भी रहता है उसमें, हेमोरेजिक सिस्ट भी होता है,
0: मतलब पानी
1: सिस्टिक, हाँ, होता है, और कभी कभी हेमोरेजिक भी होती है।
0: यूरिन के रास्ते यूरिन पानी आता है ऐसा?
1: हाँ, वो अलग चीज है, यूरिन के रास्ते जो सफेद पानी है तो व्हाइट डिस्चार्ज होता है, वो इन्फेक्शन के कारण हो जाता है
0: जी।
1: हाँ,
0: तो उसका क्या इलाज है?
1: वो तो क्लीनिनेस और फिर थोड़ा एंटीबायोटिक और सभी देख के वो क्लियर हो सकता है
0: जी। तो यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाए?
1: ये रात भीगी भीगी,
0: ये रात भीगी भीगी, ये मस्त मजा है, चोरी चोरी फिल्म का गाना है, सुनते हैं ये गाना।

0: पे भूल गया है चांदनी, तूने भी नहीं देखा मौसम का ये इशारा,
1: ये रात भीगी ये मां।

0: पीसीओडी की जो समस्या होती है डॉक्टर, तो उसमें आपने जिक्र भी किया था कि अनावश्यक बाल हो जाते हैं चेहरे पर, जो लड़कियों को महिलाओं को बहुत बुरा लगता है और उसका ट्रीटमेंट ढूंढती है, तो इसके बारे में बताइए कि इसका क्या इलाज है।
1: पीसीओडी का लक्षण है अनवांटेड हेयर।
0: हाँ,
1: और लड़कियां बोलती है कि हमको पीसीओडी चलेगा लेकिन ये अनवांटेड हेयर नहीं, हर 2-3 दिन के बाद हेयर ग्रोथ हो जाती है, कभी रेजर करते हैं, कभी वैक्सिंग करते हैं, कभी थ्रेडिंग करते हैं और उससे भी बहुत ज्यादा होता है। और ये बाल तो जैसे पीसीओडी इम्बैलेंस रहा, हार्मोनल इम्बैलेंस, तब तक आते ही रहते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये बाल होते हैं। और इसमें भी LHR बोलते हैं उसको, लेजर कर देते मशीन से हेयर लेजर रिमूवल, वो भी बहुत अच्छी एक है।
0: जी, जब हार्मोन्स का असंतुलन होता है तो मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है, किस तरह से होता है?
1: मानसिक स्वास्थ्य ही प्रभावित होता है, चिड़चिड़ापन होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है।
0: जी, तो इसका इलाज क्या है?
1: इसका इलाज मेडिटेशन, शांत रहना।
0: डॉक्टर, आज के युग में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन हो गया है, बहुत सारी महिलाओं के बारे में सुना जाता है उन्हें ब्रेस्ट कैंसर से वो महिला जूझ रही है, तो इसका परीक्षण कैसे करें?
1: इसका परीक्षण सेल परीक्षण भी कर सकते हैं, मिरर के सामने खड़े होके अपना पाल्म ये है ऐसा थोड़ा सा टच करके, कुछ लगे हार्ट तो जल्दी से डॉक्टर को बता देना चाहिए, और महीने में एक बार तो भी सेल परीक्षण करना चाहिए। और फिर कुछ लगा ऐसे कि हार्ड होता है, कुछ गठी जैसी लग रही है, तो डॉक्टर से तुरंत सलाह लेना चाहिए। और फर्स्ट सेकेंड स्टेज में तो बहुत ही अच्छा हो जाता है।
0: और इसके लिए एक तकनीक भी इसकी जांच के लिए उपलब्ध है ना, मेमोग्राफी।
1: मेमोग्राफी करना,
0: तो
1: मेमोग्राफी, सोनोग्राफी, एपेनिसी, नीडल बायोप्सी।
0: लेकिन महिलाएं डरती हैं इस तकनीक से?
1: महिलाएं डरती नहीं है, महिलाएं वो करना ही पड़ता है, वो जरूरी है, डरने का ये नहीं है। महिलाएं कभी डर गई तो बढ़ जाएगा, थर्ड फोर्थ स्टेज में कुछ नहीं होता है।
0: और पीसीओडी में मूड स्विंग बहुत होता है, तो इसका क्या इलाज है मूड स्विंग का, कि अचानक किसी महिला को देखा है अचानक चीखने चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, अचानक बिल्कुल शांत,
1: मेंटल स्ट्रेस,
0: तो इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है?
1: उसका डाइट से ही, डाइट एकदम मसालेदार, बहुत चटपटा, बहुत बाहर का, अंदर से पूरा हीट बढ़ गया ऐसे, वो इसका इलाज भी मेडिटेशन है, शांत रहना है
0: जी,
1: एक्सेप्टेंस करना है, और जो मैनेजमेंट रहता है स्ट्रेस मैनेजमेंट वो आना चाहिए, अच्छे से किताब पढ़ो, अच्छे से थोड़ा माइंड डाइवर्ट करो, फोकस करो करियर पे, जो चीज तुमको बुरी लगती है उसको थोड़ा सा अवॉइड करो, तुमको थोड़ा सा अच्छा लगता है हॉबीज है कुछ, उस पे ध्यान दो।
0: और पीसीओडी की समस्या से निपटने के लिए और क्या सलाह देंगी आप हमारे श्रोताओं को?
1: पीसीओडी से निपटने के लिए तो फास्ट फूड बंद करो। जब पीसीओडी का पेशेंट आता है तो हम यही बोलते हैं कि फास्ट वॉक, अवॉइड फास्ट फूड बस, और नींद अच्छे से।
0: जी, कुछ संदेश देना चाहती है हमारे श्रोताओं को?
1: बस हैप्पी रहो, किसी को पीसीओडी ना हो, जो महिला योगा करती है अच्छे से खुद को माइंड फ्रेश रखती है, हैप्पी रहती है, और उनको पीसीओडी, मेनार्क, मेनोपॉज, ये वो सभी समस्या से वो

0: आराम से गुजर जाती है, आराम से हो जाता है सब। और जो महिलाएं नहीं, चिड़चिड़ापन ही रहता है उनका, बाकी कुछ ज्यादा सोचती नहीं, बस चिड़चिड़ चिड़चिड़। तो ये सब जो हमारे स्टेजेस है महिला के जीवन में, मेनार्क है, जैसे पेरी मेनोपॉज है, मेनोपॉज है, अभी ये पीसीओडी आ गया, तो इससे वो नहीं जूझती है, उनको तकलीफ होती है इससे सब बाहर निकलने के लिए। पॉजिटिविटी बहुत बड़ी चीज है और लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचो, सभी अच्छा होता है। पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव मेडिटेशन, सात्विक सकारात्मक जीवन शैली।
1: डॉक्टर आशालता, आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और इतनी सारी बातें हमारे श्रोताओं को बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम।
2: ये थी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशालता देवलीकर से ममता सिंह की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक, संपादन रीमा जोशी और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें।
0: तो न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला।
4: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी जैसलमेर के गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, शाम के 5 बजे हैं, आइए सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी।

युववाणी सुनने वाले सभी युवा साथियों को आपकी दोस्त मनीषा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम सबसे पहले बात कर रहे हैं भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में। जी हाँ, हर साल 6 जुलाई को इनकी जयंती मनाई जाती है। उनका जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में हुआ था। वे एक महान शिक्षाविद, प्रमुख राष्ट्रभक्त और अखंड भारत के प्रबल समर्थक भी थे। दोस्तों, डॉक्टर मुखर्जी ने वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी के रूप में भी उभरी। उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। दोस्तों, उनके जीवन और राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान हम कह सकते हैं कि बहुत ही अधिक रहा। आप संस्कृति मंत्रालय का आधिकारिक अगर आप देखें तो इन्होंने कई मंत्री पद भी संभाला। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बड़े शिक्षाविद, चिंतक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। दोस्तों, उनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी और शिक्षाविद के रूप में विख्यात थे। डॉक्टर मुखर्जी ने 1917 में मैट्रिक किया और 1921 में बीए की उपाधि प्राप्त की और 1923 में लॉ की उपाधि अर्जित करने के पश्चात वे विदेश चले गए और 1926 में इंग्लैंड से बैरिस्टर बनकर स्वदेश लौटे। अपने पिता का अनुसरण करते हुए उन्होंने भी अल्पायु में ही विद्या अध्ययन के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलताएं अर्जित कर ली। 33 वर्ष की अल्पायु में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बने और दोस्तों, इस पद पर नियुक्ति पाने वाले वे सबसे कम आयु के कुलपति थे। एक विचारक और प्रखर शिक्षाविद के रूप में उनकी उपलब्धि और ख्याति निरंतर आगे बढ़ती गई। उसके बाद आया उनका राजनीतिक जीवन। जी हाँ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्वेच्छा से अलख जगाने के उद्देश्य से राजनीति में प्रवेश किया। डॉक्टर मुखर्जी सच्चे अर्थों में मानवता के उपासक और सिद्धांतवादी थे। उन्होंने बहुत से गैर कांग्रेसी हिंदुओं की मदद से कृषक प्रजा पार्टी से मिलकर प्रगतिशील गठबंधन का निर्माण किया और इस सरकार में वित्त मंत्री भी बने और इसी समय वे सावरकर के राष्ट्रवाद के प्रति आकर्षित हुए और हिंदू महासभा में सम्मिलित हुए। दोस्तों, डॉक्टर मुखर्जी की अगर हम बात करें तो वे मानते थे कि विभाजन संबंधी उत्पन्न हुई परिस्थिति ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों से थी। वे मानते थे कि आधारभूत सत्य है कि हम सब एक हैं, हम में कोई अंतर नहीं, हम सब एक ही रक्त के हैं, एक ही भाषा, एक ही संस्कृति और एक ही हमारी विरासत है। परंतु उनके इन विचारों को अन्य राजनीतिक दल के तात्कालिक नेताओं ने अन्यथा रूप से प्रचारित प्रसारित किया और उसके बाद 1946 में मुस्लिम लीग ने जंग की राह पकड़ ली और कलकत्ता में भयंकर बर्बरतापूर्व अमानवीय मारकाट भी हुई। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार की भारत विभाजन की गुप्त योजना और षड्यंत्र को एक कांग्रेस के नेताओं ने अखंड भारत संबंधी अपने वादों को ताक पर रखकर स्वीकार कर लिया। उस समय डॉक्टर मुखर्जी ने बंगाल और पंजाब के विभाजन की मांग उठाकर प्रसारित पाकिस्तान का विभाजन कराया और आधा बंगाल और आधा पंजाब खंडित भारत के लिए बचा लिया। दोस्तों, राष्ट्र हितों की प्रतिबद्धता को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता मानने के कारण उन्होंने मंत्रिमंडल से भी त्याग पत्र दे दिया था और उन्होंने एक नई पार्टी बनाई जो उस समय विरोधी पक्ष के रूप में सबसे बड़ा दल था। अक्टूबर 1951 में भारतीय जनसंघ का उत्थान हुआ। दोस्तों, मुखर्जी जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाना चाहते थे। उस समय जम्मू कश्मीर का अलग झंडा, अलग संविधान था और संसद में अपने भाषण में डॉक्टर मुखर्जी ने धारा 370 को समाप्त करने की भी जोरदार वकालत की थी। दोस्तों, हम कह सकते हैं अपने संकल्प पूरा करने के लिए संकल्प को वे 1953 में बिना परमिट लिए जम्मू कश्मीर की यात्रा पर भी निकल पड़े और यहाँ पर पहुँचते ही उन्हें गिरफ्तार करके नज़रबंद कर लिया गया। 23 जून 1953 को रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई।
मतलब एक महान शिक्षाविद, चिंतक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक हमारे बीच नहीं रहे। दोस्तों, ये थे महान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आइए अब हम चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे दिल फिल्म का गीत उदित नारायण और साधना सरगम की आवाजों में। अब हम बात कर रहे हैं एक भारतीय राजनेता और भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री और एक महान स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता संविधान सभा के सदस्य जगजीवन राम के बारे में, जी हाँ, जिन्हें सहपूर्ण रूप से बाबूजी भी कहा जाता था। दोस्तों बाबू जगजीवन राम के जीवन के कई पहलू हैं, उनमें से ही एक है भारत में संसदीय लोकतंत्र के विकास में उनका अमूल्य योगदान। जी हाँ, 28 साल की उम्र में ही 1936 में उन्हें बिहार विधान परिषद का सदस्य नामांकित कर दिया गया, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 1937 में चुनाव हुए तो बाबूजी जो है डिप्रेस्ड क्लास लीग के उम्मीदवार के रूप में निर्विरोध MLA चुने गए। अंग्रेज बिहार में अपनी पिट्ठू सरकार बनाने के प्रयास में थे, उनकी कोशिश थी कि बाबूजी को लालच देकर अपने साथ मिला लिया जाए, उन्हें मंत्री पद और पैसे का लालच भी दिया गया, लेकिन जगजीवन राम ने अंग्रेजों का साथ देने से साफ इनकार कर दिया। उसके बाद ही बिहार में कांग्रेस की सरकार बनी जिसमें वो मंत्री बने और साल भर के अंदर ही अंग्रेजों के गैर जिम्मेदार रुख के कारण महात्मा गांधी की सलाह पर कांग्रेस सरकार ने इस्तीफा दे दिया। बाबूजी इस काम में सबसे आगे थे, पद का लालच उन्हें छू तक नहीं गया। बाद में महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में वो जेल भी गए। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की तो बाबूजी भी वहीं थे और तय योजना के अनुसार उन्हें बिहार में आंदोलन को तेज करना था, लेकिन 10 दिन बाद ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी अगर शिक्षा के बारे में बात की जाए तो बाबूजी ने वर्ष 1920 में आरा स्थित अग्रवाल विद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु प्रवेश भी लिया। आयु वृद्धि के साथ ही उनमें परिपक्वता का भी समावेश हो रहा था। दोस्तों उनकी विदेशी भाषाओं को समझने और सीखने की जिज्ञासा के बल पर उन्होंने अंग्रेजी में निपुणता हासिल की और साथ ही साथ मानवीय श्री बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ की मूल पुस्तक जो कि बंगाली में लिखित है उसको भी पढ़ने के लिए बंगाली तक सीख गए। वे अंग्रेजी और बंगाली के साथ साथ हिंदी और संस्कृत में भी माहिर थे। 1925 में पंडित मदन मोहन मालवीय जब आरा पधारे तो वे युवा जगजीवन के व्यापक ज्ञान और सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को देख कर अचंभित रह गए। उन्हें तभी आभास हो गया था कि ये किशोर भविष्य में देश की आज़ादी और निर्माण राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा सकता है। उन्होंने युवा जगजीवन से स्वयं मुलाकात की और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आने का निमंत्रण भी दिया। दोस्तों

राजनीति जीवन की अगर उनकी बात करें कि राजनीति जीवन में उनका शंखनाद कैसे हुआ, तो बाबू जगजीवन राम की राजनीतिक जीवन का आगाज जो है वो कलकत्ता से ही हुआ। जी हाँ, कलकत्ता आने के 6 महीनों के भीतर ही उन्होंने विशाल मजदूर रैली का आयोजन किया, जिसमें भारी तादाद में लोगों ने हिस्सा भी लिया। और इस रैली से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी को भी बाबूजी की कार्यक्षमता और नेतृत्व क्षमता का आभास हो गया। और इस काल के दौरान बाबूजी ने वीर चंद्रशेखर आजाद और सिद्धार्थ से लेकर मन्मथनाथ गुप्त जैसे विख्यात स्वतंत्रता विचारकों के साथ काम भी किया। दोस्तों, जब 1934 में संपूर्ण बिहार भूकंप की तबाही से पीड़ित था, तब बाबूजी ने बिहार की मदद और राहत कार्य के लिए अपने कदम भी बढ़ाए। बिहार में ही पहली बार उनकी मुलाकात उस काल के सबसे महत्वपूर्ण प्रभावशाली अहिंसावादी स्वतंत्रता सेनानी माननीय श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी, यानी कि हमारे बापू महात्मा गांधी से हुई। और महात्मा गांधी जी ने बापू जगजीवन राम के राजनीतिक जीवन में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई, क्योंकि बाबूजी ये जानते थे कि पूरे भारतवर्ष में केवल एक ही स्वतंत्रता सेनानी ऐसा है जो स्वतंत्रता और पिछड़े वर्गों के विकास दोनों के लिए लड़ रहा है, और वो थे गांधी जी। दोस्तों, इसके बाद जो है उन्होंने इसमें कई कदम बढ़ाए राजनीति के क्षेत्र में। और बाबूजी के बारे में अगर और बात की जाए, तो वर्ष 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित प्रथम लोकसभा में बाबूजी ने श्रम मंत्री के रूप में देश की सेवा की, और अगले 3 दशकों तक कांग्रेस मंत्रिमंडल की शोभा बढ़ाई। इस महान राजनीतिज्ञ ने भारतीय राजनीति को अपने जीवन के 50 वसंत से भी अधिक दान दिए। संविधान के निर्माणकर्ताओं में से एक बाबूजी ने सदैव सामाजिक न्याय को सर्वोपरि माना है। पंडित नेहरू का बाबूजी के लिए एक विख्यात कथन कुछ इस प्रकार है, समाजवादी विचारधारा वाले व्यक्ति को देश की साधारण जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठाने में बड़े से बड़ा खतरा उठाने में कोई हिचक नहीं होती। श्री जगजीवन राम उनमें से एक ऐसे महान व्यक्ति है। श्रम, रेलवे, कृषि, संचार और रक्षा, जिस भी मंत्रालय का दायित्व बाबूजी को दिया गया, उसका सदैव कल्याण ही हुआ है। बाबूजी ने हर मंत्रालय से देश को तरक्की पहुंचाने का अथक प्रयास किया है। स्वतंत्र देश घोषित होने के उपरांत भारत के निर्माण की पूरी जिम्मेदारी नई सरकार पर थी। इस जिम्मेदारी को पूरा करने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान जो अगर किसी का रहा है, तो वो बाबूजी का रहा है। श्रम मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया, और बाबूजी तो यूं कहें कि संसद को अपना दूसरा घर मानते थे। जी हाँ, वर्ष 1952 में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने सासाराम से निर्वाचित बाबू जगजीवन राम को संचार मंत्री की उपाधि दी थी। मतलब सबसे पहले श्रम मंत्री के रूप में, फिर संचार मंत्री के रूप में, रेल मंत्री के रूप में, मतलब विविध मंत्रालयों में बाबूजी ने अपना योगदान दिया। इसके अलावा दोस्तों, बाबूजी ने दिसंबर 1985 में बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अपनी माँ के समान बताया, और इसकी सेवा में सदैव आगे भी रहे। मतलब कांग्रेस के आधार स्तंभ के रूप में भी बाबूजी को जाना जाता है। और इनके अगर व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए दोस्तों, तो अगस्त 1933 में इनकी पहली पत्नी संक्षिप्त बीमारी के बाद मृत्यु हो गई उनकी, और जून 1935 में उनका विवाह कानपुर के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर बीरबल की बेटी इंद्राणी देवी से हुआ। दोस्तों, 6 जुलाई 1986 यानी आज ही के दिन जो है बाबूजी ने अपनी अंतिम श्वास ली। बाबूजी ने सदैव निडरता पूर्वक अन्याय का सामना किया। साहस, ईमानदारी, ज्ञान और अपने अमूल्य अनुभव से सदैव देश की भलाई की। वे स्वतंत्र भारत के उन महान नेताओं में से एक थे जिन्होंने दलित समाज की दशा बदल दी और एक नई दिशा उन्हें प्रदान की। इन्होंने सदा एक ही चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, सदा अपराजित ही रहे। बाबू जगजीवन राम जी ने वर्ष 1936 से वर्ष 1986 तक, मतलब आधी शताब्दी तक, राजनीति में सक्रिय रहने का विश्व कीर्तिमान भी स्थापित किया। चलिए दोस्तों, अब हम फिर से चल रहे हैं गीतों भरी दुनिया में और सुन रहे हैं ये गीत।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में बरसात फिल्म का ये गीत। तो आज है सोमवार और समय हो चला है हमारे विशेष कार्यक्रम करंट अफेयर्स का।

करंट अफेयर्स यानी कि जो हाल फिलहाल हमारे आसपास घटित घटनाएं हो रही है या फिर जिसके बारे में हमें कोई तरह की जानकारी नहीं है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाए, यानी कि हमारा जनरल नॉलेज जो है वो बढ़ जाए। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो है जुलाई के महीने की, अभी चल रहा है तो करंट अफेयर्स अभी के लेते हैं। और फिलहाल बात कर रहे हैं हर साल 1 जुलाई को भारत में एक राष्ट्र एक कर प्रणाली जीएसटी के लागू होने की याद में जीएसटी दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, इसीलिए हर साल 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई 2026 से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी कि विकसित भारत जी राम जी अभियान 2025 के जो ये एक्ट लागू हुआ है नया, और उसमें अधिनियम 2025 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गारंटीकृत मजदूरी रोजगार जो है 150 दिन का कर दिया गया है। और इस 1 जुलाई केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2026 को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत राष्ट्रीय औषधि रजिस्ट्री लॉन्च की है। यहाँ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा में एपीडीएम के तहत नेशनल ड्रग रजिस्ट्री लॉन्च की, और इसका मकसद दवाओं की यूनिक आईडी बनाना, अस्पतालों फार्मेसियों में इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ाना और नकली दवाओं को रोकना है। दोस्तों, भारत और सऊदी अरब ने 1 जुलाई 2026 को जल संसाधन प्रबंधन पर एमओयू साइन किया। जी हाँ, इसमें सिंचाई, भूजल संरक्षण, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और एडवांस तकनीक भी शामिल है। दोस्तों, सीबीडीटी के नए अध्यक्ष रवि अग्रवाल बने। जी हाँ, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रवि अग्रवाल को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारत के 31वें आर्मी चीफ धीरज सेठ बने। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को भारत का 31वां सेना प्रमुख नियुक्त किया गया। मध्य प्रदेश की छतरिया धान फसल को 2026 में जीआई टैग मिला। जी हाँ, एमपी की पारंपरिक फसल छतरिया धान को कृषि विरासत बचाने के लिए जीआई टैग 2026 दिया गया। दिल्ली सरकार ने ईवी नीति 2.0 में अप्रैल 2028 से सभी नई दोपहिया वाहन इलेक्ट्रिक हो के अनिवार्य किया है। जी हाँ, दिल्ली सरकार ने ईवी पॉलिसी 2.0 मंजूर की। अप्रैल 2028 से दिल्ली में रजिस्टर होने वाले सभी नए दोपहिया वाहन सिर्फ इलेक्ट्रिक होंगे। दो जुलाई को विश्व खेल पत्रकारिता दिवस जो है वो मनाया जाता है। जी हाँ, हर साल 2 जुलाई को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाया जाता है। 1924 में पेरिस में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन

AIPS की स्थापना इसी दिन हुई थी। खेल और पत्रकारिता के योगदान को सम्मान देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। 2 जुलाई 2026 को केंद्र सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना का विस्तार किया। जी हां, सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना को 2026 में 5 लाख और कारीगरों तक बढ़ाया है। बढ़ई, लुहार, कुम्हार जैसे 18 पारंपरिक कारीगरों को 3 लाख तक बिना गारंटी लोन प्लस स्किल ट्रेनिंग भी मिलेगी। 2 जुलाई 2026 को भारत ने इजराइल देश के साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी समझौता साइन किया। जी हां, DRDO इजराइल एयर स्पेस इंडस्ट्रीज के बीच ड्रोन प्लस एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर नया समझौता हुआ, जिसका मकसद मेक इन इंडिया के तहत संयुक्त निर्माण है। 2 जुलाई 2026 को RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक से लोन जो उन्होंने लिया था उसे अप्रूव करवाया है। और राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस की अगर हम बात करें तो भारत में डॉक्टर दिवस मनाया गया और इसमें 2 जुलाई को फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन टीम के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसका फोकस रहा ग्रामीण स्वास्थ्य। जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश राज्य ने मुख्यमंत्री युवा स्टार्टअप योजना 2.0 लॉन्च की। जी हां, यूपी सीएम ने लखनऊ में योजना 2.0 लॉन्च की। 18 से 40 साल के युवाओं को स्टार्टअप के लिए 10 लाख रुपए तक सब्सिडी लोन प्लस 3 साल टैक्स छूट और इसका टारगेट है 1 लाख स्टार्टअप तक। जी हां, और इसके बाद हम बात कर रहे हैं गरुड़ 7 वायुसेना अभ्यास की। 2 जुलाई 2026 को भारत और फ्रांस देश के बीच जो है यह अभ्यास शुरू हुआ। जोधपुर एयरबेस पर भारत फ्रांस का द्विपक्षीय गरुड़ 7 अभ्यास शुरू हुआ और भारतीय राफेल प्लस फ्रेंच राफेल ने हिस्सा भी लिया और इसका सबसे जरूरी फोकस रहा एयर टू एयर कॉम्बैट। 2 जुलाई 2026 को मनीषा कल्याण फीफा महिला फुटबॉल रैंकिंग में भारत की कप्तान बनी। AIFF ने मनीषा कल्याण को भारतीय महिला फुटबॉल टीम की नई कप्तान नियुक्त किया। वो यूरोप में खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर भी है। AI संचालित न्यायालय की बात करें तो 2 जुलाई 2026 को भारत का पहला AI संचालित न्यायालय गांधीनगर गुजरात में शुरू हुआ। गुजरात हाईकोर्ट ने गांधीनगर में भारत का पहला AI कोर्ट पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। AI केस फाइलिंग, ट्रांसलेशन और जजमेंट ड्राफ्टिंग में मदद भी करेगा और केस निपटान तेज होगा। दोस्तों, विश्व प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, जी हां, जो कि हर साल 3 जुलाई को मनाया जाता है, वर्ल्ड प्लास्टिक बैग फ्री डे। मकसद ये रहता है इसका कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैग के नुकसान के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए और कपड़े जूट बैग का उपयोग बढ़ाना। और भारत ने 2022 से यूं कहें कि 120 माइक्रोन प्लास्टिक पर बैन भी लगाया था। जुलाई 2026 को भारत सरकार ने नेशनल AI मिशन के तहत 25 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की घोषणा की। इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय ने हेल्थ, एग्रीकल्चर, शिक्षा में AI रिसर्च के लिए 25 AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है। 3 जुलाई 2026 को सोनम वांगचुक भारतीय को यूनेस्को शांति पुरस्कार 2026 मिला। लद्दाख के इंजीनियर सोनम वांगचुक को आइस स्तूपा तकनीक से ग्लेशियर और पानी बचाने के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार मिला। पहाड़ी इलाकों में जल संकट का समाधान जो है वो उन्होंने निकाला है। 3 जुलाई 2026 को भारत और थाईलैंड देश के बीच मैत्री 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास भी शुरू हुआ। जी हां, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत थाईलैंड का मैत्री 2026 अभ्यास शुरू हुआ और ये अभ्यास का फोकस रहेगा आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन और जंगल फायर वॉरफेयर पर। 3 जुलाई 2026 को मध्य प्रदेश ने ड्रोन दीदी योजना लॉन्च की। जी हां, MP सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए ड्रोन दीदी 2.0 लॉन्च की।
5,000 महिलाओं को कृषि में ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग और इसी के साथ 15 लाख का सब्सिडी ड्रोन भी मिल रहा है। दोस्तों इसके साथ बात करें अगर विश्व बायोडाटा दिवस के बारे में, जी हाँ 3 जुलाई 2026 को विश्व बायोडाटा दिवस मनाया गया और इसकी थीम रही इस बार अनलॉकिंग डाटा ऑफ बेटर हेल्थ। यूएन ने इसकी थीम रखी। भारत ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हेल्थ डेटा एक्सचेंज पोर्टल लॉन्च किया ताकि डॉक्टर मरीज का रिकॉर्ड तुरंत देख सके। 3 जुलाई 2026 को भारत ने सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार 2026 दिया। बैडमिंटन डबल्स जोड़ी सात्विक चिराग को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2026 मिला। एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्हें गोल्ड भी मिला, इसी के लिए इन्हें जो है ध्यानचंद खेल रत्न 2026 दिया गया। दोस्तों 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस है ये मनाया जाता है। जी हाँ हर साल 4 जुलाई को यूएसए अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। 1776 में इसी दिन अमेरिका ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता की घोषणा की थी और यूएसए की 250वीं वर्षगांठ फ्रीडम 250 सेलिब्रेशन भी हुआ था। 4 जुलाई 2026 को भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया 2.0 के तहत डिजिटल लॉकर 2.0 लॉन्च किया है। जी हाँ मेटवाई ने डिजिटल लॉकर का नया वर्जन लॉन्च किया। इसमें एआई बेस्ड डॉक्यूमेंट सर्च 15 भाषाओं में सपोर्ट और बैंक यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट डेटा लिंक होगा और 50 करोड़ यूजर टारगेट भी रखा गया है इसका। 4 जुलाई 2026 को भारत ने ताइवान देश के साथ सेमीकंडक्टर समझौता भी साइन किया। जी हाँ भारत ताइवान ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च पर एमओयू किया। गुजरात के धोलेरा में ताइवान की कंपनी के साथ चिप फैक्ट्री भी लगेगी और इससे मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा। 4 जुलाई 2026 को विश्व फुटबॉल दिवस भी मनाया जाता है और इस वर्ष इसकी थीम रही वन गेम वन वर्ल्ड। फीफा ने थीम रखी है और भारत में EIFF ने स्कूलों में फुटबॉल फॉर गर्ल्स अभियान शुरू किया जिसका टारगेट 2030 तक महिला फुटबॉल में टॉप 50 तक रखना है। 4 जुलाई 2026 को राजस्थान राज्य ने मुख्यमंत्री सौर कृषि योजना भी शुरू की। जी हाँ राजस्थान सरकार ने किसानों के खेतों में सोलर पंप प्लस सोलर ग्रिड लगाने की योजना शुरू की। किसान बिजली बेचकर सालाना 1 लाख रुपए तक कमा सकेंगे। 4 जुलाई 2026 को भारत और अमेरिका देश का सिंधु 2026 नौसेना अभ्यास जो है वो भी खत्म हुआ। अरब सागर में 7 दिन चला सिंधु 2026 अभ्यास अब खत्म हो गया है। INS विक्रमादित्य प्लस US कैरियर USS निमित्त शामिल और समुद्री सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास इसमें हुआ। दोस्तों 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया और हर साल जुलाई के पहले शनिवार को इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव मनाया जाता है और 2026 में से 5 जुलाई को मनाना पड़ा और इसकी थीम रही कोऑपरेटिव फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भारत में अमूल इफको जैसी सहकारी समितियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। 5 जुलाई 2026 को भारत ने जर्मनी देश के साथ ग्रीन हाइड्रोजन समझौता साइन किया। जी हाँ भारत जर्मनी ने ग्रीन हाइड्रोजन पर एमओयू किया और जर्मनी भारत में ग्रीन हाइड्रोजन खरीदेगा और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को इससे बूस्ट प्राप्त होगा। 5 जुलाई 2026 को विश्व जैव ईंधन दिवस भारत सरकार ने इसकी घोषणा की बायो CNG सब्सिडी के तहत। जी हाँ पेट्रोलियम मंत्रालय ने कचरे से बनने वाले बायो CNG प्लांट पर 40% कैपिटल सब्सिडी की घोषणा की। 2026 तक 5,000 प्लांट टारगेट रखा है और स्वच्छ ईंधन प्लस किसान की आय का टारगेट रहेगा। 5 जुलाई 2026 को विश्व चिड़ियाघर और एक्वेरियम दिवस जो है वो भी मनाया गया। वाजा ने थीम रखी इसकी कनेक्टिंग पीपल विद नेचर। जी हाँ भारत ने 5 जुलाई को 10 नए जैव विविधता पार्क बनाने की घोषणा भी की। दिल्ली मुंबई जयपुर में बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो शुरू किए जाएंगे।
5 जुलाई 2026 को फोर्ब्स की 30 अंडर 30 एशिया 2026 लिस्ट में भारत से सबसे ज्यादा एआई और टेक फील्ड के लोग थे। जी हाँ, इस लिस्ट में भारत से 45 लोग हैं, सबसे ज्यादा 18 लोग एआई स्टार्टअप और डीप टेक से। भारत एआई हब बन रहा है। छह जुलाई यानी कि आज ही के दिन 2026 भारत सरकार ने नेशनल डीप सी मिशन के तहत समुद्र यान लॉन्च किया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 6000 मीटर गहराई तक जाने वाला मानव युक्त सबमर्सिबल समुद्र यान लॉन्च किया है। मिशन समुद्र में खनिज बायोडायवर्सिटी और क्लाइमेट स्टडी का है और ये 2026 तक इसका ट्रायल किया जाएगा। वाराणसी भारतीय शहर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा मिला है। जी हाँ, यूनेस्को ने वाराणसी को लिविंग हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया। घाट मंदिर संस्कृति और 5000 साल पुरानी सभ्यता के कारण भारत में अब 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा विशेष कार्यक्रम करंट अफेयर्स।

तो दोस्तों, ये था हमारा विशेष कार्यक्रम करंट अफेयर्स, और आज है विश्व जूनोसिस दिवस। जी हाँ, ये हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य जानवरों से इंसानों में फैलने वाली संक्रामक बीमारियों के खतरों और बचाव के प्रति जागरूकता फैलाना है। दोस्तों, ये दिन जो है फ्रांसीसी जीव विज्ञानी लुई पॉस्चर की याद में मनाया जाता है। जी हाँ, जिन्होंने 6 जुलाई 1985 को रैबिज का पहला सफल टीका बनाया था, जो कि एक जूनोटिक बीमारी भी है। दोस्तों, जूनोसिस और जूनोटिक, ये बीमारियां क्या है? जूनोसिस वे बीमारियां हैं या संक्रमण होते हैं जो प्राकृतिक रूप से जानवरों, पालतू, कृषि या जंगली किसी भी तरह के जो जानवर हैं उनसे इंसानों में फैलते हैं, और इन बीमारियों के कारण वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और परजीवी भी हो सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार इंसानों में होने वाली सभी संक्रामक बीमारियों में से लगभग 60% जूनोटिक होती है। मतलब प्रमुख जूनोटिक बीमारियों की अगर हम बात करें तो रैबिज है, और निपाह वायरस, इबोला, एंथ्रेक्स, बर्ड फ्लू, COVID-19, ये सभी बीमारियां जो है ये हम कह सकते हैं कि जूनोटिक बीमारियां रही। और अगर हमें इससे बचाव के बारे में बात करें कि किस तरीके से इसका हम बचाव कर सकते हैं इससे, तो जूनोटिक रोगों से बचाव के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ जो हैं उनसे हम सलाह ले सकते हैं, जैसे कि जानवरों को छूने के बाद हमेशा अपने हाथ साबुन और पानी से धोने चाहिए। कई लोगों के घरों में जो है पालतू जानवर होते हैं, चाहे वो कुत्ता है, बिल्ली है, किसी भी प्रकार का कोई भी जानवर है, तो सबसे ज़रूरी है कि आप अपने पालतू जानवरों का नियमित टीकाकरण करवाएं। जी हाँ, अगर किसी भी तरह का आपके जानवर को किसी भी तरह की कोई छोटी मोटी बीमारी हो रही है तो उन्हें तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, और नियमित रूप से अगर उनका वैक्सीनेशन होता रहेगा, टीकाकरण होता रहेगा, इंजेक्शन्स लगते रहेंगे, तो बीमारी होने का खतरा कम से कम हो जाता है। और जब भी आप किसी भी जानवर को छूते हैं तो उसके बाद में आपको साबुन से अच्छे से हाथ धोने बहुत ज़रूरी है। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें, अगर उसका हम ध्यान रखते हैं तो हम जो है इन बीमारियों से बच सकते हैं। जंगली जानवरों या उनके आवासों के पास जाने से भी हमें बचना चाहिए। कच्चे या अधपके मांस और बिना पॉस्चराइज्ड दूध का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जूनोटिक बीमारियाँ जो है उनसे बचने के लिए, जैसे कि अगर हमने बात की कि सबसे ज़रूरी यही है कि जानवरों से दूरी बना कर रखें, और हर वर्ष जो है इसकी एक थीम रखी जाती है। इस वर्ष की थीम है वन वर्ल्ड वन हेल्थ। जी हाँ, एक दुनिया एक स्वास्थ्य, जूनोसिस को रोकें। दोस्तों, ये दिन जानवरों से इंसानों में फैलने वाली संक्रामक बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और बचाव के उपायों पर जोर देने के लिए होता है।

कि कई बार जो है जानवरों से इंसानों में ऐसी बीमारियां फैल जाती है जिससे हम यूँ कह सकते हैं कि बचाव कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें इसलिए स्थानीय उपाय जो है वो अपनाना चाहिए, सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर है तो आप उसका टीकाकरण अवश्य करवाएं और उसकी नियमित रूप से साफ सफाई करते रहें, डॉक्टर से उसका चेकअप करवाते रहें, तो आप बीमारियों से बच सकते हैं। और इसके अलावा कई बार जो है स्ट्रीट के जितने भी जानवर होते हैं, हम बाहर देखते हैं, आवारा जो पशु घूमते हैं, उनसे भी हमें दूरी बना करके रखनी चाहिए। अगर गलती से अगर उन्हें हम टच कर लेते हैं, छू लेते हैं, तो हमें सबसे पहले हाथ साबुन से अपने धो लेने चाहिए ताकि हमें किसी प्रकार की भी बीमारी ना हो। तो ये दिवस जो है इसीलिए मनाया जाता है विश्व जुलूस दिवस, ताकि हम स्वास्थ्य के प्रति, इंसानों के स्वास्थ्य के प्रति, या यूँ कह सकते हैं जानवरों के स्वास्थ्य के प्रति सभी को सचेत कर सकें और जागरूक कर सकें। चलिए दोस्तों, हम फिर से चल रहे हैं गीतों भरी दुनिया में, सुन रहे हैं ये गीत।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे धूम फिल्म का ये गीत सुनिधि चौहान की आवाज़। अब हम बात कर रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। जी हाँ, वर्षा जल संचयन, बारिश के पानी को बहकर बर्बाद होने से बचाना और उसे भविष्य के उपयोग, या यूँ कह सकते हैं कि भूजल स्तर बढ़ाने के लिए इकट्ठा करने की एक ये तकनीक है। भविष्य के लिए उपयोग हम कैसे भी कर सकते हैं, उसे पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं, सिंचाई के लिए कर सकते हैं।

हैं, तो वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो कैसे होती है? रेन वाटर, तो रूफ टॉप हार्वेस्टिंग यानी कि छत आधारित संचयन भी होता है। इसमें घर या इमारत की छत पर गिरने वाले बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता है और छत से पानी को पाइपों के जरिए एक फिल्टर टैंक से गुजारा जाता है ताकि धूल मिट्टी अलग हो जाए, और उसके बाद जो है शुद्ध पानी को बड़े स्टोरेज टैंकों में जमा कर लिया जाता है। और भूजल पुनर्भरण, जी हाँ, यदि आप पानी को जमीन में उतारना चाहते हैं तो छत के पाइप को एक ऐसे सोखता गड्ढे में जोड़ा जाता है जो रेत, बजरी और पत्थरों से भरा होता है। इससे भूजल स्तर बढ़ता भी है। और दूसरा है सतही जल संचयन, जी हाँ, सरफेस जो है रन ऑफ हार्वेस्टिंग हम कर सकते हैं। इसमें जमीन की सतह पर बहने वाले बारिश के पानी को छोटे तालाबों, चेक डैम या फिर खाई में रोककर इकट्ठा किया जाता है, और ये कृषि और पशुओं के लिए बेहद उपयोगी होता है। तो सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की अब बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो गई है, क्योंकि पानी की कमी हर जगह है, हम सब जानते हैं। तो पानी की कमी से बचाव के लिए बहुत ज़रूरी है। भूमिगत जल जो है, ग्राउंड वाटर जो है, वो लगातार नीचे जा रहा है, जिसे रोकने में ये सबसे प्रभावी उपाय भी है। और घरेलू खर्च में भी कमी होगी, जी हाँ। संग्रहित किए गए पानी का उपयोग बागवानी में, गाड़ी धोने में, टॉयलेट फ्लश में करके आप फ्रेश पानी और बिजली दोनों बचा सकते हैं, क्योंकि पानी खींचने वाले पंप जो हैं वो बिजली बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो वो भी हम बचा सकते हैं। और इससे हम यूँ कह सकते हैं कि बाढ़ से भी बचाव होता है, क्योंकि बारिश का पानी सड़कों पर जमा होने लगता है तो उससे हम बहने से रोक सकते हैं। और इसके लिए सबसे ज़रूरी, अगर रख रखाव की बात करें, सावधानियाँ क्या रख सकते हैं, तो छत की सफाई जो है वो बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, बारिश शुरू होने से पहले अपनी छत और पाइपों को अच्छी तरह से साफ कर लें ताकि पानी के साथ कचरा न जाए। और पानी को टैंक या जमीन में भेजने से पहले जो आप फिल्टर उपयोग कर रहे हैं, जो जाली आप उपयोग कर रहे हैं, चारकोल रेत जो है उस फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे भी आप साफ रखें। और अगर आप उस पानी को पीने के लिए उपयोग कर रहे हैं तो पानी को उबालें जरूर। यदि आप पीने के लिए छत के पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे हमेशा बॉइल करके या फिल्टर करके ही पीना चाहिए। तो पानी बचाने और अपने घर की छत पर रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये सब हम अपने तरीके से कर सकते हैं और ये बहुत ही आसान है। और इसे हम कह सकते हैं कि अभी आज के जीवन में, ये आधुनिक जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पानी की कितनी ज़्यादा कमी हो रही है। कैच द रेन, भारत सरकार जो है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है एक प्रमुख जल अभियान है, और इसकी टैगलाइन है कैच द रेन, जहाँ गिरे जब गिरे। मतलब आप पानी का जितना हो सकता है संचय कर दीजिए, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वर्षा जल संचय संचयन जो है वो अभी की ज़रूरत आन पड़ी है, और अभी बारिश का मौसम जो है अब शुरू हो गया है, तो अब जैसे बरसातें आ रही है तो आप उस पानी का उपयोग जो है कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए। चलिए दोस्तों, अब हम फिर से चल रहे हैं गीतों की दुनिया में और सुन रहे हैं गीत।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में हम है राही प्यार की फिल्म का ये गीत। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अपनी दोस्त मनीषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी जैसलमेर के गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस।

मंडप में श्री राम और सीता का विवाह संपन्न हो चुका है। दूल्हा दुल्हन अब एक आसन पर बैठे हैं। पुत्र के विवाह संस्कार के साथ पिता के मन में अपने वंश वृक्ष के फूलने फलने की कल्पना मूर्त रूप धारण करने लगती है। वशिष्ठ मुनि की आज्ञा पाकर राजा जनक ने अन्य कन्याओं मांडवी श्रुतकीर्ति तथा उर्मिला को मंडप में बुलवाया। कुशध्वज की ज्येष्ठ कन्या मांडवी, जो गुण शील सुख और शोभा की प्रतिमूर्ति थी, पूरे विधि विधान के साथ राजकुमार भरत को ब्याही गई। उसी प्रकार उर्मिला का ब्याह लक्ष्मण से हुआ। सुंदर नेत्रों वाली श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न की भार्या बनी। अपने चारों पुत्रों को वधुओं सहित देखकर अवध नरेश ऐसे आनंदित हो रहे हैं मानो उन्होंने यज्ञ श्रद्धा योग तथा ज्ञान इन चार राजसी क्रियाओं द्वारा अर्थ धर्म काम और मोक्ष प्राप्त कर लिया हो।

आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है एफएम बैंड 101.8 मेगा हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

जीवन गति अनजानी चलता जो रुख देख हवा का वो ही सच्चा ज्ञानी।

आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, शाम के 6:30 होने को है।

मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन से सहकारिता के क्षेत्र में व्यापक विस्तार हुआ। करौली जिले के पांचना बांध में गंभीरी नदी और कमांड क्षेत्र के नहरों में पानी छोड़ने की शुरुआत हुई। राज्य में गंभीर अपराधों से 4% की कमी। डीजीपी राजीव शर्मा ने पुलिस की उपलब्धियों का ब्यौरा पेश किया। और प्रदेश के 13 जिलों में कल बरसात का ऑरेंज और 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। देश में सहकारिता के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है और समृद्धि का रास्ता खुला है। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन से सहकारिता के क्षेत्र में व्यापक विस्तार हुआ है। श्री शाह सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 5 सहकारी समितियों को

0: मान्यता देने के लिए रैंकिंग ढांचा घोषित किया गया है। सहकारी बैंक आज करीब 27 लाख करोड़ रुपए का कारोबार करते हैं। ये देश की अर्थव्यवस्था में सहकारिता के बढ़ते योगदान को दर्शाता है। गृहमंत्री ने कहा कि राज्यों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की गतिविधियों को बढ़ाकर उन्हें मजबूत किया जा रहा है।
1: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: श्री शाह ने कार्यक्रम में जयपुर के सुमेल गांव में सहकार वन परियोजना का वर्चुअल शुभारंभ किया। इसमें 64 एकड़ जमीन पर सहकार वन विकसित किया जाएगा, जिसमें खेजड़ी, रोहिड़ा और नीम के पेड़ लगाए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बनी है। सहकार से समृद्धि के मंत्र के साथ प्रदेश में हर गाँव और ढाणी में सहकारिता आंदोलन पहुंचा है। राज्य की 42,000 से अधिक सहकारी समितियों से 1,35,00,000 से ज्यादा सदस्य जुड़े हैं। वहीं सहकार सदस्यता अभियान के तहत 8,90,000 से अधिक नए सदस्य जोड़े गए हैं।
2: सहकारिता से जुड़ी जानकारियों को राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध करवाया। आपने देश को सहकार से समृद्धि का एक ऐसा मंत्र दिया जिसने देश के गाँव, गरीब, किसान, मजदूर की तकदीर बदलने का काम किया है। इसी वजह से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भारत में सहकारिता और डेयरी सेक्टर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई शक्ति दे रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंचे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी इंडोनेशियाई राष्ट्रपति के साथ दोनों देशों के बीच आपसी साझेदारी पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी जकार्ता में प्रवासी भारतीय समुदाय की सभा को भी संबोधित करेंगे। 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया प्रवास पर रहेंगे। इसके बाद वे न्यूजीलैंड भी जाएंगे। करौली जिले के पांचना बांध से आज गंभीरी नदी और कमांड क्षेत्र की नहरों में पानी छोड़ा गया। इससे किसानों का लगभग 20 साल लंबा इंतजार समाप्त हुआ और अब उन्हें सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा। इस अवसर पर हुए कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बैडम ने 2 नई पीडीएन आधारित लिफ्ट परियोजनाओं और गुडला लिफ्ट योजना की आधारशिला रखी। इस मौके पर जल संसाधन मंत्री श्री रावत ने कहा कि इससे सिंचाई व्यवस्था मजबूत होगी और क्षेत्र के किसानों को फायदा मिलेगा।
3: निश्चित रूप से हमारा जो पांचवा बांध है, इस पे लाखों लोगों की आस्था है, कई लोगों के आजीविका का उपार्जन का एक साधन है, तो निश्चित रूप से 5 नदियों के इस संगम और तीर्थ स्थली पर्यटक के रूप में भी विकसित हम करेंगे। तो आज ये 61 करोड़ की परियोजना आज हमने इसका शिलान्यास किया और मेरे विभाग के अधिकारी इंजीनियर्स को मैंने डायरेक्शन दिए कि तय सीमा पे पूरी हो और गुणवत्ता से पूरी हो और सभी पक्षों ने शांतिपूर्ण तरीके से हमारा सहयोग किया।
0: गौरतलब है कि पांचना बांध के पानी के बंटवारे को लेकर लंबे समय से कमांड और गैर कमांड क्षेत्र के किसानों के बीच विवाद था, जिसे लेकर दोनों पक्षों ने आंदोलन भी किए। राज्य सरकार ने दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों से बातचीत कर आपसी सहमति से समझौता करवाया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने आज जयपुर में प्रेस वार्ता कर पुलिस की उपलब्धियां बताई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गंभीर अपराधों में 4% से अधिक की कमी आई है। वहीं पेपर लीक माफिया पर प्रभावी कार्यवाही, नशा तस्करों और संगठित अपराध के खिलाफ सख्त अभियानों ने प्रदेश में पुलिसिंग को नई पहचान दी है। राजस्थान पुलिस अकादमी में हुई इस प्रेस वार्ता में पुलिस महानिदेशक ने पुलिस कार्य प्रणाली का पिछले 6 महीनों का लेखा जोखा पेश किया। उन्होंने कहा कि अपराधों की मदद से संपत्ति अर्जित करने वालों को आर्थिक लाभ से वंचित करने के प्रयास तेज किए जाएंगे। साइबर धोखाधड़ी और नारकोटिक्स का जिक्र करते हुए पुलिस महानिदेशक ने इस क्षेत्र की चुनौतियों को देखते हुए और तेजी से काम करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि इसके लिए स्मार्ट पुलिसिंग पर जोर दिया जाएगा। डीजीपी ने बताया कि महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में जांच को तेज किया गया है। पॉक्सो के तहत दर्ज प्रकरणों में पुलिस का औसत अनुसंधान समय 78 दिन से घटकर 51 दिन और दुष्कर्म के मामलों में 81 दिन से कम होकर 52 दिन रह गया है।
4: महिला सुरक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बड़ी प्राथमिकता रही है, उसमें और अधिक कार्य करने की दृष्टि से हम सबसे पहले जयपुर शहर में एक सर्वेक्षण कराएंगे महिला सुरक्षा को लेकर, और उसके आधार पे जहाँ पे हमें और अधिक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी उसको हम करेंगे। साथ ही साथ इसी तरह का समान कार्रवाई अन्य बड़े शहरों से प्रारंभ करके हम हर डिस्ट्रिक्ट में अपने पुलिस अधीक्षक गणों के माध्यम से कराना चाहेंगे।
0: प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक और शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समूचा देश उन्हें याद कर रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अपने निवास पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर श्री शर्मा ने प्रदेश के 4 प्रमुख पार्कों का नाम श्री मुखर्जी के नाम पर करने और उनके आदर्शों को समर्पित स्मारक स्थापित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने जयपुर स्थित वुडलैंड पार्क, जोधपुर के विवेक विहार स्थित सेंट्रल पार्क, कोटा के रामचंद्रपुरा अटवाल नगर स्थित पार्क तथा उदयपुर की सेक्टर 12 योजना के पार्क का नामकरण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किए जाने का ऐलान किया। साथ ही इन सभी स्थानों पर राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को प्रदर्शित करने वाले स्मारक भी बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल प्रदेशवासियों को, विशेष रूप से नई पीढ़ी को, श्री मुखर्जी के आदर्शों और विचारों से जोड़ेगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के मौके पर प्रदेश में अनेक स्थानों पर पौधरोपण और पुष्पांजलि कार्यक्रम रखे गए। जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में डॉक्टर श्यामा मुखर्जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर संगोष्ठी रखी गई। पूर्वी भारत में हवाओं के कम दबाव से राज्य के पूर्वी हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक मॉनसून सक्रिय रहने के आसार हैं। इस दौरान अधिकतर भागों में हल्की से मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। 9 जुलाई तक उदयपुर और कोटा संभाग तथा आसपास के क्षेत्र में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बरसात की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में गरज के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। उधर जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी अगले 2 दिनों में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। विभाग ने कल तेज हवाओं और गरज चमक के साथ 13 जिलों में बरसात का ऑरेंज और 20 जिलों में येलो अलर्ट बताया है। इस बीच आज तेज गर्मी और उमस के बाद बालोतरा में अच्छी बारिश हुई। जैसलमेर, बाड़मेर जिले के शिव तथा चौहटन में भी धूल भरी आंधी चली और कई इलाकों में तेज पानी बरसा। जालौर के आहोर, सायला, भीनमाल, बागोड़ा में तेज हवाओं के साथ रिमझिम बरसात हुई। झुंझुनू में भी तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश का दौर चला। उधर पाली और राजसमंद जिले के कुमलगढ़ में करीब 1 घंटा मूसलाधार बरसात हुई। जून महीने से अब तक बीकानेर, चूरू और डीडवाना कुचामन में असामान्य बरसात हुई है। वहीं 10 जिलों में अत्यधिक, 18 में सामान्य और 10 जिलों में सामान्य से कम पानी बरसा। प्रदेश के छोटे बड़े 693 बांधों में से 394 इस समय आंशिक रूप से भरे हुए हैं, वहीं 5 बांध पूरी तरह से भर गए हैं। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सड़क सुरक्षा को लेकर आज से प्रदेश में विशेष अभियान शुरू किया गया। प्राधिकरण के सदस्य सचिव हरिओम अत्री ने आज जयपुर में मीडिया से बातचीत में बताया कि ये अभियान 1 महीने तक चलेगा। सड़क हादसों की रोकथाम करने और यातायात नियमों की पालना के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए ये पहल की गई है। चूरू जिले के रावतसर कुंजला गांव में पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर धोखाधड़ी करते हुए 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 अलग अलग मकानों पर दी गई दबिश में आरोपियों के कब्जे से 90 मोबाइल फोन जब्त किए गए। पुलिस के अनुसार ये लोग पहले साइबर ठगी के बचाव के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करने की बात करते हैं। इसके बाद लोगों को झांसे में लेकर रुपए ऐंठने का काम कर रहे थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन से सहकारिता के क्षेत्र में व्यापक विस्तार हुआ। करौली जिले के पांचना बांध से गंभीरी नदी और कमांड क्षेत्र के नहरों में पानी छोड़ने की शुरुआत हुई। राज्य में गंभीर अपराधों में 4% की कमी, DGP राजीव शर्मा ने पुलिस की उपलब्धियों का ब्यौरा पेश किया। और प्रदेश के 13 जिलों में कल बरसात का ऑरेंज और 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से जैसलमेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं मनीष व्यास। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में पिछले दिनों मौसम के कई रंग देखने को मिले। भीषण गर्मी और उमस के बीच कल मॉनसून ने दस्तक दे ही दी। बारिश की फुहारों ने जिलेवासियों को कुछ राहत प्रदान की, लेकिन उमस के चलते लोग परेशान रहे। इससे पहले आंधी तूफान और बारिश ने बिजली विभाग को बड़ा नुकसान पहुंचाया। जिले में 1,500 से अधिक बिजली के खंभे गिर गए। बेमौसम की बरसात से 400 से अधिक गांवों और ढाणियों की बिजली की आपूर्ति बाधित हुई। जिले के रामगढ़ क्षेत्र में 20 किलोवाट क्षमता के FM स्टेशन का उद्घाटन केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा पिछले दिनों वर्चुअल रूप से किया गया। FM ट्रांसमीटर के लगने से सरहदी इलाकों के नागरिकों को आकाशवाणी के कार्यक्रमों की बेहतर गुणवत्ता के साथ विस्तारित कवरेज मिलेगी। साथ ही स्थानीय समाचारों, जनहितकारी योजनाओं, शैक्षणिक कार्यक्रमों और कृषि संबंधी जानकारी का प्रसारण प्रभावी रूप से सुनिश्चित हो सकेगा। ग्रामीण विकास को नई दिशा देने और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत जिले भर में ब्लॉक स्तर पर जनसम्मेलन आयोजित किए गए। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों की सहभागिता रही। पंचायत समिति जैसलमेर की रूपसी ग्राम पंचायत में जिला स्तरीय सम्मेलन रखा गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल सहित प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर रूपसी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पोषण वाटिका निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया गया। जिले के पर्यटन और रियल एस्टेट सेक्टर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए नगर विकास न्यास ने महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। मूल सागर क्षेत्र में प्रस्तावित योजना के तहत 142 फार्म हाउस भूखंडों और 46 व्यावसायिक दुकानों की खुली नीलामी की जाएगी। इस परियोजना से न केवल जिले में निवेश को बढ़ावा मिलेगा बल्कि पर्यटन और स्थानीय रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। UIT को इस परियोजना से 22 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व मिलने की संभावना है। जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान को लेकर पोलियो बूथों पर विशेष उत्साह देखने को मिला। अभियान के तहत श्री जवाहर चिकित्सालय में विधायक छोटू सिंह भाटी ने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पहले दिन वंचित रहे बच्चों को अगले 2 दिन तक घर घर जाकर स्वास्थ्य कर्मियों ने पोलियो रोधी दवा दी। विश्व पर्यटन मानचित्र पर अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाले जैसलमेर में पर्यटकों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जिला पुलिस ने विशेष पहल की है। इसके तहत स्वर्ण नगरी के होटलों में ठहरने वाले सभी मेहमानों का रिकॉर्ड अनिवार्य रूप से ई विजिटर्स पोर्टल पर दर्ज करवाना होगा। इसे लेकर बीते दिनों बैठक आयोजित कर होटल संचालकों को इस प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी दी गई। जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। शहर से लेकर सरहद तक योगा फॉर हेल्दी एजिंग थीम पर योगाभ्यास कार्यक्रम हुए। जिला स्तरीय कार्यक्रम शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में रखा गया। इसके अलावा शहर के पर्यटन स्थल सोनार किला और गढ़सीसर झील के साथ ही ब्लॉक और पंचायत स्तर पर भी कई कार्यक्रम हुए। नियमित और सुचारू पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए पिछले दिनों गजरूप सागर स्थित विभागीय परिसर में 5 नलकूपों का लोकार्पण किया गया। 55 लाख रुपए की लागत से बनाए गए इन नलकूपों के शुरू होने से जैसलमेर शहर की पेयजल व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और नागरिकों की पानी की समस्या भी दूर होगी। केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और उपलब्धियों को आम जन तक पहुंचाने के लिए पिछले दिनों नगर परिषद सभागार में जिला स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। 3 दिन की ये प्रदर्शनी 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के थीम पर आधारित रही। जिले के सूली डूंगर सनसेट पॉइंट को विकसित कर पर्यटन स्थल के तौर पर पहचान दी जाएगी। नगर परिषद ने इस स्थान को मॉल रोड की तर्ज पर विकसित करने की खास योजना शुरू की है। प्रोजेक्ट से नगर परिषद को हर साल 38.5 लाख रुपए का राजस्व मिलेगा। पर्यटकों के लिए जैसलमेर में सनसेट देखने का सूली डूंगर सबसे पसंदीदा स्थल है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी वाइब्रेंट विलेज योजना 2 के तहत अब जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों का कायाकल्प किया जा रहा है। योजना के तहत बॉर्डर पर बसे सुदूर गांवों को विकास और बुनियादी सुविधाओं के साथ जोड़ा जाएगा। गांवों में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसी तमाम आधुनिक सुविधाओं का एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। इसके तहत जिले के 30 गांवों का चयन किया गया है, जहां 3 करोड़ रुपए की राशि से ये विकास कार्य करवाए जाएंगे। इसके साथ ही जैसलमेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई। नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर रूपेश है प्रादेशिक समाचार। पहली आजरी खास खास खबरां। केंद्रीय मंत्री अमित शाह काया सुधार, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन सु सहकारिता हल्का माए घणो बढ़ावो भी हो है। करौली जिला रा पांचना बांसू गंभीर नदी और कमांड क्षेत्री नहरा माए पानी छोड़ बारी शुरुआत भी। राज्य माए गंभीर अपराध माए 4% बस्ती री कमी, डीजीपी राजीव शर्मा पुलिस री उपलब्धियां पेश करियो। और प्रदेश रा 13 जिला माए काल बरसात रो ऑरेंज और 20 जिला माए येलो अलर्ट जारी।

0: समाचार अरे सागे, मैं रचना पारीक और अब समाचार विगतवार। देश में सहकारिता रे मार्फत लाखों लोगारा जीवन में बदलाव आयो है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कया के सुधारा डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन सु सहकारिता हल्का माए घणो इजाफो बियो है। श्री शाह सहकारिता मंत्रालय रा पांचवा स्थापना दिवस रे मौके राख्या जलसा माए बोल रिया हा। वे कया के हरे खेतर माए बत्तो चोखो प्रदर्शन करबा वाली पांच सहकारी समितियां ने मान्यता देबा खातिर रैंकिंग ढांचो ऐलान करियो गयो है। सहकारी बैंक आज करीब 27 लाख करोड़ रुपया रो कारोबार करे है और देश री माली व्यवस्था माए सहकारिता रा बढ़ता योगदान ने दर्शावे है। गृह मंत्री कया के राज्य माए प्राथमिक कृषि ऋण समितियां पैक्स री गतिविधियां ने बढ़ार मजबूत करियो जा रियो है।
1: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवा।

0: सौ सिंचाई व्यवस्था मजबूत वेला और खेतर आकाशकारा ने फायदो वेला।
1: निश्चित रूप से हमारा जो पांचना बांध है इसपे लाखों लोगों की आस्था है, कई लोगों के आजीविका का उपार्जन का एक साधन है, तो निश्चित रूप से पांच नदियों के इस संगम और तीर्थ स्थली पर्यटक के रूप में भी विकसित हम करेंगे। तो आज ये 61 करोड़ की परियोजना आज हमने इसका शिलान्यास किया और मेरे विभाग के अधिकारी इंजीनियर्स को मैंने डायरेक्शन दिए कि तय सीमा पे पूरी हो और गुणवत्ता से पूरी हो और सभी पक्षों ने शांतिपूर्ण तरीके से हमारा सहयोग किया।
0: ध्यान जोग है कि पांचना बांधरा पानी रा बंटवारा बाबत लंबा टेमू कमांड और गैर कमांड हलकारा किसाना रे बीच विवाद चल रहे हो जिनने ले दोनों पक्ष आंदोलन भी करिया। राज्य सरकार दोनों पक्षारा नुमाइंदा सु बातचीत कर आपसी सहमति सु समझौतो करवायो। ये समाचार आप आकाशवाणी राज्यपुर अजमेर केंद्र सुन रिया हो। पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा आज जयपुर माए प्रेस वार्ता कर पुलिस उपलब्धियां बताई बना कया के प्रदेश माए गंभीर अपराध माए 4% सु बत्तीरी कमी आई है। पटी ने पेपर लीक माफिया माते कड़ी कार्यवाही नशा तस्कर और समूह माए करया गया अपराध रे खिलाफ करोड़ों अभियान प्रदेश की पुलिसिंग ने नई पहचान दी है। राजस्थान पुलिस अकादमी माए भी इन प्रेस वार्ता माए पुलिस महानिदेशक पुलिस कार्य प्रणाली रो लारला 6 मीनारो लोकपूज्य को पेश करियो है। मना कया कि अपराध री मदद सु संपत्ति इकट्ठी करबा वाला ने माली फायदा सु वंचित करबारी कोशिश तेज करी जा रही है। साइबर धोखाधड़ी और नारकोटिक्स रो जिक्र करता थका पुलिस महानिदेशक इन हलकारी चुनौती ने देखता थका और तेजी सु काम करबारी जरूरत बताई। वे कया के इन खातर स्मार्ट पुलिसिंग माते जोर दियो जावेला। डीजीपी बताया कि महिला सुरक्षा से जुड़िया मामला माए जांच ने तेज करियो गयो है। पोक्सो तहत दर्ज प्रकरण माए पुलिस री जांच री मियाद 78 दिन सु घटार 51 दिन और दुष्कर्म रा मामला माए 81 दिन सु घटार 52 दिन रहगी है। मना बताया कि साइबर अपराधारी रोकथाम और पीड़िता ने बेकी राहत देबा खातर बत्ती और प्रभावी कार्यवाही करी जा रही है।
2: महिला सुरक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बड़ी प्राथमिकता रही है, उसमें और अधिक कार्य करने की दृष्टि से हम सबसे पहले जयपुर शहर में एक सर्वेक्षण कराएंगे महिला सुरक्षा को लेकर और उसके आधार पे जहां पे हमें और अधिक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी उसको हम करेंगे। साथ ही साथ इसी तरह का समान कार्रवाई अन्य बड़े शहरों से प्रारंभ करके हम हर डिस्ट्रिक्ट में अपने पुलिस अधीक्षक गणों के माध्यम से कराना चाहेंगे।
0: प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक और शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती माते समूचो देश वाने याद करियो है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज अपरा रहवास माते वाने पुष्पांजलि अर्पित करी। इन मौके श्री शर्मा प्रदेश रा खास चार पारकारो नाम श्री मुखर्जी रा नाम माते करबा और वारा आदर्शाने समर्पित स्मारक स्थापित करबारो ऐलान करियो। मुख्यमंत्री जयपुरा वुडलैंड पार्क, जोधपुरा विवेक विहार रा सेंट्रल पार्क, कोटारा रामचंद्रपुरा अटवाल नगर रा पार्क और उदयपुरा सेक्टर 12 योजना रा पार्क रो नामकरण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रा नाम माथे करबारो ऐलान करियो। साथ ही इन सगली ठोड़ा माथे राष्ट्रगानियों मारा योगदान ने प्रदर्शित करबा वाला स्मारक भी बनाया जावेला। मुख्यमंत्री कया के पहली प्रदेशवासियों ने खास रूप नवी पीढ़ी ने श्री मुखर्जी रा आदर्शारा विचार सु जोड़िया जावेला। भारतीय जनसंघ रा संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी री 125वीं जयंती रे मौके प्रदेश में कई ठोड़ा माथे पौधा लगाया गया और पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया। पूर्वी भारत हवावारा कम दबाव सु राज्य रा पूर्वी हिस्सा माए आपदा 4-5 दिन ताई मानसून सक्रिय रह सके है। इन दौरान पत्ता हल्का माए हल्की सु मध्यम और कटे कटे भारी में बरस सके है।

0: जुलाई ताई उदयपुर और कोटा संभाग रे आरे सारे रा हल्का माए कटे कटे भारी सु घनी भारी बरसात रह सके है। मौसम महकमा रे मुजब आज अजमेर भरतपुर बीकानेर जोधपुर और जयपुर संभाग रा कुछ एक हिस्सा माए गरज रे साके तेज बारिश रह सके है। पटिने जोधपुर और बीकानेर संभाग माए भी आगता दो दिना माए कुछ एक हल्का माए भारी में बरस पारा आसार है। महकमो काल तेज हवावा और गरज चमक रह सागे 13 जिला माए बरसात रो ऑरेंज और 20 जिला माए येलो अलर्ट बतायो। इन बीच आज तेज गर्मी और उमस रे पचे बालोतरा माए चूखो में बरसियो। जैसलमेर बाड़मेर जिला रा शिव और चौहटन माए भी धूल भरी आंधी चाली और कई इलाका माए तेज पानी बरसियो। जालोर रा आहोर सैला भीनमाल बागोड़ा माए तेज हवा वारे सागे रिमझिम में बरसियो। झुंझुनू माए भी तेज हवा वारे सागे चित्रायो में बरसियो। वठिने पाली और राजसमंद जिला रा कुंबलगढ़ माए भी करीब एक घंटा मूसलाधार में बरसियो। जून महीना सो हाल तय बीकानेर चूरू और डीडवाना कुचामन माए भी में बरसियो। वठिने 10 जिला माए 32-18 और सामान्य और 10 जिला माए सामान्य कम पानी बरसियो। प्रदेश का छोटा बड़ा 693 बांधा माए सो 394 माए टेम थोड़ा टेम माए पानी भरियो। वठिने 5 चाम बांध माए थोड़ो पानी भरियो है। आज विश्व जुनोरिस दिवस है। ओ दिन जिनावरा सो मिनखा माए फैलवा वाली संक्रामक बीमारियां रा खतरा और उनसो सावचेती बरसबा और जाग जगाबारा लगा सो मनायो जावे है। जुनोटिक बीमारियां जन स्वास्थ्य जिनावराई सेहत और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा खातर बड़ो खतरो है। पशुआ और मिनखारा स्वास्थ्य सुरक्षित रखबा खातर पालतू जिनावरा और टेम माथे टीकाकरण करायो जानो जरूरी है। और अब आखिर माए खास खबर एक कर फेरू। केंद्रीय मंत्री अमित शाह कया सुधार डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन सो सहकारिता रा हल्का माए घणो बड़ा गियो है। करौली जिला रा पांचना बांसू कंबीरी नदी और कमांड क्षेत्री नहरा माए पानी छोड़ वाली शुरुआत की। राज्य माए गंभीर अपराध माए 4% सो 32 की कमी डीजीपी राजीव शर्मा पुलिस उपलब्धियां रो ब्यौरो पेश करियो। और प्रदेश का 13 जिला माए काल बरसात रो ऑरेंज और 20 जिला माए येलो अलर्ट जारी। इन सागे ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन अठवाई पूर्वियो माखलो आगलो समाचार बुलेटिन काल सुमारे 9 हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
1: आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं शाम के 7 बजे है। आइए सुनते हैं ग्रामीण जनों का कार्यक्रम ग्राम जगह।

ग्राम जगत कार्यक्रम सुनने वाले सैन ग्रामीण भाइयों केला भाईरा घना घना राम राम भाइयों। मानसून जैसलमेर ज़िले में शुरुआत हो चुकी है और ये समय में अक्सर जो है कई बार अंधड़ के साथ में बारिश आया करे, तो अंधड़ के समय में आप थोड़ा सावधान रहो। अगर खुले स्थान में खेत हों तो कोई बढ़िया ओट ले लो या यथासंभव आप घर पहुँचने का प्रयास करो ताकि कोई प्रकार की दुर्घटना से बच सको। और बरसात पूर्व री जुको भी आप खेतों रे खेती रे कौम री जुको आप तैयारियाँ है निश्चित रूप से आप उन्हें पूरी कर ली हो, नहीं तो आप जुको भी कोई कौम बचुड़ो है उन्हें आप जल्दी से जल्दी पूरा करो। जैसे कृषि यंत्र

या खेत की जो गर्मी की जुताई होया करे, और बीजोपचार जो बीज जो चयन और बीजोपचार है ये तरीके रहा जो मुख्य काम है वो आप समय रहते पूरा कर लो। और आज प्रखर राष्ट्रवादी और मशहूर शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जन्म तिथि है,

हमें हर नागरिक जो है देश के प्रति आप कह सकते ऋण भी होया करे। अगर जो कि देश का बहुसंख्यक लोग अगर देश के प्रति राष्ट्रवादी होया करे तो वह देश में कोई पराजित कौन कर सके और वो देश निश्चित रूप से जो है विश्व गुरु बनिया करे। तो आप भी अगर चाहूँ कि भाई आप प्रकृति है तो देश की प्रकृति में ही आप प्रकृति है, देश की सुरक्षा में आप सुरक्षा है। निश्चित रूप से जो है आप हमारे जीवन से सीख लो और आप जो कार्यक्रम है निश्चित रूप से ग्रामीण विषयक कार्यक्रम है वो मैं खेती पशुपालन सब है। तो आप पशुपालन के बारे में भी बात कर सकूँ कि बदलते मौसम के दौरान जो है आप पशुधन जो है बचाव कई तरीके से करना है और मेरे वास्ते हमारे कई का टीकाकरण कराना। लेकिन आप बात जो है एक बढ़िया लोकगीत सुन सो मेरे बाद में कर सो। और जो लोकगीत आप सुन रहे वो आज एक लोक भजन है और अमर भूंगर खान की आवाज़ में है जिसका बोल है आज सोमवार दिन है और बोल है आज तो हमारे भाग भोले शंकर आए। तो एक बढ़िया लोकगीत आप सुना और मेरे बाद में आप आगे भी बात

आगे आप पशुधन के बारे में बात कर सो, जो मौसम बदले है ना, गर्मी सो बरसात का मौसम है, तो ये दरमियान पशुओं में कई प्रकार की बीमारियाँ होने संभावना बढ़ जाया करे। वह मौसम मुख्य मुख्य है गलघोंटू, खुरपका, मुँह पका और निमोनिया। यह जानलेवा बीमारियाँ होया करे और खतरों ये टाइम में ज़्यादा बढ़ जाए, और पशुओं ने आप सुरक्षित रखने वास्ते मानसून या मौसम के बदलाव से पहले पशु चिकित्सक से आप संपर्क कर और टीकाकरण जरूर करवा लेना चाहिए। और इरमो जो को है पशुओं का इम्यून सिस्टम या रोग प्रतिरोधक क्षमता हो या अगर वो कमज़ोर हो जाए जिससे वो आसानी से संक्रामक रोगों की चपेट में आ जाए। सुरक्षित रखने वास्ते आप नीचे वहाँ आगे थाना बताऊँ या कुछ बातों को ध्यान रखना जरूरी है। मुख्य जो को टीका है वो खुरपका मुँह पका है। ये बीमारी पशु मुँह और खुरे में छाला कर दे, और ये पहली जो को डोज है वो 4 महीने की उम्र में, बूस्टर डोज 1 महीने बाद और बाद में हर 6 महीने में लगवानी चाहिए। और गलघोंटू जो बीमारी है सांस की गंभीर बीमारी, ये में गले में सूजन आ जाए, और मानसून या मौसम बदलने से ठीक पहले ये टीको साल में 1 बार आप जरूर लगवा लेना चाहिए। हो सके तो जो है जून अंत तो लगवा लेना चाहिए, और अगर कहीं नहीं लगवाए तो हमें भी थोड़ा जल्दी लगवा लें। इसके अलावा एक लंगड़ो बुखार जो बीमारी है ये युवा पशुओं में ज़्यादातर फैलिया करे। ये बीमारी में मांसपेशियों में सूजन और लंगड़ोपन आ जाए, और मानसून से पहले भी ये रोटी को साल में 1 बार लगवाया जाना चाहिए। इसके अलावा ब्रुसेलोसिस की बीमारी है वो गर्भवती पशुओं में गर्भपात रोकने वास्ते 4 से 8 महीने की बच्चियों और बाड़ियों ने जीवन में सिर्फ 1 बार लगाया जाए। अब जब आप टीको लगवाऊँ तो वो दरमियान आप मतलब कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। वह में एक तो है कि टीकाकरण करवाऊँ तो 7 से 15 दिन पहले पशु के पेट में कीड़ा मारने दवा अपना जो कि डी वार्मर कह जरूर दे देना चाहिए, और टीको हमेशा स्वस्थ पशु ने लगाना चाहिए। बीमार, कमजोर, ज़्यादा तनाव या गर्भवती जो पशु है वो ना टीको नहीं लगाना चाहिए कोई भी, और सुरक्षित भंडारण टीको हमेशा जो ठंडी

यहाँ लगभग मतलब निःशुल्क की तरह बहुत कम कीमत में मतलब उपलब्ध है। ये वास्ते आप ना ये वास्ते राजकीय नज़दीकी राजकीय वसुद्ध चिकित्सालय में संपर्क कर लीजिए। और एक और भी ये समय में आप बात कर रहा हूँ, या तो आप पशु टीकाकरण की बात करी, पूरे अलावा जो को है प्राचीन जल संरक्षण जो है पहले जो को है आप कुएं और बावड़िया मोए जल संरक्षण होते तो ये सब घरों में नल कनेक्शन को नहीं था, तो रेगिस्तानों में और पहाड़ों पठार अनुसार वर्षा जल संचयन अद्भुत परंपरा थी। और आप थार मरुस्थल में खेती रे वास्ते जल संरक्षण खड़ी नारे में होते तो और चौंका पद्धतियाँ भी थी पानी बचाने वास्ते और कृषि वास्ते ऐसे बरदान दो प्राचीन जल प्रणालियों बचाने वास्ते और कायाकल्प करने वास्ते जो को है बावड़ी और कुंडोर पुनरुद्धार कार्यक्रम सरकारी तरफ से चले, पर आपों भी मतलब जो को आप योगदान दो और उरमो जो को सीढ़ीदार कुआ है बावड़िया है और कुंड है जो जैसलमेर में तो घड़ी से झील भी है वो आधुनिक तकनीक के साथ में तो साफ कर और जल भंडारण के रूप में उपयोग किए जाना चाहिए। और सामूहिक सहभागिता जहाँ पर पहले बात हुई थी कि केवल मतलब ये कोई इंजीनियरिंग संरचना है कौन थे ये में मतलब श्रमदान रो बहुत योगदान तो हमें भी आप उन्होंने श्रमदान कर और ये में जब बरसात के टाइम में गाद वगैरह आ जाओ तो आगे बाद में खुदाई कर और इन्हें घेरों करना चाहिए ताकि ये में ज़्यादा मतलब पानी संचय हो सके। जो को जोड़ नाड़ी है ये ना भी मतलब जो को है सरकारी योजनाओं जो जल शक्ति अभियान ये से जोड़ी जा रही है और पारंपरिक ज्ञान में मत शोध कर भी आप ये तकनीक में मत ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकूँ। तो ये रास्ते जो जो हड़प्पारी उन्नत जल निकासी थी और धोलावीरा जलाशय है ये मत अध्ययन लगातार सतत जारी है और भारत में जो को है प्राचीन जल संरक्षण प्रणाली है वो आज के जल संकट में भी कारगर साबित हो सके ये मतलब लगातार कार्य चल रहे है। तो आप जो को खुद भी जब बात करी कि भाई आप जन सहभागिता भी ये जरूरी है नहीं तो आप वास्ते जो को है कठिन हो सके आने वाले जो जल संकट का समय है वो आप वास्ते

जानवरों से इंसान आराम फैलने वाला जो संक्रामक रोग है जो ना जूनोटिक बीमारियां कही जे ये बारे में जागरूकता बढ़ाने वास्ते और उम्र बचाव वास्ते दिवस मनाया जाए या वो चीज़ में समर्पित है। ये जो को इतिहास और महत्व है कि यह दिवस 6 जुलाई 1885 न फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पास्टर जो को है रेबीज की खोज की थी पहले सफल टीके हमारी आविष्कार याद दिलाने वास्ते मनाया जाए। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ा अनुसार जो को है सारी जो को है ज्ञात संक्रामक बीमारियों में जो को इंसान में होया करें उनसे लगभग 60% हिस्सा नई उभरती बीमारियों में से 75% जो को हिस्सा है वो जूनोटिक रोगों रहा है। और प्रमुख जो को जूनोटिक बीमारियाँ हैं वो में तो रेबीज है जो को कुत्ते या अन्य पालतू जानवर काटने से होया करें। COVID-19 जो को एक बहुत ही आपर वास्ते आप कह सकते हैं भयावह दुस्वप्न है तो वो भी जो को है जूनोटिक बीमारी थी। इबोला निपा वायरस बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू ये सब जो कोई जूनोटिक बीमारियाँ हैं। बचाव और उपाय अगर मैं बात करूँ तो आप और पालतू जानवर और नियमित टीकाकरण अपना करना चाहिए और जानवर और संपर्क में आने बाद में अपना आपका हाथ जो कोई अच्छी तरीके से धोना चाहिए और जंगली या आवारा जानवर संपर्क में आने से अपना बचना चाहिए। भोजन पानी की स्वच्छता का अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए तो आप जूनोटिक बीमारियों से बच सकें। और बढ़िया एक लोकगीत और खंजे जाते जाते जिसे बोल है जेदर और इन्होंने गायो है मुल्तान फाफार के।

I'm not going to be a part of me. I'm not going to be a part of me.

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण जनों का कार्यक्रम ग्राम जगत। हम आकाशवाणी जैसलमेर के गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत।

अभी आप सुन रहे थे राग मालकोट सरस्वती। आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, रात्रि के 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं सुगम संगीत।

दीपक संग पतंगा नाचे, दीपक संग पतंगा नाचे, कोई मेरे संग ना। आन मिलो सजना, आन मिलो।

मिल जी तुमसे सब पनहारियां दूर दूर रह के जीने से मैं आ जाऊं तंग ना अब आन मिलो सजना आन मिलो सजना।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म अवतार के गीत। आवाज थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, गीत के बोल थे आनंद बख्शी के और गीत को संगीत से सजा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं गीत।

हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया कि जहां मिल गया।

आता है होता है ये दिन के जमीन से भी कभी आसमान मिल गया।

जानो तुम क्या हो, अब जो आ गए हो जाने न दूंगा के मुझे एक हंसी मेहरबान मिल गई।

अजनबी जमाना अपना कोई न था, था अजनबी जमाना अपना कोई न था। दिल को जो मिल गया है तेरा सहारा, एक नई जिंदगी का

लगता है कि यहाँ मिल गया एक भटके हुए साहिल।

0: मिल गए हो तो ये लगता है कि यहाँ मिल गया, कि यहाँ मिल गया।
1: अभी आप सुन रहे थे फिल्म हंसते जख्म से ये गीत, आवाज थे मोहम्मद रफी की गीत के बोल थे कैफी आजमी के, और गीत को संगीत से सहायता मदन मोहन ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

के तेरे घर में उजाला कर दे, तेरे घर में उजाला।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म जानी दुश्मन से ये गीत। आवाज थी आशा भोसले और मोहम्मद रफी की, गीत के बोल थे वर्मा मलिक के और गीत को संगीत दिलाया था रश्मिकांत प्यारेलाल ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं से समाप्त होता है। आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है, FM बैंड 101.8 MHz पर। आइए सुनते हैं सुगम संगीत।

0: आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, रात्रि के 8:45 हुए हैं हमारे। आज अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे News@9, जिसका प्रसारण हमारे आकाशवाणी दिल्ली के केंद्र से करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी, कहा उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुँचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पारंपरिक इंडोनेशियाई और भारतीय नृत्य प्रस्तुतियों वाला एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह दोनों देशों के बीच गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उत्साह व्यक्त किया और भरोसा जताया कि इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा व्यापार और निवेश के लिए नए अवसर सृजित होंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री

0: क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के विचारों ने आधुनिक भारत को नई दिशा दी।
1: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
0: श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 2 वर्ष तक चलने वाला राष्ट्रीय समारोह आयोजित कर रही है। उन्होंने बताया कि ये समारोह पिछले वर्ष 6 जुलाई से शुरू हुआ था और अगले वर्ष 6 जुलाई तक चलेगा। गृहमंत्री ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
2: श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर न होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। यही वो महापुरुष थे जिन्होंने एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चल सकते। न केवल वो आंदोलन की शुरुआत की, इसके लिए अपने प्राण भी नौछावर कर दिए।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
3: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई, उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त है। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि पुरी रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी।
4: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाएंगे और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तराखंड के टनकपुर और महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित हजूर साहिब के बीच नई रेल सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। उन्होंने टनकपुर पीलीभीत रेल सेवा का विस्तार शाहजहांपुर तक करने की भी शुरुआत की। श्री वैष्णव ने कहा कि नई रेल सेवा उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरा करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि ये पाठ्यक्रम एक अनूठी पहल है जो सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में प्रबंधन शिक्षा उपलब्ध कराएगा।
5: इससे मैनेजमेंट एजुकेशन बाइलिंगुअल होने के कारण सरल भाषा में लोगों तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भाषा होगी वो ऐसी रखी जाएगी कि सभी को आसानी से समझ में आए, और साथ ही साथ ऑनलाइन होने के कारण काफी व्यापक प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है।
6: रांची सहित झारखंड के कई जिलों में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
7: मुंबई और तटीय महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एसडीआरएफ के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। उधर पुणे जिले के मावल तालुका के पाटन गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से एक घर दब गया जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। इस बीच आईएमडी ने मंगलवार के लिए पालघर, रायगढ़ और नासिक और पुणे के घाट क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया है। नासिक जिले में बादल फटने जैसे भारी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। जिले के संवेदनशील इलाकों में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरला, माहे ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले तीन से चार दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर की यात्रा समाप्त करने के बाद पश्चिम एशिया यात्रा के दूसरे चरण में बहरीन पहुंच गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने मनामा में बहरीन के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बहरीन के विदेश मंत्री की सराहना की। ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों का पार्थिव शरीर एक विशेष वाहन पर रखा गया है। इन लोगों की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्मस्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिन से क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। भारत 23, 25 और 26 जुलाई में 3 T20 मैच खेलेगा। श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। 15

0: కోసం ఓ ఆజ్ మాసం ఆజ్ మాస్.
1: अभी आप सुन रहे थे फिल्म लोफर से ये गीत. आवाज थी मोहम्मद रफी की, गीत के बोल चरण बख्शी थे और गीत को संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत चहलान ने. आइए सुनते हैं गीत.

अभी आप सुन रहे थे फिल्म क्रांति से गीत, आवाज थी लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की, गीत के बोल थे संतोष आनंद के, और गीत को संगीत से सागर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है, FM बैंड 101.8 MHz पर। आइए सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत का यह कार्यक्रम।

Then you get 20 miles of the old man,

siraye laf sire kono mere manri karamane wale

রাজকোয়েলরি হনে কি তুমি বলি কোয়েল মাঝি রে বাগরে মরা যায়।

મેલવો મારા રાજે એ તો હરીકી મીઠી બોલી કોયલ કોયલ જી બાગરી મન

बोला मुझे अमराने रामू, गुरजा मारी हाले बात।

জমারি হালে পাতিল রে দে মোর জজিরি হালে পরদেশির দেশ।

अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी जैसलमेर का। ये गोल्डन सिटी चैनल है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं सुगम संगीत।

मुझे देखता क्यों है बार बार मुझे।

से देखता क्यों है बार बार मुझे, मैं तेरा अक्स हूँ समा।

妈个的妈个你你妈个的你妈的你啥啥妈个啥啥妈的你啥你的妈个妈个

تشتهي وجهك انتظار مجھے تشنگی تجھے کو انتظار مجھے

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़। श्रोताओं, रात्रि के 10:30 में आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

झरने मन तो लगे हरने, ऐसा तहारे ऐसा तहारे, उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जुआदा।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म चित्तौड़ से गीत, आवाज थी यशुदासी गीत के बोल और संगीत दिया था रविंद्र जैन ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म सावन को आने दो से गीत, आवाज थी यशोदास की, गीत के बोल थे पुरुषोत्तम पंकज के और गीत को संगीत ऐसा राज कमल ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म सदमा से गीत, आवाज यशोदास की गीत के बोल से गुलजार के, और गीत को संगीत से ज्यादा इलाया राजा थे। आइए सुनते हैं जी कड़ी में ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे सुनैना सिंह गीत। आवाज थी यशुदासी गीत के बोल से रविंद्र जैन के, और इस गीत को संगीत से ज्यादा रविंद्र जैन। आइए सुनते हैं ये गीत।

पत्थर भी कभी एक दिन देखा है पिघल जाते हैं बन जा

सुन रहे थे फिल्म मान अभिमान सिंह जी। आवाज थी यशदास की, गीत के बोल थे रविंद्र जैन के और गीत को संगीत से गाया था रविंद्र जैन ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे शिक्षा फिल्म से गीत आवासी यशदास की, गीत के बोल थे गौहर कानपुरी के और गीत को संगीत से गाया था बप्पी लहिरी। इसी के साथ हमारा आज का विशेष फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। इस कार्यक्रम का निर्देशन श्री रामदीन लाल मीणा के द्वारा किया गया था और प्रस्तुति विक्रम सिंह जी। आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओ, रात्रि के 11 बजे हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, जिसका प्रसारण हमारे आकाशवाणी दिल्ली के केंद्र से करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: चाया है जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
2: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
1: ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्म स्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिनों से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मीन ने आज भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय केंद्र और जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के ईटानगर केंद्र के सहयोग से आयोजित वन महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने युवा पीढ़ी से अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित और बढ़ावा देने का आग्रह किया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव